मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

किशोर कुमार की आवाज में फिल्म मजबूर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जीना तो असली वही है कि हम दूसरों के लिए जिए। और किसी को कहां पर हम खुशी दे सकते हैं वो ढूंढिए। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में फिल्म बादल से ये गीत।

दोस्तों आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई 2026 सुबह के 5:54 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। सुबह 6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस गान का।

गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:10 पर। 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम आज सवेरे का। म्यूजिकल दिल लगी, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 8:45 पर।

सुबह 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम दिल का मेल बॉक्स। 11:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम तस्वीर।

दोपहर 1:10 का समय रहेगा कलाकार बेमिसाल का। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेंस से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश

0: वासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Toon Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Our correspondent covering the Prime Minister's Netherlands visit has filed this report. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their Majesties, the King and the Queen. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. On Saturday, PM Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the fields of semiconductor chips and AI, where the Netherlands stands as a global leader. After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Gothenburg in Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. The government has imposed a special additional excise duty of 3 rupees per litre on export of petrol. According to official Gazette notifications issued by Ministry of Finance yesterday, the special additional excise duty on diesel exports has been brought down to 16 rupees 50 per litre from 23 rupees. The special additional excise duty on aviation turbine fuel has also been reduced to 16 rupees from 33 rupees a litre. The revised rates will remain in force for the next fortnight beginning today. There has been no change in the existing excise duty rates for petrol and diesel for domestic consumption. Prime Minister Narendra Modi has reiterated government's commitment to improving ease of doing business and ease of

6:11 और 54 सेकंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड। भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का समय है। शनिवार की सुबह साथ हूं मैं सुनीता। नमस्कार, सुप्रभात।

श्री रामचरितमानस में उल्लिखित है, कर्म प्रधान विश्व करी राजा, जो जस करई सुतस फुल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सुतस फलु चाखा। अर्थात भगवान ने संसार में कर्म को प्रधान रखा है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है।

0: भगवान महावीर ने कहा, हर आत्मा स्वयं में सर्वज्ञ और आनंदमय है, आनंद बाहर से नहीं आता।
1: श्री हनुमान जी में भगवान रुद्र के गुणों की झलक आंचल के दीप की तरह स्पष्ट परिलक्षित होती है। श्री रुद्र शमशान वासी हैं, श्री हनुमान जी गिरिवन वासी हैं। शिव जी ने विषपान किया था, हनुमान जी ने सूर्य बिंब को ही निगल लिया था। श्री शिव जी सर्पों की माला पहनते हैं, श्री हनुमान जी को नाग यज्ञोपवीति कहा गया है। शिव जी आशुतोष है अर्थात शीघ्र प्रसन्न होते हैं। श्री हनुमान जी भी दुखों के दलदल में फंसे हुए अपने भक्तों की रक्षा के लिए तुरंत दौड़ पड़ते हैं। जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलेउ हनुमाना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

ये आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 6:35 और 57 सेकंड भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण आप सुन रहे हैं आज सुनीता के साथ।

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं बताते। तुम महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये, और अब आकाशवाणी दिल्ली के इस चैनल पर आप सुन पाएंगे समाचार संस्कृत, हिंदी और फिर अंग्रेजी में। और समाचार के बाद समय रहेगा कार्यक्रम गोल्ड सुप्रभात का, लेकर आऊंगी मैं सुनीता, और समय होगा 7:10। तो फिलहाल समय है समाचार का, जानते हैं देश दुनिया का हाल।

0: प्रतयः याचयितुं शक्नुवन्ति। एताः अन्तर्जालीय माध्यमेन उपलभ्यन्ते। द्वितीय चरणे छात्राः विसंगतानां प्रश्नोत्तराणां सत्यापनाय आवेदनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति। उतोवा अंकन योजनायाः आधारेण विशिष्टानां उत्तराणां पुनर्मूल्यांकनार्थं याचना कर्तुं शक्नुवन्ति। इजराइल लेबनान देशौ वाशिंगटन नगरे संजातायाः वार्तायाः अनन्तरं युद्धविरामस्य पुनः पञ्चचत्वारिंशत् दिवसपर्यन्तस्य विस्ताराय सहमतौ अभवताम् इति अमेरिका देशस्य विदेश विभागः अवदत्। विदेश विभागस्य प्रवक्ता टॉमी पिगोट अवदत् यत् वारद्वयकृत वार्तालापेन फलदायकं युद्धविरामम् आगच्छदति। इतः अनन्तरं जून मासस्य द्वित्री दिनांकयोः आधिक्येन वार्तालापो भविष्यतीति निश्चितमस्ति। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन चेन्नई सुपर किंग्स इति दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। सीएसके इत्यनेन प्रदत्तस्य 88.1% धावनांकस्य लक्ष्यम् आतिथीयेन एलएसजी इति दलेन 17 क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्, यत्र केवलं 38 कन्दुकेषु मिचेल मार्शल इत्यस्य 90 धावनांकानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तम क्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री

मंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

7:10 आपके कानों में ये आवाज है आकाशवाणी एफएम गोल्ड की 100.1 मेगाहर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी। और मुनव्वर राना साहब ने कहा कि आप दरिया हैं तो इस वक्त हम खतरे में हैं, आप दरिया हैं तो इस वक्त हम खतरे में हैं, आप कश्ती हैं तो हमको पार होना चाहिए। यह गोल्ड सुप्रभात, मैं हूँ सुनीता।

छोटी सी कश्ती में साधना के लिए हारमोनियम पर ये गीत गा रहे थे जॉय मुखर्जी। 1962 की फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना, आवाज मोहम्मद रफी साहब की। 60 के दशक की हिंदी फिल्मों में बहुत से गाने इन कश्तियों में फिल्माए गए, तो मैंने सोचा क्यों ना मूड और माहौल में थोड़ा बदलाव लाया जाए और चला जाए बोट राइड पर। नेक्स्ट है महेंद्र कपूर आशा भोसले जी का डुएट, साहिर लुधियानवी के लिरिक्स, रवि का म्यूजिक, और ये फिल्म थी वक्त। बहुत प्यारा सा गाना है, आप चाहें तो एंजॉय करें, नाचें गाएं खुशी मनाएं। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है, सुनीता के साथ आप हैं गोल्ड सुप्रभात में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हम और आप आज सैर कर रहे हैं कश्ती में ब्यूटीफुल मेलोडीज के माध्यम से, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड। जिक्र अब मौसम का। मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा आज टेम्परेचर। फिलहाल ठंडी हवा के झोंके इस गाने में, फिल्म मेरे सनम, आवाज मोहम्मद रफी साहब की। यह गोल्ड सुप्रभात और आज आपके साथ हूं मैं सुनीता।

फिल्म मेरे सनम का ये गाना मजरूह सुल्तानपुरी साहब के बोल, ओपी नैयर का संगीत, आवाज मोहम्मद रफी साहब की थी। इससे पहले कि हम अगली कश्ती की सवारी करें, जान लीजिए कि एफएम गोल्ड पर आज आप कौन कौन से प्रोग्राम्स को एंजॉय कर पाएंगे। 8:45 पर यानी थोड़ी सी देर बाद मैं आऊंगी म्यूजिकल दिल्ली का पहला सेगमेंट लेकर, और सुबह 10:30 दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम होगा। तस्वीर प्रोग्राम में आज आप कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल की जानकारी ले पाएंगे और समय रहेगा 11:10 पर, और कलाकार बेमिसाल में बातें निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की।

0: उम्मीद है आपको आज के गाने, ये जो बोट राइड्स हमने की, आपको पसंद आई होगी। अब गोल्ड सुप्रभात बस यहीं तक। अब समय है समाचार सेवा प्रभाग के प्रोग्राम आज सवेरे का, आइए सुनते हैं।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: नमस्कार, सुप्रभात, अभिनंदन। आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे, जहां दिन की शुरुआत होती है थोड़ी सी मिठास और ढेर सारी एनर्जी के साथ। तो दोस्तों, आज की सुबह एक नया पन्ना है, कल क्या हुआ उसे भूल जाइए और आज क्या करना है उस पर मुस्कुराइए। कहते हैं ना कि अगर दिन की पहली चाय कड़क और मुस्कुराहट सच्ची हो तो दिन अपने आप बेहतरीन हो जाता है। तो चलिए, इसी के साथ एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं नए दिन का। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
1: हेलो जया, एंड नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। वेल, वेलकम टू आवर प्रोग्राम आज सवेरे। मी एंड जया, वी आर ऑल स्माइल्स एंड वेरी थ्रिल्ड टू स्टार्ट आवर प्रोग्राम एज जया सेड। एंड वेल, यस, वी आर बिगिनिंग विद द नेशनल इंटरनेशनल न्यूज। वी हैव ऑल्सो इंक्लूडेड सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज इन द फर्स्ट सेगमेंट ओनली। यू लाइक दम, वी आर 100% श्योर ऑफ दैट लिसनर्स। वी ऑल्सो हैव मेट्रो सिटी अपडेट्स, वील फाइंड आउट वॉट्स हैपनिंग इन द मेट्रो सिटीज एज वेल। एंड देन टूडे इज 16th of May 2026, we'll also find out and explore the history which is related to today. First, let us begin with the headlines.
0: तो संयुक्त अरब अमीरात और यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए हैं।
1: कंटिन्यूइंग विद दैट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन द नेदरलैंड्स लेट लास्ट नाइट ऑन द सेकंड लेग ऑफ हिज फाइव नेशन टूर एम्ड एट डीपनिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक टाइज विद यूरोपियन नेशंस। मिस्टर मोदी वॉज रिसीव्ड बाय द डच फॉरन मिनिस्टर तुम बेरेंसन अपॉन हिज अराइवल एट एम्स्टरडम एयरपोर्ट। Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Our correspondent covering the Prime Minister's Netherlands visit has filed this report.
2: During the visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their majesties the King and the Queen. This visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. On Saturday, Prime Minister Modi will address the Indian communities and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the field of semiconductor chips and AI, where Netherlands stands as a global leader. From the trade perspective, Netherlands is India's key economic partner, one of the largest export destination as well as investor in India. Both the countries have robust partnership and cooperations in the fields of water management, renewable energy, green hydrogen economy, agriculture technologies and health. This is Shushru Sharma for Akashvani from The Hague, Netherlands.
1: After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Gothenburg in Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with the president of the European Commission, Ursula von der Leyen. On the fourth leg of his visit, Prime Minister Modi will reach Norway on Monday for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. He will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. On Tuesday, Mr. Modi will take part in the third Indian-Nordic summit. On Tuesday, Mr. Modi will be joined by the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, Prime Minister of Denmark, Mette Frederiksen, Prime Minister of Finland, Petteri Orpo, Prime Minister of Iceland, Kristrún Frodastóttir, and Prime Minister of Sweden, Ulf Kristersson, for the summit. In the final leg of his visit, the Prime Minister will reach Italy on Tuesday. During the visit, Mr. Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, and hold talks with Prime Minister Giorgia Meloni.
0: सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और इसके साथ ही शगुन नीट UG की परीक्षा की तिथि की घोषणा हो गई है। 21 जून को नीट UG की परीक्षा होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है।
1: वेल, इन जम्मू एंड कश्मीर द 3-डे हिस्टोरिकल एनुअल मुंगरी मेला विच इज ऑल्सो नोन एज शिव पार्वती मेला इट कमेंस्ड यस्टरडे एट सर डबर एरिया ऑफ ब्लॉक मुंगरी इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। सो द पिलग्रिम्स एंड नेटिव्स विजिटेड द शिव पार्वती केव श्राइन टू सीक ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड शिवा एंड मां पार्वती। सो इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट पीपल फ्रॉम भोमाग, पंचारी, उधमपुर, चेन्नई एंड रामनगर एरियाज ऑफ द उधमपुर डिस्ट्रिक्ट एज वेल एज फ्रॉम रियासी, रामबन एंड जम्मू डिस्ट्रिक्ट्स कन्वर्ज सर डबर एवरी ईयर टू सेलिब्रेट दिस मेला एंड पे ओबेसेंस टू भगवान शिव इन द नेचुरली फॉर्म्ड शिव पार्वती केव श्राइन, अ वंडरफुल साइट। सो देयर लोकल आर्टिस्ट इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रेजेंटिंग सिंटिलेटिंग कल्चरल परफॉर्मेंसेज, दे प्रेजेंटेड सिंटिलेटिंग कल्चरल परफॉर्मेंसेज ऑन द फर्स्ट डे। आई वॉज टेलिंग यू अबाउट शिव पार्वती मेला।
0: और इसी तरह की कुछ अच्छी खबर भी है मेरे पास मध्य प्रदेश से, जहां श्योपुर जिले में स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कल 2 और मादा चीतों को जंगल में छोड़ा गया है। और इसके साथ ही कूनो में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले चीतों की कुल संख्या 16 हो गई है। और ये दोनों मादा चीते फरवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों में शामिल हैं। इन्हें सफलतापूर्वक क्वारंटाइन अवधि पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया है। इससे पहले 13 मई को भी एक मादा चीते को जंगल में छोड़ा गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के फील्ड निदेशक ने बताया है कि सभी चीते स्वस्थ हैं और जंगल के वातावरण में अच्छी तरह से ढल रहे हैं। उनकी निगरानी के लिए उन्नत रेडियो टेलीमेट्री प्रणाली और विशेष क्षेत्र दल तैनात किए गए हैं। और पता है शगुन, ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ना, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 में अपने जन्मदिन पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में किया था।
1: यस, एग्जैक्टली। सो यू वर टेलिंग अबाउट बोथ द फीमेल चीतर्स, दे आर अमंग द 9 ब्रॉट फ्रॉम बोत्सवाना in February 2026. So they have been gradually released after successfully completing their quarantine period. So earlier one female cheetah was also released

0: May 13th, and you were telling about Project Chita, launched by Prime Minister Narendra Modi in 2022. Now let's stretch our boundaries a little. Israel and Lebanon have agreed to a 45-day extension of their ceasefire after another round of talks in Washington. U.S. State Department spokesperson Tommy Pigott said the April 16 cessation of hostilities will be extended by 45 days to enable further progress after America hosted 2 days of highly productive talks between Israel and Lebanon, which concluded yesterday. So in a social media post, Mr. Pigott said that the U.S. State Department will reconvene the political track of negotiations on 2nd and 3rd of June. Now, in sports. Over to sports now. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Malaysian shufflers Noorizuddin and Gosei Fay in semi-finals of Thailand Open in Bangkok today. Earlier, the Indian duo defeated Japanese pair of Takumi Nomura and Yuichi Shimogami 21-12, 21-13 in the quarter-final clash yesterday. Meanwhile, other ace Indian shuttlers including PV Sindhu and Lakshya Sen bowed out of the tournament. Sindhu lost 21-19, 18-21, 15-21 to world number 3 Akane Yamaguchi of Japan in the women's singles quarter-final.
1: Arshakun, ye jo pramukh khabron ki का सेक्शन खत्म करने से पहले हम बता दें कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरा करने जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के एक हिस्से के रूप में आकाशवाणी अगरतला केंद्र द्वारा कल शाम सुकांता अकादमी सभागार में एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रव्यापी समारोह के समन्वय में आयोजित इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन पश्चिम त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट डॉ विशाल कुमार ने सीजीएसटी अगरतला कार्यालय के अतिरिक्त आयुक्त और श्री सैमुअल एस वाईफाई की उपस्थिति में किया गया। और जो संगीत संध्या में ना पंकज कुमार दास ने जो गिटार पर मनमोहक प्रस्तुति दी और जिनका तबला पर जो देवज्योति दास गुप्ता ने भी बहुत अच्छा संगम दिया है जो सुनने में बेहद रोमांचक था।
0: वेल यस, सो गाइडेड बाय द मोटो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट आकाशवाणीज एस्टैब्लिशमेंट ऑन June 8, 1936 This celebration highlighted Akashvani's enduring legacy as the nation's most credible broadcaster.
1: और अब रुक करते हैं कुछ प्रमुख महानगरों का और जानते हैं कि वहां का क्या हाल है। तो शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली के समाचारों का।
0: श्योरली,
1: तो सबसे पहले बताएं कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि डीएमआरसी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत को कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की है। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डीएमआरसी को 2 अत्याधुनिक हाइड्रोजन ईंधन वाली बसें उपलब्ध कराई हैं जिसमें बैठने की क्षमता 35 यात्रियों की होगी। इसमें बहुत सारे जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरे हैं और इस बस का जो किराया है ना शगुन, ये महज 10 से 15 रुपए के बीच में रखा गया है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यूपीआई और नकद भुगतान के विकल्पों के साथ इसमें यात्री टिकट खरीद सकते हैं और यह शटल बस सेवा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक उपलब्ध होगी। इसके अलावा दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक भी बस सेवा संचालित की जाएगी। और इस बीच ये भी बताएं कि दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का जो अभियान है वो 30 जून से शुरू होगा। निर्वाचन आयोग ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता को सूची में शामिल किया जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में न रह जाए।
0: नाउ वी विल हेड टू चेन्नई। Tamil Nadu government issued a gazette notification declaring Trichy's constituency as vacant in the wake of Chief Minister Joseph Vijay resigning the seat he contested in 2 seats and retained the Perambur seat. According to the gazette notification issued by Appavu, the earlier speaker, on May 10, he accepted Vijay's resignation as per Article 193B of the Indian Constitution and then declared the seat vacant from the date of resignation. The notification would be sent to the ECI and elections will be held for Trichy East within 6 months. Another update from Chennai. So at least 17 foreign nationals were detained at Chennai and Madurai airports for allegedly casting their votes in the recently held assembly elections in Tamil Nadu. So immigration officials detained them after noticing the indelible ink marks on their fingers during passport checks. while 15 of them were apprehended at Chennai Airport over the past

0: few days when they were about to return to their respective countries. Two were detained at Madurai Airport. The passengers were natives of Tamil Nadu and Puducherry.
1: और अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर. तो महाराष्ट्र में आज से जनगणना 2027 के अंतर्गत घर सूचीकरण और आवास जनगणना अभियान शुरू होगा. राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित 33 प्रश्नों को पुनः अधिसूचित किया है, जिन पर एक महीने तक चलने वाले इस अभियान के दौरान सर्वेक्षण किया जाएगा. जनगणना कर्मी प्रत्येक घर जाकर अपने आधिकारिक मोबाइल उपकरणों में स्थापित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आवास की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और संपत्तियों से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे. जिन नागरिकों ने अपने घरों के लिए स्वगणना पूरी कर ली है, उनसे अनुरोध किया गया है कि सत्यापन और प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए वे जनगणना कर्मियों के साथ अपना स्वगणना पहचान यानी कि आईडी नंबर साझा करेंगे. राज्य सरकार ने नागरिकों को यह भी आश्वासन दिया है कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई सभी व्यक्तिगत और घरेलू जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी. एक और अपडेट है मुंबई से, जो कि अच्छी भी है और बुरी भी है शगुन, क्योंकि दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने यह जानकारी दी है कि वर्ष 2025 में देश भर में लगभग 22,500 करोड़ रुपए के साइबर धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं. इतनी बड़ी संख्या में धोखाधड़ी होना ये खराब चीज है. और हाँ, इतने मामले सामने आए, उनको पकड़े गए हैं कुछ चीजें, तो ये बात अच्छी है. तो कल मुंबई में जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी DOT में, के मुंबई LSA के अतिरिक्त महानिदेशक आशीष पाठक ने बताया है उसमें कि इनमें महाराष्ट्र से दर्ज 1100 करोड़ रुपए के मामले भी शामिल हैं. और 17 मई को मनाए जाने वाले विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर श्री पाठक ने यह भी कहा है कि पिछले वर्ष 1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन पर 30 लाख शिकायतें दर्ज की गई. उन्होंने बताया कि जो DOT ने 34 लाख संदिग्ध मोबाइल नंबरों को डिस्कनेक्ट कर दिया है, 22 लाख फर्जी हैंडसेट को ब्लॉक किए हैं और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े 1697 लाख से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट को निष्क्रिय किए गए हैं. इसके अलावा 59 लाख से अधिक संदिग्ध बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है, जिससे 1200 से अधिक संगठनों, जिनमें बैंक और कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी शामिल हैं, उसको जोड़कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान को रोका गया है. ये अच्छी चीज हुई है इसमें. और इसके साथ ही नागरिकों से ये आग्रह भी किया गया है कि वे सतर्क रहें, संदिग्ध संदेशों, कॉल्स या फिर इसी तरह के संचार पर आंख बंद करके भरोसा न करें.
0: यस, एंड well, we'll head now to Bengaluru, where the idea of an annual Bengaluru drone festival is gaining traction. So Karnataka Minister for Electronics, IT and Biotechnology Priyank Kharge has expressed a strong commitment to encourage drone economy. The state, he informed, will adopt necessary infrastructure, policy and real-world adoption mechanisms to contribute significantly to India's drone economy. And this, actually the Bengaluru drone festival, he says, can have drone racing, hackathons, exhibitions and display shows. He was actually speaking after a high-level meeting with the drone industry in Bengaluru yesterday. The minister also spoke about creating shared testing facilities, simplifying regulatory pathways and enabling a strong ecosystem for startups and industry to innovate and scale up their operations. The Karnataka Medical Education Additional Chief Secretary Mohammed Mohsin has announced that guidelines for a better and effective use of artificial intelligence will be released within his department.
1: और अब चलते हैं कोलकाता, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल कोलकाता के SSKM अस्पताल में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया. और इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा निदेशक, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संगठनों के चिकित्सा अधीक्षकों और प्राचार्यों ने भी भाग लिया. सूत्रों के अनुसार बैठक के दौरान आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन और प्रगति पर भी चर्चा की गई.
0: हैदराबाद नाउ. वेल, द सिटी विटनेस्ड रोड शो इन हैदराबाद टू प्रमोट द फार्मा मैकटेक एंड लैब नेक्स्ट Expo 2026, the Engineering Export Promotion Council of India held a roadshow. Actually, the expo will be held in September this year in New Delhi. It will showcase pharmaceutical machinery and laboratory equipment from across India. So the preparations, they were also held there. And the event will bring together manufacturers, exporters and global buyers. And well, India exports pharmaceutical machinery but imports more than it sells. The roadshow discusses new technologies like smart manufacturing and automation. So this was all about the metro cities.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जया और शगुन के साथ। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की। राजधानी में आज मौसम हालांकि साफ रहेगा, लेकिन गर्मी का जो कहर है ना शगुन, वो जारी रहेगा। जो अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
1: फ्रॉम हीट
0: और इसी तरह से मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकता है, गरज के साथ चमक की भी संभावना है और बहुत ज्यादा तापमान नहीं है। हालांकि गर्मी वहां भी है, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास की संभावना है। और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल।
1: Well, beginning with Chennai, it is expected to have partly cloudy sky. There is possibility of moderate rain or thunderstorm. Minimum temperature was 27 degrees Celsius. Maximum temperature will be around 33 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have thunderstorm with rain. The minimum temperature was around 23 degrees Celsius. Maximum will be around 32 degrees. Hyderabad, again, it is expected to have partly cloudy sky with possibility of development of thunder lightning. The temperature, minimum temperature, will be around 29 degrees Celsius and it's quite hot. The maximum temperature will be around 41 degrees Celsius in Hyderabad. Jaya.
0: और अब श्रोताओं, वक्त आ गया है अतीत के पार उन प्रमुख घटनाओं को याद करने का जिन्होंने आज ही के दिन अपनी एक विशेष पहचान दर्ज की है। आज 16 मई 2026 है और आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है। विज्ञान, संस्कृति और कला में प्रकाश की जो भूमिका है ना, उसकी महत्ता को जानने के लिए हर साल 16 मई को यूनेस्को द्वारा यह दिवस मनाया जाता है।
1: Well, yes, hundreds of light, science, technology, educational and the other educational events, they take place across more than 40 countries. Well, yes, this is all about exploring global initiatives and access educational resources directly through the UNESCO International Day of Light portal as well. This date marks the anniversary of the first successful operation of the laser by physicist and engineer Theodore Maiman in the year 1960.
0: और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस है ना, वो 2018 को मनाया गया था।
1: सो लेट्स टेल आवर लिसनर्स अबाउट द थीम एज वेल। द फोकस विल बी ऑन लाइट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर।
0: बिल्कुल।
1: नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इयर्स। इन द ईयर 1929, द फर्स्ट एवर एकेडमी अवार्ड्स वर हैंडेड आउट इन हॉलीवुड कैलिफोर्निया विद अबाउट 270 पीपल इन अटेंडेंस। In 1966, the political and social campaign known as the Cultural Revolution officially began in China with the publication of the May 16 notification issued by Mao Zedong.
0: और इसके कुछ दिन बाद आज ही के दिन 1975 में सिक्किम को औपचारिक रूप से भारत का 22वां राज्य बनाया गया था और राजशाही इस दिन समाप्त हुई थी और ये 22वें राज्य के रूप में।
1: Yes, 22nd state. In the same year, Jaya, Japanese mountaineer Junko Tabai made history as the first woman to reach the summit of Mount Everest. And this milestone stands as one of the most famous and inspiring events on this day.
0: और आज ही के दिन 1996 में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी, जो पता नहीं कितने लोगों के प्रेरणा रहे हैं
1: जी,
0: उन्होंने
1: so many.
0: पहली बार देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।
1: In 1991, Queen Elizabeth II of the United Kingdom addressed a joint session of the United States Congress, becoming the first British monarch to do so.
0: और अब समय है उन प्रमुख व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं,
1: वी आर बिगिनिंग विद, वेल, First event, let me start with that, the birth centenary celebrations and a one-day national seminar on contributions of Acharya Shri Dinesh Chandra Joshi in the field of Sanskrit and Indian culture in New Delhi yesterday. The Ministry of Culture actually organized the birth centenary celebrations. The ministry said that several commemorative programs, academic seminars, cultural events, exhibitions and spiritual gatherings across the country have been held since the 11th of this month and it will last till 11th of April next year in honor of eminent Sanskrit scholar. It stated that despite the severe hardships of a remote mountainous region and limited resources, Acharya Joshi emerged as a radiant torchbearer of Indian culture through his scholarship, spiritual discipline and unwavering determination.

0: याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के शुरुआती सुनहरे दौर के एक अत्यंत सम्मानित और दिग्गज फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक और निर्माता रहे फणी मजुमदार को
1: जी।
0: आज उनकी पुण्यतिथि है और उन्होंने केवल हिंदी ही नहीं बल्कि बंगाली, मैथिली, अंग्रेजी और चीनी यानी कि सिंगापुर की जो बहुत सारी विभिन्न भाषाएं हैं उनमें भी फिल्मों का निर्माण किया है और वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान बनाई। फणी मजुमदार को समाज का एक यथार्थ और संगीतमय ड्रामा को पर्दे पर बहुत खूबसूरती से उतारने के लिए याद किया जाता है। 1938 में न्यू थिएटर्स के बैनर तले बनी फिल्म स्ट्रीट सिंगर उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। महान गायक अभिनेता केएल सहगल और खानन देवी अभिनीत इस फिल्म का गाना बाबुल मोरा नहर छूटो ही जाए आज भी अमर है।

तो जो फणी मजुमदार है ना, उनके फिल्मी केवल कहानियों के लिए नहीं बल्कि सदाबहार और सुरीली गीतों के लिए भी जाने जाते हैं। और आरती फिल्म का ये गीत भी बहुत ही आनंदमय है।

0: और आज जयंती है भारत की एक बेहद सम्मानित वृत्तचित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, फिल्म इतिहासकार, शिक्षाविद और शोधकर्ता विजया मुले की। फिल्म जगत में उन्हें प्यार से अक्का यानी कि बड़ी बहन कहा जाता है और दूरदर्शन पर जो बचपन बिताने वाली पीढ़ी है ना, उन्हें हमेशा एक चिड़िया अनेक चिड़िया जैसे कालजयी और शिक्षाप्रद एनिमेटेड गीत की रचना के लिए याद रखती है।
1: दीदी दीदी वो देखो अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ

0: Well, she's Vijay Mulle, recognized as one of the pioneers of the film society movement in India, remembered for her documentaries and educational communication as well.
1: और आज जयंती है पद्मश्री माणिक वर्मा की. वो भारत की एक अत्यंत प्रतिष्ठित और दिग्गज शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायिका थी.

0: एक अनेक और एकता विजय मुले द्वारा निर्देशित इस लिखित बेहद ही जो प्रसिद्ध शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म है और भारत सरकार ने शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए इसे तैयार करवाया था और इस फिल्म का ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण गीत है जो बच्चों को एकता विविधता में एकता की सीख देता आया।
1: राइटली सर।

0: So listeners, today it's also Vicky Kaushal's birthday. The actor, well, he has worked across a range of genres.
1: क्या आप इस मिशन के लिए तैयार हैं?
2: Yes sir.
1: क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है?
2: Yes sir.
1: Commandos, who are we?
2: Indian Army sir.
1: How is the Josh?
2: Hi sir.
1: How is the Josh?
2: Hi sir.
1: I said how is the Josh?
2: Hi sir.
3: श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए जया और शगुन को आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करने का। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम गोल्ड।
0: नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में यूएई गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
5: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
6: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश रहने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
8: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
9: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में

0: 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ।
1: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी यह परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही CBI दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रूपये महंगे, CNG के दाम 2 रूपये बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मानसून, समय से चार दिन पहले आएंगी बौछारें।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोबारा जांच के लिए दरखास्त दे सकते हैं। सीबीएसई के मुताबिक स्कैन शुदा नकुल के लिए ऑनलाइन दरखास्तें इस माह की 19 से 22 तारीख तक जमा कराई जा सकती हैं, जिसकी फीस 700 रुपए फी मजमून मुकर्रर की गई है। इसी तरह तस्दीक और दोबारा जांच के लिए दरखास्तें इस माह की 26 से 29 तारीख के दरमियान जमा कराई जा सकेंगी। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनकरीब मुल्क में कोई भी गरीब शख्स नहीं होगा जिसके पास मुस्तकिल घर न हो। उन्होंने कहा कि सभी के लिए पक्के मकानात की फराहमी मरकजी हुकूमत का पुख्ता अज़्म है। जनाब चौहान महाराष्ट्र में सतारा के मकाम पर मुनक़दा महा आवास अभियान के तहत तामीर शुदा मकानात के इफ्तिताह के मौके पर इज्तिमा से खिताब कर रहे थे।
1: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि बैकलॉग बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग एक साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: इम्तिहानात मुनक़िद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने ऐलान किया है कि अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी 2026 इम्तिहान दोबारा 21 जून को मुनक़िद होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एजेंसी ने उम्मीदवारों और वालिदैन से कहा है कि वो मुसद्दिका और मुस्तनद मालूमात के लिए सिर्फ एनटीए के सरकारी ज़राए पर ही एतमाद करें। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को मुनक़िदा इम्तिहान पेपर लीक होने के इल्जामात के बाद रद्द कर दिया गया था। इस मामले की तहकीकात इस वक्त मरकजी तहकीकाती ब्यूरो सीबीआई कर रही है। इसराइल और लबनान ने वाशिंगटन में होने वाले एक और दौर के मुजाकरात के बाद अपनी जंगबंदी में 45 दिन की तौसी पर इत्तेफाक किया है। अमरीका के महकमे खारजा के तर्जमान टॉमी पिगोट ने कहा है कि 16 अप्रैल को होने वाली जंगबंदी को मजीद 45 दिन के लिए बढ़ा दिया जाएगा ताकि मजीद पेशरफ्त मुमकिन हो। ये फैसला अमरीका की मेजबानी में अमरीका और लबनान के दरमियान 2 रोज तक जारी रहने वाली इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज मुजाकरात के इख्तिताम के बाद किया गया, जो कल मुकम्मल हुए। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब पिगट ने कहा कि अमरीकी महकमे खारजा 2 और 3 जून को सियासी मुजाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू करेगा। इसके अलावा इस महीने की 29 तारीख को पेंटागन में सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत का मरहला भी शुरू किया जाएगा, जिसमें दोनों ममालिक के फौजी वफूद शिरकत करेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के इलाकों में आज शदीद गर्मी की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कोंकण और गोवा के इलाकों में भी आज गर्म और हफ्स वाले मौसम की पेशगोई की है। आईएमडी के मुताबिक अंडमान व निकोबार जजायर में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के सेमीफाइनल्स मुकाबले में आज सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गोह जी फी की जोड़ी से होगा। इस दौरान पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन समेत दीगर भारतीय खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। सिंधु खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की आलमी नंबर 3 खिलाड़ी अकाने यामागुची से 21-19, 18-21, 15 से हार गई है, जबकि मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन को थाईलैंड के कुनलावुत वितित्सर्न से 19-21, 16-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 188 रन के निशाने का पीछा करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर 4 गेंदों में यह मैच जीत लिया। आज शाम ईडन गार्डन में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी शहर से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहदा अरब इमारात दौरे को शह सुर्खी बनाया है। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ हुई दोतरफा मीटिंग के दौरान कई अहम मुआहदे तय पाए, जिनमें एलपीजी की सप्लाई और 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी काबिल जिक्र हैं। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत मगरबी एशिया में अमन के लिए हर मुमकिन तआवुन देने को तैयार है। ब्रिक्स ममालिक ने ग्लोबल साउथ और कसीर कुतबी आलमी निजाम की अहमियत पर जोर दिया। ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास में जारी एक सदारती बयान में यह बात कही गई। इस खबर को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप ने खसूसी तौर पर शाया किया है। अखबारों ने नीट यूजी 2026 का इम्तिहान

0: दोबारा 21 जून को कराए जाने की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग की पीचिंग में हुई मीटिंग में चीन ने मशरिक़ वुस्ता में अमन इस्तेकाम के लिए फौरी और जामे जंगबंदी पर जोर दिया। इस खबर को रोजनामा इनकलाब ने नुमाया तौर पर शाया किया है।
1: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत से माहदों पर दस्तखत किए हैं जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम जखायर कायम करना भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

घड़ी मिला लीजिए 8:45 सुनीता आ गई है एफएम गोल्ड के स्टूडियो में और मैं साथ लेकर आई हूँ इंटरेस्टिंग बातें और सुरीले गाने। प्रोग्राम की शुरुआत भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में फिल्माए गए इस गाने के साथ, ये है म्यूजिकल दिल लगी।

मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर जी का ये डुएट मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा, एसडी बर्मन साहब ने म्यूजिक कंपोज किया। 1967 की इस फिल्म जूल थीफ का बड़ा हिस्सा शूट किया गया गैंगटॉक सिक्किम में, जो कि है लोएस्ट पॉपुलेटेड क्लीनेस्ट फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट भारत का। विश्व की तीसरी हाईएस्ट माउंटेन पीक कंचनजंगा यही है, और जो आपकी चाय को बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार बनाती है ना, इलायची, उसका भी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर विश्व में सिक्किम ही है। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सिक्किम दिवस, क्योंकि इस राज्य को 22वां राज्य बनाया गया था 16 मई 1975 को। अगले सॉन्ग में आशा भोसले जी के साथ जिस मेल सिंगर की आवाज है, स्क्रीन पर भी वही है और वो सिक्किम से हैं। सही पहचाना आपने, डैनी डेंगजोंगपा। फिल्म काला सोना का ये सॉन्ग एंजॉय कीजिए, ओनली ऑन FM गोल्ड।

कहानी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 की, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से रेडियो में युववाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी कलाकार मालिनी अवस्थी। और सबसे बड़ी बात आज यहाँ जरूर कहूंगी कि आकाशवाणी इस मामले में एक बहुत क्वालिटी कॉन्शियस था। आप किनको गा सकते हैं और किनको नहीं गा सकते, रेडियो का जो एक स्टैंडर्ड था वो इतना कमाल का था, तो हमारे लिए आकाशवाणी स्टूड लाइक गोल्डन स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड। मारे

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपको छोड़कर, क्योंकि एफएम गोल्ड और आपका साथ इतना पुराना, इतना गहरा है, इतना मजबूत है कि उसके अलावा तो और कुछ हमें सूझता ही नहीं है। फिलहाल मुझे यानी सुनीता को लेनी होगी अगले शनिवार तक इजाजत। आप बस यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, और खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रहने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। अब समाचार का समय है, समाचार सुनिए, जानिए देश दुनिया का हाल। मैं मिलूंगी आपसे अगले शनिवार।

0: रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री पांच देशों के दूसरे दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया। हेग में प्रधानमंत्री का प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ भव्य स्वागत किया गया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। नीदरलैंड्स का दौरा समाप्त होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंस यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न नहीं है। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता दोहराई गई है। CBSE ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ ले सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूँ आपके साथ भावना।

हुआ है नशा जब से तेरे साथ का, कदम तो लड़खड़ा गए पर रास्ता संभल गया। बेमिसाल हुस्न था जो दिल को मेरे छल गया, वहां सजना संवरना उसका, यहां दिल मचल गया। वहां प्यार कहना उसका और यहां चैन लुट गया।

आकाशवाणी की मंजिल है आप, मतलब हमारे सभी श्रोता गण, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने ध्येय के साथ हम अपनी मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। 90 साल आकाशवाणी जो है मना रहा है इस साल अपनी, और इसीलिए आपको भी हम अपने साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये बनता है, आप अभिन्न हिस्सा है आकाशवाणी का, हमारे सभी श्रोता। प्रश्न हम पूछते हैं और उत्तर आप देते हैं, और एक जो लकी उत्तर देने वाला हमारा श्रोता होता है उसको हम शामिल भी करते हैं फोन लाइन पे अपने साथ जोड़कर। तो आप भी हमें आज का प्रश्न का उत्तर लिखकर भेजिए, हम आपके नाम भी पढ़ेंगे और एक लकी जो श्रोता है उसको अपने साथ फोन लाइन पर भी जोड़ेंगे, इसलिए अपना फोन नंबर भी साथ में जरूर दीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है, प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? जी हाँ, प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो अपना उत्तर हमें लिख भेजिए FM Gold AIR Delhi @gmail.com पर।

सबके दिल करीब आए, सब एक दूसरे को गले लगाएं, यही हमारे घर में, समाज में, देश में और पूरे विश्व में होना चाहिए। यानी प्रेम हो, शांति हो। शांतिपूर्वक सहजीवन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आज, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। कुछ भी लड़ाइयां

काम कर ले, चाहे घर, समाज, देश, विश्व, कहीं भी हो, आखिर में जो सुलझाना होता है वो बातों से, प्रेम से ही पड़ता है। किसी ऐसे को बीच में लाना पड़ता है जो प्रेम से बातों को सुलझा पाए, समझा पाए दोनों साइड्स को। तो क्यों ना हम जीवन को साथ साथ मिलकर प्रेम से जिए। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं ना कई बार हमारे दिल के अंदर जो हम कह नहीं पाते और वो हमें अंदर ही अंदर कचोटती रहती हैं, लेकिन ऐसी बातों को हमें दिल से निकालना चाहिए। बातें करने से ही बात बनती है। ये दिन ये याद दिलाता है कि शांति केवल युद्ध का ना होना नहीं है, बल्कि एक सकारात्मक और सहभागी प्रक्रिया है। यानी एक दूसरे को समझना, चाहे दो व्यक्ति हो, दो पार्टीज हो, दो समाज के हिस्से हो, या दो देश हो, विश्व के लेवल पे हो, तो हमेशा प्यार और सद्भावना से सहभागिता दूसरों की सबकी मिलकर ही किसी भी समस्या का सल्यूशन निकालती है। तो आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि ये सिखाता है कि किस तरह से लिविंग टुगेदर इन पीस हमें बनाकर रखना है अपने समाज में, देश में और विश्व में। वैसे अगर दिल सच्चा हो और जबान सच्ची हो तो विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है वहां प्रेम और शांति अपने आप आ जाती है।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: सौ.9 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल प्रोग्राम सुन रहे हैं आप म्यूजिकल दिल लगी। मैं हूं आपके साथ भावना। समय मिला लीजिए 9:36 और 30 सेकंड हो गए हैं।

सच्ची है कि प्यार जीवन में उजाला लाता है, प्रकाश लाता है। जीवन चमचमा उठता है, जगमगा उठता है। कितनी सारी प्रकाश और उजाले की बातें लेकर आता है ना प्यार। आज दिन है प्रकाश का, प्यार का। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट आज के दिन मनाया जाता है 16 मई को हर साल। प्रकाश का यानी लाइट का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, इसके बारे में जागरूकता लोगों को बताना, उनमें जागरूकता फैलाना और ये समझाना कि लाइट, प्रकाश जो किरणें हैं उसकी, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में। विज्ञान में यानी फाइबर ऑप्टिक्स में, स्वास्थ्य में यानी चिकित्सा तकनीक में, हमारी संस्कृति में, कला में, शिक्षा में, हर जगह लाइट यानी प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज का दिन जो मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, वो यूनेस्को द्वारा आयोजित किया जाता है। और जितनी भी प्रकाश बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जो काम है, कारोबार है, उनको भी आगे बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, जागरूकता बढ़ाना, लोगों में शिक्षा फैलाना, बताना कि ये सब कैसे होता है, क्या होता है, किस प्रकार से लाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है और लाइट हमारी जीवन में आध्यात्मिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर और सांस्कृतिक कलात्मक, इन सब रूप में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं।

अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: हमारे मन को बहुत से ख्वाब दिखाए हैं, आकाशवाणी ने हमारे दिल में बहुत से फूल उगाए हैं। ये हमें लिखकर भेजा है वंदना ने, और महाराष्ट्र से इनका संदेश आया है। सही उत्तर देने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो लकी आज हमारे श्रोता हैं वो हैं प्रकाश गोगिया जी। भारत की लगभग 99.19% आबादी और 92% भूभाग को कवर करता है आकाशवाणी। आकाशवाणी एक संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ है आसमान से आने वाली आवाज। इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम 1935 में मैसूर में एमवी गोपाला स्वामी द्वारा एक रेडियो स्टेशन में किया गया था। कितनी खूबसूरत है हमारी आकाशवाणी और आप इसको कितना जानते हैं, ये जानने के लिए हम हर बार आपके साथ जुड़ रहे हैं। 90 साल आकाशवाणी के मना रहे हैं इस साल। हम बात करते हैं हमारे लकी श्रोता से। हेलो
1: जी, नमस्कार भावना जी।
0: नमस्कार प्रकाश गोगिया जी, कैसे हैं आप?
1: प्रभु की कृपा है, कोरोना काल के बाद आज पहली मुलाकात हो रही है आपसे।
0: अच्छा, मुलाकात मतलब रेडियो?
1: मतलब रेडियो से मुलाकात हो रही है क्योंकि सारे कार्यक्रम तो पोस्टपोन हो गए थे ना।
0: जी जी जी जी जी।
1: और मैं आकाशवाणी के गोल्ड चैनल और आप सबको उद्घोषकों को भी बधाई देना चाहता हूँ कि धीरे धीरे कार्यक्रम आप पुरानी लाइन पे ला रहे हैं, और ताकि हमारा ये परिवार जो है गोल्ड परिवार एक बार फिर से एकत्रित हो रहा है।
0: जी जी जी। तो सबसे पहले तो प्रकाश जी बताइए, जो हमारा प्रश्न था एक बार से मैं फिर दोहरा देती हूँ, प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है?
1: जी, कहते हैं किरणें।
0: हाँ।
1: और आज प्रकाश उत्सव भी एक तरीके से
0: जी।
1: तो वेव्स, यानी कि अंग्रेजी में जो वेव्स कहा जाता है, हमारे प्यारे FM गोल्ड का ओटीटी प्लेटफॉर्म है वेव्स।
0: जी, प्रसार भारती का एक्चुअली है ना?
1: जी हाँ, प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म है वेव्स।
0: अच्छा, आकाशवाणी से जुड़ी कोई खास याद है क्या आपके दिमाग में जो हमेशा आपको गुदगुदा जाती हो, कोई ऐसी बात?
1: वैसे तो सभी कार्यक्रम ऐसे रहते हैं कि गुदगुदा जाते हैं। जब हम हेलो FM में आपसे बात करते थे तो हृदय बहुत गुदगुदा था, और आज ठीक इतने साल बाद आज फिर से एक बार कहते हैं ना, लहर उठी है इस हृदय में, एक लहर सी उठी है कि एक बार फिर से हम आकाशवाणी के FM गोल्ड से के माध्यम से समस्त श्रोताओं से और आपसे मुखातिब हो रहा हूँ।
0: जी जी, आकाशवाणी के तो देखिए ना कितने सालों से प्रोग्राम कर रहे हैं, और आप मुझे याद है कि शायद बहुत बहुत सालों से हमारे साथ जुड़ते आए हैं। हेलो FM गोल्ड जिस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, आकाशवाणी का बहुत ही खास हमारा FM गोल्ड का प्रोग्राम था वो, है ना?
1: ऐसा है कि FM गोल्ड जब से शुरू है, जब माननीय राजीव सक्सेना जी ने शुरू किया था,
0: जी जी,
1: तो हम तब से जुड़े हुए हैं। लेकिन यदि मैं अगर आकाशवाणी की बात कहूं तो आप यकीन नहीं करेंगी, मैं 1962 से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूं।
0: अरे वाह।
1: यानी कि 1962 में जब हम सुनते सुनते थे, चिट्ठियां नहीं लिखनी आती थी हमें, और यहाँ तक कि माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जब प्रधानमंत्री बने थे, वो समाचार भी मैंने रेडियो पे ही सुना था।
0: अच्छा, तो कोई पुराने ऐसे आपको प्रोग्राम्स याद है जो आप एकदम से रेडियो को पास लगा के और आकाशवाणी ट्यून करके और सुना करते थे?
1: जी, तब एक कार्यक्रम आता था वेद भारती में मन चाहे गीत, और उसके अलावा हवा बैल, और जब हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब एक मोजी राम जी दीनानाथ शर्मा जी किया करते थे ढोल की पोल। वो ये कार्यक्रम ऐसे आज तक मुझे याद है। कहते हैं ना कि कभी कभी कोई पुरानी बात मस्तिष्क में रह जाती है और वरना हम कल की बात भी भूल जाते हैं।
0: जी जी जी। तो जो वो मन चाहे जो गीत की आप बात कर रहे हैं प्रोग्राम की, वो बहुत ही खास प्रोग्राम था ना, मतलब जो वो गाने पुराने जिस हिसाब से लोगों को अटैच करते थे, जो हम सुना करते थे आकाशवाणी, मतलब एक तरह से अब हम ये कहें तो आपके मुंह से मैं सुनना चाहूंगी वैसे एक जादू की तरह, क्योंकि उस वक्त तो हम भी छोटे थे ना, तो सुनते थे, एक सपना था कि हम भी आकाशवाणी कभी जाएंगे।
1: तब दिल्ली ए बी और सी आया करता था, डी जो युवाणी आता था। मैं एक बार यहाँ पर 1972 या 73 की बात है, एक बार कार्यक्रम पेश करने के लिए भी गया था।
0: अच्छा, कौन सा प्रोग्राम था?
1: युवाणी।
0: अच्छा, युवाणी पर। जी जी जी।
1: तो दिल्ली डी पर आया करता था।
0: हाँ, मतलब आकाशवाणी प्लेटफॉर्म हमेशा तैयार रखते हैं नए नए लोगों को, नई नई प्रतिभाओं को सामने लाने का, हमेशा लोगों के साथ जुड़ने का, इसलिए भी आकाशवाणी बहुत खास हो जाता है ना।
1: मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से समस्त श्रोताओं की तरफ से FM गोल्ड के तमाम अधिकारियों से प्रार्थना करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आज इस प्रकाश उत्सव पर FM गोल्ड पे एक

0: है तो चारों तरफ उत्सव उत्सव खेली खेली एक मौसम अच्छा वातावरण अच्छा हरियाली छाई हुई हो
1: हाँ।
0: पशु पक्षी चहचहा रहे हो ऐसे में देखकर हंस भी जो है ना उसमें हल्की सी बरसात को देख करके ना
1: हाँ।
0: अपने पंख फैला लेता है नाचने लगता है तब मन मयूर में एक ही आवाज होती है मालूम है भला क्या
1: क्या
0: ओ हंसनी मेरी हंसनी। आप ये वाला गीत सुना दीजिए आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी और एक बार फिर चलते चले मैं सब श्रोताओं को अधिकारियों को आपको सादर प्रणाम करता हूँ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी धन्यवाद नमस्कार
1: नमस्कार।

समय हो गया है चलने का, लेकिन वैसे हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड स्टूडियो में बैठे हैं, क्योंकि 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स प्रोग्राम है, जिसमें आपके संदेश आएंगे, आपके मेल्स आएंगे और हम उन्हें शामिल करेंगे, आपकी पसंद के गीत भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का, तो मैं भावना आपसे 10:30 बजे फिर मिलूंगी, लेकिन पहले समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया है। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड और अबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल है। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की साझेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण के लिए नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेनसन ने किया। एक रिपोर्ट।
1: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करने में आसानी और जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित एक समाचार संस्थान की रिपोर्ट को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में जरा भी सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद भी व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16 रूपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां की जनता को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। और खेलों में बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और

0: That is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का वादा किया। दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद ये समझौते हुए। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल यूएई ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया।
2: इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग का समझौता किया है। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और एलपीजी भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया है। इस समझौते से भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में यूएई की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने एलपीजी पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की आशा है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात में रणनीतिक रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी की साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
3: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री टॉम बेंडरसन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे तथा महाराज और रानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
4: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई के क्षेत्रों में जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश करने वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री ओल्फ क्रिस्टरसन के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरी के साथ वार्ता

0: करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और आगे बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। अमरीका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वाशिंगटन में दो दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इसराइल और लेबनान के हिजबुल्ला आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा और अमरीका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं देगा। टेलीविजन चैनल से साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने पश्चिम एशिया संकट के बीच अमरीका की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि वो सही काम करने जा रहे हैं। उन्होंने अमरीका के साथ बातचीत में ईरान के रवैये की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान समझौतों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान जब भी कोई समझौता करता है तो बाद में ऐसा व्यवहार करता है जैसे बातचीत कभी हुई ही ना हो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन यात्रा के दौरान अमरीका और चीन ने कई महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौते किए हैं। चीन से लौटते समय एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में श्री ट्रंप ने कहा कि चीन 200 बोइंग विमान खरीदने पर सहमत हो गया है।
1: And that's General Electric also. The engines, approximately 450 engines. We had an amazing time. It was a very historic.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार व्यापार करने में आसानी और देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर, उपकर और अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट झूठी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसके बाद समाचार एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट वापस ले ली और सोशल मीडिया से इससे संबंधित पोस्ट हटा दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रमुख समाचार एजेंसी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट गलत थी और त्रुटि के लिए खेद व्यक्त किया। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज बैंकॉक में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गोह से फेई से होगा। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुमी नोमुरा और युची शिमोगामा को 21-12, 21-13 से हराया। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की विश्व नंबर 3 अकाने यामागुची से हार गई। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड के कुनलावत विदितसन से हार गए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का वादा किया। दोनों देशों ने रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडारण सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेग में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन और बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम दिल का मेल बॉक्स और मैं हूं आपके साथ भावना। दिल का मेल बॉक्स जिसमें आपके दिल की बात हम तक पहुंचती है मेल्स के थ्रू और व्हाट्सएप के जरिए। तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9868868753। नंबर एक बार फिर 9868868753 और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com। तो आप अपने संदेश हम तक पहुंचाइए और आपकी पसंद के गीत हम सब तक पहुंचाएंगे। और लीजिए, दो मैसेजेस भी हमारे सामने इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, इनका संदेश आया। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का भी संदेश हमारे पास आया है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन और हेमलता डिम्पल देवांगन का संदेश हमारे पास आया है और गाना सुनना चाहते हैं ये।

नॉट प्लेस दिल्ली से माहिरा मलिक, हिबा, आयशा जोआ, जैनब मरियम, इन सब का हमारे पास संदेश आया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना संदेश हम तक पहुंचाने के लिए। अपनी पसंद का गीत भी इन्होंने लिखकर भेजा है। पूरी कोशिश रहेगी हमारी आपकी पसंद का गीत भी सुनवाएं हम। शम्सुल कमर राही है, शाहिन फातिमा है, अनु खान है, अदनान खान है, फैजान है, आबाद खान साहब है, इन सब का भी हमें संदेश मिला है। प्यार भरा आदाब इन्होंने मुझे कहा है, आपको भी प्यार भरा आदाब जनाब। इसके अलावा सुदर्शन मुखी जी हैं, हेल्दी सैटरडे गुड मॉर्निंग इन्होंने हमें लिखकर भेजा है। अनीता मुखी हैं, सिमरन मुखी हैं, सुदर्शन मुखी हैं, शांति नगर सोनीपत से इनका संदेश हमें मिला है। और इन्होंने भी अपनी फरमाइश हमें लिखकर भेजी। इतनी सारी फरमाइशें आती हैं ना, मन करता है सारे गाने सुना दें, लेकिन हर गाने की ड्यूरेशन भी तो होती है ना, सब गाने सुनवाए नहीं जा सकते एक प्रोग्राम में। लेकिन आगे पीछे एक प्रोग्राम में, दूसरे प्रोग्राम में सबकी फरमाइशें पूरी करने की पूरी पूरी कोशिश रहती है हमारी। ये कौन है? ये है गांव बांडी वाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, इन सब का संदेश भी हमारे पास आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना प्यारा सा संदेश हमें भेजने के लिए। देव वर्मा जी हैं, प्रद्युम्न वर्मा हैं, और आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफल सफर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आपको भी बधाइयां जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश खतौली शहर से इनका संदेश है प्रद्युम्न वर्मा जी का। इसके अलावा हमारे पास हाँ, ये है मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से इनका संदेश हमारे पास आया है। उत्तम नगर दिल्ली से हमारे पास संदेश आया है बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का। और गाना सुनना चाहते हैं ये।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल का मेलबॉक्स। आपके बहुत सारे संदेश हमारे पास आ रहे हैं। अनिल मोहन है, उषा मोहन है, टिल्लू नायक है, कैथल हरियाणा से इनका संदेश है, साथ में मधु नायक भी है। उनका नाम लिखना भूल गए थे शायद, पर नीचे उनका भी नाम ऐड कर दिया इन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से इनका संदेश हमें मिला है और उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा है एनी सॉन्ग। ठीक है जी, बहुत सारे। सुमित्रा देवी जी हैं, देखिए सुमित्रा देवी हैं, सोनिया देवी हैं, आशा रानी हैं लक्ष्मी नगर दिल्ली से और इन्होंने राम राम जी लिखकर भेजा है। राम राम जी आपको भी जी। इसके अलावा लालगिरी जी हैं, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हैना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से इनका संदेश हमें मिला है। इसके अलावा धर्मेंद्र छीपा हैं, कपिल छीपा हैं, ईशान छीपा हैं, पूजा परिहार हैं, भोपालगढ़ राजस्थान से इनका संदेश हमें मिला है। बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं। हम क्या सुनवा रहे हैं जी, ये तो आप फरमाइश कर रहे हैं। इसके अलावा मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख लखनऊ उत्तर प्रदेश से। अरे वाह क्या बात है, लखनऊ का नाम सुनकर ही बड़ी मतलब नजाकत नफासत जो है वो आ जाती है। अमन आफरीदी भी साथ में हैं और राधा नामदेव भी इनके साथ हैं और ये सब लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। गांव नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू का संदेश हमें मिला है और गाना सुनना चाहते हैं ये।

गुरमीत सिंह मीता जी हैं साउथ दिल्ली से, इनका संदेश हमारे पास आया है। साउथ दिल्ली में कहां जी, कितों, ये आपने नहीं लिख के भेजा और इन्होंने लिखा है खुशनुमा नमस्ते। अरे वाह, खुशनुमा नमस्ते तो पहली बार मिली है हमको। बहुत अच्छा लगता है जब आप छोटी छोटी बातों से एक तरह से जुड़ाव जो है वो बताते हैं, दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि हम यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं और भारत के अलग अलग कोनों में आप हमें सुन रहे हैं, अगर एक ग्राफ बनाए तो कैसा लगेगा, पूरा एक परिवार हमारा एक बना हुआ है, मतलब कितने सारे परिवार के लोग इस वक्त एक साथ हैं हम, है ना, जो जो भी सुन रहे हो सब इस प्रोग्राम में परिवार का हिस्सा बन गए ना। हमारे साथ परमजीत कौर जी जो हैं वो जुड़े हैं, दिलबाग सिंह हैं, दिलजोत सिंह हैं, हरप्रीत सिंह हैं और परमजीत कौर जी लिखती हैं पंजाबी बाग दिल्ली से। मैडम जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल आपको भी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ताज मोहम्मद जी हैं, इनका संदेश हमें मिला है। इनके साथ गुलाम साबिर राही हैं, महराज जहां हैं, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से इनका संदेश हमारे पास आया है। जॉन डिकेस्ट्रो हैं, रोजी डिकेस्ट्रो हैं, पर्ल डिकेस्ट्रो हैं, विलिस डिकेस्ट्रो हैं, जनकपुरी सहारनपुर से इनका संदेश हमें मिला है। और भारत भूषण जी हैं, ये अंजू श्रीवास्तव भी हैं, दिव्येंदु भूषण हैं, संस्कृति हैं, पौरुष हैं, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से इनका संदेश हमें मिला है। देखिए ना, कोई बेंगलुरु से, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, हम सब लोग एक दूसरे के साथ हैं। नमस्कार, प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अच्छा ये मेरा अभिनंदन कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरा अभिनंदन करने के लिए। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा हैं, बिमला अनेजा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमें अपना संदेश भेजने के लिए। राजी शर्मा हैं, राजी शर्मा आदर्श नगर पंजाब से इनका हमें संदेश मिला है। राज शर्मा भी हैं, मीना शर्मा हैं, योगेश शर्मा हैं, निवान शर्मा हैं, सौरभ शर्मा हैं, शाइना शर्मा हैं और मैंडी शर्मा भी हैं इनके साथ में। बहुत ही अच्छा लग रहा है इन्हें प्रोग्राम सुनते हुए और हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपका संदेश पढ़ते हुए, आपका ईमेल पढ़ते हुए। इसके अलावा हमारे पास संदेश आया है मलियान सरदना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन का, और ये सब मिलकर गाना सुनना चाहते हैं ये।

अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि चलने का समय हो गया, लेकिन चलते चलते एक संदेश और बढ़ देते हैं। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, नटखट आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर का संदेश हमें मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें हमें लिखकर भेजने के लिए, अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए और सबको सुनवाने के लिए। अभी स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं कहीं नहीं जा रही, 11:10 पर तस्वीर प्रोग्राम में मैं भावना आपके साथ ही रहूंगी, लेकिन उससे पहले अभी समय है समाचारों का।

0: समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबूधाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में कल नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महिला सशक्तिकरण समिति का गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉ दग्गुबाती पुरेंद्रेश्वरी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पैनल में लोकसभा के 18 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। निचले सदन के सदस्यों में हेमा मालिनी, हरसिमरत कौर बादल और इकरा चौधरी शामिल हैं। राज्यसभा से समिति में सुधा मूर्ति, पीटी उषा, स्वाति मालीवाल सहित अन्य महिलाएं शामिल हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास में सिक्किम का योगदान अमूल्य है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य अपना 50वां स्थापना राज्य मना रहा है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया था। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इज्जुद्दीन और गो सीफेई की जोड़ी से होना है। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिक विज्ञानी और अभियंता थियोडर मौसम द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के तहत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by V.C. Pramod. Prime Minister Narendra Modi reached the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक एलपीजी आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह है प्रोग्राम तस्वीर और मैं हूं आपके साथ भावना। तस्वीर प्रोग्राम में हम हर बार आपको एक खूबसूरत जगह लेकर जाते हैं, वहां की रेडियो तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज जहां हम जाने वाले हैं वो है हिमालय की तलहटी में बसा बहारों का शहर कालिमपोंग।

अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं कलिम्पोंग की, तो शहर में कई पार्क्स हैं, और अगर बुजुर्ग यात्रियों के लिए आप कोई जगह यहाँ पर खास देख रहे हैं तो बहुत सारे पवित्र मंदिर भी हैं। यहाँ पर तीस्ता नदी के पूर्व में बसा खूबसूरत शहर कलिम्पोंग, जिसे कलिम्पोंग और कलिम्पोंग दोनों नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आध्यात्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं और खूबसूरत नजारे हैं। यहाँ की सर्वांगीण

संस्कृति इसको एक शानदार पर्यटन स्थल बनाती है। बहुत ही खास है कालिम्पोंग, मंगलधाम मंदिर यहाँ का, यहाँ से शुरुआत करते हैं, है ना। तो कालिम्पोंग में मंगलधाम मंदिर घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। गुरुजी श्री मंगलदास जी को ये समर्पित मंदिर है और यहाँ पर आपको जटिल नक्काशी देखने को मिलेगी और पौराणिक कथाएं सुनने को मिलेंगी। इसके अलावा शांत वातावरण और पहाड़ों के मनोरम दृश्य, जैसे ही आप मंदिर के प्रांगण में आएंगे, बाहर निकलेंगे, पहाड़ों का इतना खूबसूरत दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि एक शांति, एक सुकून, वो एक माहौल बन जाता है। ऐसा लगता है कि बस चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रकृति है, आध्यात्म है, हम हैं, शांति है और हमारी दुआएं हैं जिन्हें हम अपने लिए, दूसरों के लिए मांग रहे हैं। और फिर वहां से कहीं और जाने का मन नहीं करता।

बाहें फैलाकर पूरी प्रकृति को अपनी बाहों में समेटने की इच्छा कभी की है आपने? कभी आपने हिमालय के मनमोहक नजारों को निहारने के लिए किसी पहाड़ी की चोटी पर खड़े होने की इच्छा की है आपने? अगर की है ना, तो वो यहाँ कलिम्पोंग में पूरी हो सकती है। यहाँ डेलो पार्क है और डेलो पार्क में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो चोटी है ऊपर पहाड़ी की, वहां पर खड़े होकर पूरा नजारा देख सकते हैं। घाटियां, नदियां, बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां, बहुत ही खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिलेगा। 360 डिग्री, 360 डिग्री गोल गोल घूमकर चारों तरफ आप देख सकते हैं। पता है, पैराग्लाइडिंग या फिर घुड़सवारी ये भी आप यहां कर सकते हैं। पहाड़ी की चोटी पर स्थित ये पार्क आपको ट्रेकिंग का अवसर भी प्रदान करता है और पार्क के चारों ओर है ना विदेशी फूल खिले हुए हैं जो इस पार्क की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं यहाँ, मतलब आप इमेजिन कीजिए आंखें बंद करके कि आप डेलो पार्क में आ गए हैं कलिम्पोंग के, और पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर पूरा 360 डिग्री, यानी अगर आप जहां खड़े हैं वहां से गोल गोल घूम के देखें तो चारों तरफ आपको खूबसूरत घाटी, फूलों से भरी हुई आपको नदियां और बर्फ से ढकी हुई चोटियों वाले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। और जब आप पार्क के अंदर पैराग्लाइडिंग और ये सब एक्टिविटीज कर रहे हैं तो कैसा महसूस होता होगा, कैसा मौसम, कैसा समा होगा यहाँ का, उसे आप केवल अनुभव कर सकते हैं, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं बहुत अच्छे से।

सचमुच इतना खूबसूरत नजारा देखने के बाद अगर आपका दिल आप संभाल सकें तो बहुत बड़ी बात होगी, है ना। कलिम्पोंग विज्ञान केंद्र भी है यहाँ पर, जहाँ आप जा सकते हैं। मनोरंजन और ज्ञानवर्धक दोनों तरह के अनुभव आप यहाँ ले सकते हैं। 2008 में इसे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसलिंग के अंतर्गत बनाया गया था और कलिम्पोंग में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक 3D मूवी थिएटर है, विज्ञान वेधशाला है, और जो शोध करता है ना, मतलब जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उनको आप एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देख सकते हैं और कार्यशील मॉडल देख सकते हैं आप किस तरह से कार्य होता है। इंटरैक्टिव प्रदर्शनी होती हैं, वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्रत्यक्ष प्रयोगों के माध्यम से जो विज्ञान की एक कहते ना जिज्ञासा होती है, ये कैसे हो जाता है, ये ऐसे कैसे हो जाता है, वो आप यहाँ काफी हद तक पूरी कर सकते हैं। लेकिन अपने हाथ से कोई चीज छूनी नहीं है आपको, अपने हाथों को कष्ट मत दीजिए, आप बस जो कर रहे हैं उनको करते हुए देखिए।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वादियाँ, हसीन प्राकृतिक नज़ारे, कुछ ऐसा ही महसूस होता है कलिम्पोंग आकर। यहाँ का चांगी जलप्रपात, कल्पना कीजिए कि आप एक झरने के किनारे खड़े हैं जहाँ चारों ओर पानी के गिरने की आवाज़ आपके कानों में घुल रही है, आपको कैसा लगेगा। धुंध से ढकी पहाड़ियाँ और बीच में ये जलप्रपात, आपको कैसा लगेगा। बस ऐसा ही लगता है चांगी जलप्रपात को देखने से। कई दर्शनीय स्थलों से होकर गुजरने वाला रास्ता है जो हमें यहाँ पहुंचा।

0: आता है चांगी जलप्रपात कलिम्पोंग का। इसके अलावा यहाँ का न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर दुर्लभ रेड पांडा, लाल पांडा भी आपको विचरण करते हुए घूमते हुए दिख जाएंगे। इसके अलावा काले भालू, सुस्त भालू, तेंदुए, जंगली सुअर, हिमालय उड़ने वाली गिलहरी वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ट्रेकिंग और पक्षियों को निहारना ये लोगों को बहुत पसंद आता है। इसके अलावा लेपचा संग्रहालय है। लेपचा संग्रहालय में जो लेपचा समुदाय है वो सिक्किम, भूटान, कई उसमें ये जो लेपचा समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं, तो उनका एक संग्रहालय है यहाँ पर कलिम्पोंग में। संग्रहालय में देहाती वस्तुएं हैं, उनकी खूबसूरती को बढ़ाने वाली चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो यहाँ के मूल निवासी जो लेपचा समुदाय के हैं उनका इतिहास आप जान सकते हैं, उनके वाद्य यंत्र, उनकी पांडुलिपियां, उनकी हस्तशिल्प वस्तुएं, ये सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा गेडेन थारपा चोलिंग मठ भी है, विशाल बुद्ध प्रतिमा पहाड़ों के बीच में, ये एक अट्रैक्शन है इसको देखने का। और अगर आप लकी होंगे ना तो यहाँ पर आपको इस चोलिंग मठ में, गेडेन थारपा चोलिंग मठ में पारंपरिक लोक नृत्य और संगीत का आनंद लेने का भी मौका मिलेगा। मतलब इतनी सारी बातें, इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पर करने और देखने के लिए कि इंसान बस खो जाए। छोटा सा ब्रेक है, मशहूरी है, उसके बाद बातें कर रहे हैं हम कलिम्पोंग की ही।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

बहुत ही खूबसूरत है कलिम्पोंग और यहाँ के नज़ारे। अगर आप यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान नहीं देख पाए ना, तो यहाँ का वन संग्रहालय भी जा सकते हैं। यहाँ पर आपको 3D लघु चित्र देखने को मिलेंगे, उनके बारे में यानी वन्य जीव जंतुओं के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर आप 3D पिक्चर्स देखते हैं ना, तो एक इंटरेस्ट बहुत अच्छे से आता है उनके बारे में जानने का, और बड़े अच्छे से आप समझ पाते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारी किताबें होंगी जिनसे आप जान सकते हैं जो पारिस्थितिकी जीव हैं उनके बारे में और यहाँ के पर्यावरण के बारे में भी, और जो पूर्वी हिमालय की जीवंत वनस्पति है और जीव जंतु हैं उनकी झलक भी आपको यहां देखने को मिलेगी। डंबर चौक जो है ना, उसको महारानी चौक के नाम से भी जाना जाता था पहले। कलिम्पोंग में खरीदारी और बहुत सारे खाद्य पदार्थों की स्वाद चटकारे लेने का ये पॉइंट है, ये जगह है। यहां पर आप बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं जो लाने के लिए भी, कि मतलब सबको गिफ्ट कर देंगे आके, पड़ोसियों को, अपने भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को। इसके अलावा वहां पर खाने पीने की भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, इसलिए लोग यहाँ पहुंचते जरूर हैं एक बार। दुर्बिन दारा हिल, ये बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक दृश्य वाली जगह है। दो पहाड़ियों में से ये एक है जिन पर कलिम्पोंग शहर बसा हुआ है। देओला पहाड़ी दूसरी पहाड़ी है जो एक पहाड़ी श्रृंखला के माध्यम से दुर्बिन दारा से जुड़ी हुई है। और कल्पना कीजिए कि शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर आप खड़े हैं, तो वो यही जगह है। यहां से आप आसपास के मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। और जो इसके शिखर पर ना जोंग धोक पालरी मठ ये भी है, तो लोग इसको भी जाकर देखने की इच्छा रखते हैं और देखते भी हैं। इतने खूबसूरत नजारे हैं ना कि आंखें बस चुंधिया जाती हैं। देखते देखते ऐसा लगता है जैसे सब चीजें अपनी आंखों में समा लें और आंखों को बंद करके फिर खोलें ही ना।

सेंट थेरेसा कैथोलिक चर्च, ये कलिम्पोंग का जो है बहुत ही खास चर्च है, और क्रिसमस के दौरान अगर आप यहाँ आते हैं ना तो रोशनी से चमचमाता जगमगाता दिखेगा सजावट चारों तरफ। पाइन व्यू नर्सरी, यहाँ पर 1500 विदेशी प्रजातियों सहित कई प्रकार के दुर्लभ कैक्टस आप देखने को मिलेंगे, और खास बात यह है कि यहाँ पर उत्तरी, दक्षिणी और मध्य अमेरिका के भी कैक्टस आपको देखने को मिलेंगे, वहां से लाए हुए पौधे भी आप देख सकते हैं, और अगर आप कोई पौधा खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और यहां पर आपको जो संस्थापक होते हैं बड़े ही प्रेम और समर्पण के साथ पूरे नर्सरी का जो है वो दौरा करवाते हैं। दुर्पिन मठ भी बहुत खास है यहाँ का, इसके अलावा हाट बाजार है कलिम्पोंग का, वहां पर भी आप जरूर जाइए, वहां पर आपको जैविक उत्पाद बहुत सारे मिल जाएंगे, चुंबक खासकर मिलेंगी, वहां पर पारंपरिक हस्तशिल्प की चीजें मिल जाएंगी। गौरीपुर हाउस है, साहित्य और इतिहास दोनों की मिलीजुली परंपरा यहां पर आपको देखने को मिलेगी। गौरीपुर हाउस जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की विरासत से जुड़ा हुआ है, और यहीं पर इसी घर में उन्होंने जमुना दिन, जक्ष माया, जरा थिकली जैसी कविताएं लिखी थीं, और बहुत कुछ है यहां।

इसी के साथ स्वीकार कीजिए भावना का नमस्कार। मैं आपसे मिलूंगी अगले शनिवार 12:10 पर। घर आंगन प्रोग्राम होगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम कूल चैनल पर, लेकिन उससे पहले समय है समाचारों का। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16 रूपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज वेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 당근.
1: हर आंगन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ मंजुला
2: और मैं हूँ प्रतिभा। तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
2: श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल यानी मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, जहाँ मन भय से मुक्त हो और मस्तक ऊंचा हो, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सकारात्मकता हर दिल में बसती है।
1: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात कही। और दोस्तों, यही तो है हमारे इस कार्यक्रम की पहचान, एक ऐसा मंच जहाँ परिवार के हर सदस्य के लिए कुछ न कुछ खास है, जहाँ हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, पर्यावरण की, सेहत की, जीवन शैली और खुशियों को देंगे एक नया नजरिया। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए घर आंगन, क्योंकि यहाँ हर दिन है प्रेरणादायक और खूबसूरत।

0: अभी हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर को फिल्म दो गलियां से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी। जी हाँ, वो आवाज जिसने पिछले 90 वर्षों से भारत की संस्कृति, परंपराओं और भावनाओं को हर घर तक पहुंचाया। 1936 में शुरू हुई आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें नहीं सुनाई बल्कि भारत की आत्मा को आवाज दी। चाहे शास्त्रीय संगीत हो, लोकगीत हो, कवि सम्मेलन हो या नाटक, आकाशवाणी ने हर कला को सम्मान और मंच दिया। भारत के अलग अलग राज्यों की लोक कलाएं,
2: राजस्थान का मांड, पंजाब का भांगड़ा, बंगाल के बाउल गीत, उत्तराखंड की झोड़ा चांचरी, इन सबको देश भर में पहचान दिलाने का काम आकाशवाणी ने किया। और साहित्य, कितने ही कवियों, लेखकों और शायरों की रचनाएं पहली बार लोगों तक आकाशवाणी के जरिए ही पहुंची। हर भाषा, हर बोली को यहाँ अपनापन मिला।
0: बिल्कुल सही। और एक समय ऐसा था जब पूरा परिवार रेडियो के आसपास बैठकर हवा महल, विविध भारती और संगीत कार्यक्रम सुना करता था। आकाशवाणी ने न केवल मनोरंजन किया बल्कि भारतीय संस्कारों और परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। आज डिजिटल दौर में भी आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता और सांस्कृतिक पहचान के साथ लोगों के दिलों में बसी हुई है।
2: आकाशवाणी के 90 वर्ष यानी 90 वर्षों की आवाज, विरासत और भारतीय संस्कृति का गौरवशाली सफर। आइए हम सब मिलकर आकाशवाणी के इस अद्भुत सफर को सलाम करें।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: और दोस्तों, अक्सर जिन चीजों को बेकार समझकर हम फेंक देते हैं, कभी कभी वही चीज किसी और के सपनों की नींव बन जाती है। आज की कहानी है एक ऐसी महिला की जिन्होंने नारियल के फेंके हुए छिलके, जो शेल होते हैं, कोकोनट शेल, उसमें भी संभावनाओं का भविष्य देखा। ये कहानी है मारिया कोरियाकोस की, केरल में रहने वाली। मारिया रोज देखती थी कि हजारों नारियल के छिलके और शेल इस्तेमाल के बाद कूड़े में फेंक दिए जाते हैं और ये छिलके सड़कों, नालों और लैंडफिल में जमा होकर प्रदूषण को बढ़ाते थे और हानिकारक कचरे का हिस्सा बनते जा रहे थे।
3: बिल्कुल। और देखो, लेकिन जहां लोग समस्या देख रहे थे, वहीं मारिया ने एक अवसर देखा। उन्होंने सोचा, क्यों ना इन बेकार समझे जाने वाले नारियल के शेल में से कुछ सुंदर और उपयोगी चीजें बनाई जाए। बस यहीं से शुरू हुआ एक अनोखा सफर। मारिया ने नारियल के शेल से कप, कटोरी, सजावटी सामान और कई पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाने शुरू किए। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि केवल इको फ्रेंडली होना ही काफी नहीं है।
2: बिल्कुल सही कहा, लोगों को कुछ नया, आकर्षक और अलग चाहिए। तभी मारिया ने अपने सोच में रचनात्मकता जोड़ी। उन्होंने नारियल के उत्पादों को खास टैंड रंग से और आधुनिक डिजाइन देना शुरू किया। साधारण जो शेल होते थे, अब स्टाइलिश और आकर्षक पादों में बदलने लगे। उनकी मेहनत, समझदारी और शानदार जो मार्केटिंग व्यू है, उसने लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया।
3: बिल्कुल। और देखो मंजुला, इसके बाद फिर जन्म हुआ थेंगा नाम के उस ब्रांड का, जो आज पर्यावरण संरक्षण और नवाचार का प्रतीक बन चुका है। और देखो, ये भी बता दें अपने श्रोताओं को कि थेंगा का मतलब होता है नारियल।
2: क्या बात है।
3: आज थेंगा के उत्पाद देश विदेश में पसंद किए जा रहे हैं। मारिया ने न सिर्फ अपना एक सफल व्यवसाय खड़ा किया, बल्कि हजारों नारियल के शेल को लैंडफिल में जाने से भी बचाया।
2: और उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर सोच सकारात्मक हो, इरादे मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो कचरा भी किसी की कामयाबी की पहचान बन सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको कोई चीज बेकार लगे, तो एक बार ये जरूर सोचिएगा कि शायद उसी में से किसी नए भविष्य की शुरुआत छिपी हो।
4: ए बाबू, ले लो ना नारी।

0: अपना देश। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की।
1: और दोस्तों, आज के दौर में करियर सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या शिक्षक तक सीमित नहीं है। अब लोग ऐसे पेशे चुन रहे हैं जहां रचनात्मकता भी हो, आकर्षण भी हो और अच्छी कमाई भी हो। ऐसा ही एक अनोखा करियर है इमेज कंसल्टेंट की और पर्सनल स्टाइलिश। आप सोच रहे होंगे आखिर ये काम होता क्या है, तो चलो प्रतिभा बता दो फटाफट।
0: देखो मंजुला, इमेज कंसल्टेंट किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद करता है कि कैसे कपड़े पहने, किस तरह बात करें, हाव भाव आपका कैसा हो, साक्षात्कार या बैठक में खुद को कैसे प्रस्तुत करें, यानी कैसे प्रेजेंट करें। इन सब बातों का वही जो इमेज कंसल्टेंट होता है वो हमारा मार्गदर्शन करता है।
1: बहुत सही। और वही पर्सनल स्टाइलिस्ट का काम होता है किसी व्यक्ति के लिए सही पहनावा और रूप रंग चुनना। कौन सा रंग अच्छा लगेगा, किस अवसर पर क्या पहनना चाहिए, कौन सा रूप आपकी पहचान को और निखारेगा, ये वही सब तय करते हैं।
0: आजकल केवल फिल्मी कलाकार ही नहीं, कार्यालयों में काम करने वाले लोग, सामाजिक माध्यमों पर सक्रिय लोग,

0: व्यापार करने वाले और यहाँ तक कि कॉलेज के विद्यार्थी भी इनकी सहायता लेने लगे हैं। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पहनावे की समझ, अच्छी बातचीत की कला और लोगों को समझने की क्षमता बहुत जरूरी होती है। कई फैशन और व्यक्तित्व प्रबंधन संस्थान इसके विशेष पाठ्यक्रम भी कराते हैं।
1: बिल्कुल, तो अगर आपको फैशन पसंद है, लोगों के व्यक्तित्व को निखारना अच्छा लगता है, तो ये करियर आपके लिए शानदार विकल्प बन सकता है। करियर वही चुनिए जिसमें आपका हुनर भी चमके और मन भी खुश रहे।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी स्वीकार किया मैंने।
1: और मंजुला देखो, अब बात करते हैं उस संग्रहालय की जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की स्मृति से जुड़ा है। नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक अनूठा तकनीक आधारित और इंटरेक्टिव संग्रहालय है जो 3 मूर्ति परिसर में स्थित है।
0: और यह संग्रहालय 75 वर्षों के भारत के लोकतांत्रिक सफर को 7 घंटे के इमर्सिव कंटेंट में के माध्यम से दिखाता है। प्रधानमंत्री संग्रहालय की मुख्य विशेषताएं की बात की जाए तो यहाँ होलोग्राफिक डिस्प्ले है, ऑटोमेटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी और 360 डिग्री इमर्सिव थिएटर का उपयोग किया गया है।
1: बिल्कुल। और देखो, यहाँ एक इंटरेक्टिव जोन भी बनाया गया है, सेल्फी विद प्राइम मिनिस्टर, यानी अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल सेल्फी, और वॉक विद प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्रियों के साथ टहलने का वर्चुअल अनुभव भी आप यहाँ ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और लेटर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम से वर्चुअल पत्र, वर्चुअल हेलीकॉप्टर राइड का प्रावधान भी है जिसके जरिए आप देश के विकास को ऊपर से देखने का अनुभव पा सकते हैं। 3 मूर्ति भवन में स्थित है।
1: बिल्कुल। और देखो, यहाँ एक अनुभव केंद्र भी है जहाँ आप 1971 के युद्ध, हरित क्रांति या पोखरण परमाणु परीक्षणों के इमर्सिव तरीके से को आप फिर से जी सकते हैं, देख सकते हैं, और हेड राइटिंग रोबोट के माध्यम से आप प्रेरणादायक उदाहरण घर ले जा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही। और आगंतुक अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करा सकते हैं और 2047 के भारत के लिए अपने संदेश भी छोड़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग ना। और यहाँ आगंतुकों के लिए विशेष सुविधाएं हैं, संग्रहालय में गाइड्स, ऑडियो गाइड्स, कैफेटेरिया और एक स्मारिका यानी सुविनियर जो हम लेते हैं जहां भी जाते हैं उसकी दुकान भी उपलब्ध है।
1: और देखो, हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री संग्रहालय सोमवार और राजपत्रित छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह के हर दिन खुला रहता है। यहां का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, हालांकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे होता है।
0: और टिकट ऑफिशियल वेबसाइट या बुक माई शो के माध्यम से ऑनलाइन बुक किए जा सकते हैं। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट्स हैं वो रियायती दरों पर भी उपलब्ध हैं।
1: 3 मूर्ति मार्ग पर स्थित इस संग्रहालय में लेजर शो का भी आयोजन किया जाता है जिसका आयोजन शाम 7:30 से 8 बजे तक किया जाता है। और सबसे जरूरी बात ये कि आईडी प्रूफ ले जाना यहाँ पर जरूरी है।
0: तो इस संग्रहालय को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से एक दिन निकालिए और संग्रहालय को दीजिए एक अनूठा अनुभव प्राप्त कीजिए।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म एक राज से।
1: श्रोताओं, हालांकि हर दिन हम मौसम में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, जहां चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी पड़ रही है, वहीं कभी कभी तेज बारिश राहत की मरहम भी लगा रही है।
0: पर ये जो समय है गर्मी का, है मौसम हमारा इम्तिहान ले रहा है। गर्मी और बढ़ेगी, पारा और चढ़ेगा, ऐसे में अपना और अपनों का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हीट स्ट्रोक, डायरिया, चक्कर आना जैसी समस्याएं होने लगती है।
1: बिल्कुल ठीक कहा मंजुला, तो क्यों ना आज बात करें इस बढ़ते पारे के साथ खुद को स्वस्थ और सुरक्षित कैसे रखा जाए। शरीर को हाइड्रेट रखें, यानी कि पानी की कमी को बिल्कुल ना होने दें, भरपूर पानी पिए, प्यास ना लगने पर भी दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पीते रहिए।
0: बिल्कुल, और इलेक्ट्रोलाइट लें, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी या ORS का सेवन करें, जो शरीर में नमक की कमी को पूरा करते हैं। कैफीन और बहुत मीठे पेय पदार्थों से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल, और देखो धूप और गर्मी के से जो बचाव है वो भी बेहद जरूरी है। दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे के बीच बाहर निकलने से बचें, क्योंकि इस समय धूप सबसे तेज होती है। और बाहर निकलते समय हल्के रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहने, सिर ढकें, धूप से बचाव के लिए टोपी, छाता या स्कार्फ का इस्तेमाल जरूर करें।
0: आंखों की सुरक्षा के लिए सनग्लासेस लगाएं और खान पान में बदलाव भी लाएं। भोजन करें तले भुने, मसालेदार और भारी भोजन से बचें।
1: और पानी से भरपूर फलों का सेवन करें, वो ज्यादा फायदेमंद है। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, संतरा, अंगूर जैसे फलों का सेवन किया जा सकता है। और जैसे तुमने अभी बताया कि ताजा पका हुआ खाना ही खाना है।
0: बहुत सही। और अगर बहुत तेज प्यास लगे, चक्कर आए, सर दर्द, उल्टी महसूस हो या पसीना आना बंद हो जाए, तो ये लू के लक्षण हो सकते हैं। प्राथमिक उपचार के तौर पर तुरंत किसी ठंडी या छायादार जगह पर जाएं, शरीर को गीले कपड़े से पोंछें, ठंडे पानी से नहाएं और पंखे के नीचे बैठें।
1: लक्षण गंभीर होने पर डॉक्टर से संपर्क करना बिल्कुल ना भूलें, और छोटे बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। बस छोटी छोटी सावधानियां हमें इस गर्मी के मौसम में बीमार होने से बचा सकती हैं और स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं।

0: गीता दत्त और लता मंगेशकर की आवाज में अभी है, आपने ये गीत सुना फिल्म यहूदी से। और मंजुला, देखो बात करते हैं एक ऐसे दर्शन की जो अपूर्णता, अनित्यता और सादगी में सुंदरता खोजता है। ये जीवन की खामियों को स्वीकार करने, पुरानी वस्तुओं के प्रति सम्मान और प्राकृतिक चीजों की सादगी में शांति पाने का एक बेहतरीन तरीका है।
1: बिल्कुल, मैं समझ गई। जापान में विकसित इस पारंपरिक कला किन्सुगी में टूटे हुए बर्तनों को फेंका नहीं जाता है, बल्कि उन्हें सावधानी से जोड़ा जाता है और जो दरार होते हैं उसको सोने, चांदी या कभी कभी प्लैटिनम से भर दिया जाता है।
0: और देखो खास बात यह है कि यहाँ टूट फूट को छिपाने की कोशिश नहीं की जाती, बल्कि उसे उभारा जाता है। किन्सुगी का शाब्दिक अर्थ है गोल्डन ज्वाइनरी, यानी सोने से जोड़ना, लेकिन इसका असली अर्थ ये बताता है कि टूटना किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि एक नए रूप की शुरुआत है।
1: बहुत अच्छी बात कही। और इस कला में जीवन का वास्तविक दर्शन है जो अपूर्णता, अस्थायी और सादगी में सुंदरता खोजता है। यह कला उसी सोच को वास्तविक रूप देती है। जब कोई बर्तन टूट के फिर से जुड़ता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता, बल्कि वह पहले से भी खास, सुंदर और अर्थपूर्ण बन जाता है।
0: और देखो ये विचार जो है ना, वो जीवन पर भी लागू होता है। हम सभी अपने जीवन में अनुभवों से कहीं ना कहीं टूटते हैं, जैसे कि असफलता, दर्द, रिश्तों का टूटना या बदलाव। लेकिन किन्सुगी हमें ये याद दिलाता है कि ये संघर्ष हमें कमजोर नहीं बनाते, बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। और अगर हम चाहें तो इन्हीं अनुभवों को सोने में बदल सकते हैं, यानी सीख, समझ और मजबूती से।
1: तो किन्सुगी हमें सिखाता है कि परफेक्शन जरूरी नहीं है, असली खूबसूरती उन निशानों में है जो हमें समय और अनुभव देती है। और शायद हम सभी अपने अपने तरीके से एक चलती फिरती किन्सुगी कला है जो हर संघर्ष के बाद और अधिक अर्थपूर्ण और मजबूत

0: बन जाते हैं। तो एक बार मेल आईडी भी बता दो प्रतिभा की, कौन से मेल आईडी से हमें जो सुन रहे हैं श्रोता वो हमें ईमेल भेज सकते हैं।
1: देखो मंजुला, हमारा कार्यक्रम जैसा कि सब सभी जानते हैं कि घर आंगन कार्यक्रम है और हमें हमारे श्रोता हर रोज अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, तो हम आज भी अपने श्रोताओं से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें मेल करना ना भूल गए, और जिसके लिए हमारा मेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

0: असली नकली, ये था इस फिल्म का नाम जिसका आपने की सुना। आवाज थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।
1: बिल्कुल। और प्रतिभा, अब हम सबको ले चल रहे हैं अपने दोस्तों को एक ऐसी दुनिया में जहां प्रकृति, परंपरा और नारी शक्ति मिलकर रचती है एक अनोखी कहानी। ये कहानी है मणिपुर की, जहां बनते हैं अद्भुत लोटस सिल्क। सोचिए, एक फूल जो कीचड़ में खिलता है, वही कमल अब बन रहा है एक शानदार, दुर्लभ और बेहद खूबसूरत रेशम यानी सिल्क। मणिपुर की झीलों में उगने वाले कमल के तनों से निकाला जाता है ये खास धागा। हर एक तने को हाथों से तोड़ना, उसके भीतर से एक बेहद महीन रेशे को निकालना और फिर उसे धागे में बदलना,
0: ये कोई मशीन नहीं बल्कि महिलाओं के धैर्य और हुनर की कहानी है। स्थानीय भाषा में इस कपड़े को कौनी फेई कहा जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी असली चमक पहनने के बाद निखरती है। जैसे जैसे आप इसे ओढ़ते हैं, इसकी खूबसूरती और भी गहरा जाती है।
1: बिल्कुल। एक एक साड़ी को बनाने में हजारों लाखों कमल के फूलों का योगदान होता है और लगते हैं कई कई घंटे, कभी कभी कई दिनों की मेहनत, तब जाकर तैयार होता है एक मास्टरपीस जिसे सिर्फ पहना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। फॉर द वुमन, बाय द वुमन। लोटस सिल्क की ये पूरी यात्रा महिलाओं के हाथों से ही गुजरती है।
0: और श्रोताओं, देखिए, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनकी आत्मनिर्भरता है और उनके सपनों की बुनाई है। और सबसे खूबसूरत बात ये कि इस सिल्क को बनाने में ना किसी कीड़े को नुकसान होता है और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल। ये है प्रकृति के साथ संतुलन की सच्ची मिसाल। भारत की धरती पर ऐसे अनगिनत खजाने छुपे हैं जहां हर धागा, हर रंग, हर बुनाई एक कहानी कहते हैं। हमारी इंडियन टेक्सटाइल सिर्फ कपड़े नहीं, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी पहचान है।
1: क्या बात है। तो क्यों ना हम इन हैंडमेड उत्पादों को अपनाएं, इन्हें गर्व से पहने और दुनिया को दिखाएं कि असली खूबसूरती मशीनों में नहीं, हाथों की मेहनत तो और दिल की कला में होती है। तो कमल से शुरू हुई ये कहानी जब किसी की जिंदगी का हिस्सा बनती है तो सिर्फ एक साड़ी नहीं, एक एहसास बन जाती है।
2: चमकी डोरी

0: हम सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को फिल्म साजन से।
1: तो दोस्तों वक्त हो चला है इजाजत लेने का। उम्मीद है आज की ये मुलाकात आपके दिल को सुकून और चेहरे पर मुस्कान दे गई होगी। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। दीजिए मंजुला और
0: प्रतिभा को इजाजत।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने ये बात कही।
1: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल और इतिहास का हिस्सा बना रहना चाहता है या नहीं।
2: पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी और हिस्ट्री और नॉट।
0: सेना प्रमुख की यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां के प्रमुख व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगे। वहां हजारों भारतीय समुदाय के उपस्थित होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री की नीदरलैंड्स यात्रा का एक मुख्य आकर्षण होगा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड्स संबंधों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड्स पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों

0: द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन पर पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था, जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रूपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रूपये से घटाकर 16.50 रूपये प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रूपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रूपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। ये बटालियन साजो सामान और तैनाती के लिए मानक संघीय प्रोटोकॉल का पालन करेगी, उग्रवाद रोधी अभियानों और सीमा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाके डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। जनगणना कर्मी मकानों के निर्माण में इस्तेमाल हुई सामग्री और उनमें उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित 33 प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 15 लाख परिवारों ने स्वगणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प चुना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिनभर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Excitement is building among the Indian diaspora in the Netherlands as Prime Minister Narendra Modi prepares to address the community this afternoon during his official visit. Thousands of Indian community members are expected to attend what organizers are calling a historic address. The event will be a highlight of the Prime Minister's trip to the country. Prime Minister Modi reached the Netherlands late last night to a warm reception. Members of the Indian community, representing different age groups, regions and faiths, gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi Modi and Vande Mataram as he arrived.
2: Modi Modi Modi Modi Modi Modi Modi ji is Bharat Vande Mataram Bharat Vande Mataram.
1: The community event is expected to focus on India-Netherlands ties, the role of the diaspora, and India's global outreach. Indian Army Chief General Upin Dwivedi today said that Pakistan must stop harboring terrorists and operating against India. Speaking at Sena Samvad in New Delhi, Mr. Dwivedi said that if Pakistan continues these activities against India, then they will have to decide whether Pakistan wants to be a part of geography or history.
3: I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not.
1: In a significant move to strengthen the law and order framework in Tripura, the Ministry of Home Affairs has officially sanctioned the raising of an additional inter-reserve battalion. The centre has sanctioned a one-time financial grant of 50 crore for its establishment and up to 30 crore for infrastructure development. This new unit will primarily focus on counter-insurgency operations and border guarding, with the centre retaining the authority to deploy these personnel anywhere across the country as needed. Sikkim is observing its statehood day today, marking its transition from a monarchy to becoming the 22nd state of India in 1975. Vice President C.P. Radhakrishnan will undertake his first visit to Sikkim today after assuming office. He will attend the statehood day celebrations in Gangtok. During the event, the Vice President will also launch and lay foundation stone of multiple donor projects. The Prime Minister, and Union Home Minister extended greetings to the people of Sikkim on their statehood day. The West Bengal government has ordered re-verification of all caste certificates issued since 2011. Officials say questions have been raised about the authenticity and validity of these documents over the past 14 years. Subdivisional officers and district-level officials will now scrutinize every certificate. If any are found to have been issued based on false information or irregularities, they will be cancelled under the law. A Delhi court has granted bail to businessman Robert Vadra in a money laundering case linked to a 2008 land deal in Gurugram's Shikohpur village. The matter has now been listed for further hearing on 10th of July. Vadra appeared before the Rouse Avenue court in compliance with the summons issued to him after the court had taken cognizance of the Enforcement Directorate's prosecution complaint filed under the Prevention of Money Laundering Act. The case relates to alleged irregularities in a land transaction involving 3.53 acres of land. In Andhra Pradesh, six women daily wage workers died after a speeding tipper lorry rammed into a group of labourers in Kakinada district this morning. The accident occurred near Kovuru Bridge in Kakinada rural mandal when the workers were crossing the road to reach a work site. Expressing shock over the incident, Deputy Chief Minister K. Pawan Kalyan said the state government would provide compensation of 4 lakh rupees to the families of the deceased. He also instructed officials to implement safety measures at employment guarantee work sites located near highways and busy roads. In badminton, Indian men's doubles pair of Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will face Malaysian shuttlers Nuruzzuddin and Ghosh Dev Fay in semi-finals of Thailand Open in Bangkok today. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders will take on Gujarat Titans in Kolkata this evening at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

इन्हीं दुश्वारियों से जिंदगी आसान होती है, इन्हीं दुश्वारियों से जिंदगी आसान होती है, न हो दुश्वारियां तो जिंदगी दुश्वार हो जाए। यही शेर याद आया जब आज के बेमिसाल कलाकार को जानना शुरू किया। नमस्कार, वक्त हो चला है 1:11:17 आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आप जानते ही हैं आज है कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल और मैं संगीता हूं आप सभी के साथ। आज जिक्र प्रकाश मेहरा का। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्म हुआ उनका। महज 5 साल की उम्र में मां का साया सर से उठ गया तो पिता ने भी बेसहारा छोड़ दिया। गरीबी और भूख को उन्होंने महसूस किया, पर इसी गरीबी और भूख ने उनके हौसलों को और बुलंद किया। बने रहिए हमारे साथ, इस गीत के बाद बातें कुछ और होंगी प्रकाश मेहरा की।

कल यानी 17 मई को प्रकाश मेहरा की पुण्यतिथि है और हम आज प्रकाश मेहरा को याद कर रहे हैं। दरअसल जब हम सिनेमा देखते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ कितना सुंदर है, कितना शानदार है, क्योंकि पहले पर्दे पर बिल्कुल जगमगाता सब कुछ नजर आता है, लेकिन उसके पीछे किसी कलाकार का कितना संघर्ष होता है ये हम नहीं जानते हैं जब तक हम उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं। तो जेब में महज 13 रुपये और आंखों में हजारों सपने लेकर प्रकाश मेहरा पहुंच गए माया नगरी मुंबई। दिल धड़कता था सिनेमा के लिए, सो जैसे से सिनेमा के सेट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने छोटे से छोटा काम करने से परहेज नहीं किया, बड़े कलाकारों को चाय तक पिलाई। शैलेंद्र का लिखा एक गीत याद आ रहा है, ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए हजार दिन, कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। फिर क्या, किस्मत ने प्रकाश मेहरा का साथ देना शुरू किया। पहले प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम मिला और फिर असिस्टेंट बनने का मौका मिला। प्रकाश प्रतिभा का खजाना थे, खजाना। अपने मन में उठ रही भावनाओं को वो शब्दों में पिरोने का हुनर बखूबी जानते थे। कमाल के कलाकार थे।

तो अगर आपने अभी अभी एफएम ट्यून इन किया है तो हम आपको बता दें कि आज हम जिक्र कर रहे हैं कलाकार बेमिसाल में प्रकाश मेहरा के बारे में बातें कर रहे हैं। बात 1968 की है। प्रकाश मेहरा अपनी पहली फिल्म लेकर आए हसीना मान जाएगी। शशि कपूर और बबीता के अभिनय से सजी इस फिल्म ने धूम मचा दी और इसके साथ ही प्रकाश मेहरा की किस्मत भी चमक उठी, या यूं कहें कि उनकी मेहनत रंग लाई। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1971 में फिरोज खान और संजय खान को साथ लेकर फिल्म बनाई मेला, जो जबरदस्त हिट रही। धर्मेंद्र, जया भादुड़ी और संजय खान के साथ बनाई फिल्म समाधि, ये फिल्म भी खूब चली। लेकिन प्रकाश मेहरा का करिश्मा तब शुरू हुआ जब अमिताभ बच्चन से उनकी मुलाकात हुई। ये किस्सा भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस खूबसूरत से गीत के बाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

वक्त हो चला है 1:35 और हो गए पूरे 50 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। कार्यक्रम है कलाकार बेमिसाल, और कलाकार बेमिसाल में आज हम याद कर रहे हैं प्रकाश मेहरा को। बात 1973 की है, अमिताभ बच्चन के सितारे गर्दिश में थे, उनकी पिछली कई फिल्में लगातार फ्लॉप रहीं। प्रकाश मेहरा ने जंजीर बनाने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने धर्मेंद्र को अप्रोच किया, पर उनके पास डेट्स नहीं थी। उसके बाद उस समय के सारे सुपरस्टार के पास प्रकाश मेहरा गए, पर किसी ने जंजीर के लिए हाँ नहीं कहा। लेकिन प्राण से प्रकाश मेहरा की एक मुलाकात ने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। क्या हुआ ये हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन ये गीत सुनते हैं पहले जंजीर से।

जी तो हुआ ये कि एक दिन प्राण ने प्रकाश मेहरा को फोन किया और वो उन्हें बॉम्बे टू गोवा फिल्म दिखाने ले गए। वहीं पर प्राण ने प्रकाश मेहरा को अमिताभ बच्चन से मिलवाया। प्रकाश मेहरा ने तभी फैसला कर लिया कि वो अपनी फिल्म जंजीर में अमिताभ बच्चन को कास्ट करेंगे।

0: हालांकि लोगों ने प्रकाश मेहरा को सलाह दी कि वो अमिताभ बच्चन को एज ए एक्टर नहीं ले, लेकिन प्रकाश मेहरा ने अमिताभ को ही लिया। फिल्म रिलीज हुई, लेकिन इस फिल्म ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी और ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई। और आपको ये भी बता दें कि ये फिल्म प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी।
1: और

प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन ने 6 और ब्लॉकबस्टर मूवीज दी। हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल और शराबी। इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया।

इस जोड़ी यानी कि प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जो आखिरी फिल्म थी वो थी जादूगर, लेकिन ये फिल्म पर्दे पर अपना जादू नहीं चला सकी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन बनाने में सबसे बड़ा योगदान प्रकाश मेहरा का है।

0: रा के।
1: वक्त तो चला है आपसे इजाजत लेने का दोस्तों, तो संगीता को इजाजत दीजिए, लेकिन आपसे फिर जल्दी ही मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और क्या करें, बातें तो अभी भी बहुत थी और गाने भी कई सारे आपको सुनवाने थे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। फिर आपसे मुलाकात होगी, अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के अपने हमसब रॉब जेटन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई और बाहमी तिजारत के शोबों समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 के बाद से जारी किए गए जात के सर्टिफिकेट की फिर से जांच के अहकाम जारी किए हैं। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की दो सतह पर मुश्तमिल फिर से जांच का ऐलान किया है। फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां खत्म कर दे। और बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद नीदरलैंड्स के वजीर आजम रोबन जेटेन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और इज्जत मआब शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मिलने जाएंगे। यह दौरा बाहमी रिश्तों से आगे बहुत अहमियत का हामिल है और तवक्को है कि इसके जरिए हाल ही में मुकम्मल हुए भारत यूरोप आजादी तिजारती समझौते के तनाजुर में वसी भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वजूद में आएंगे। इससे कबल वजीर आजम के नीदरलैंड्स पहुंचने पर नीदरलैंड्स के वजीर खारजा ने उनका इस्तकबाल किया। भारतीय बरादरी और नीदरलैंड्स के ग्रुपों ने सकाफती प्रोग्राम और मौसीकी पेश करके उनका खैर मकदम किया। मुख्तलिफ उम्र के ग्रुपों, खित्तों और मजाहिब पर मुश्तमिल भारतीय बरादरी के मेम्बरान ने रिवायती रक्स और मौसीकी पेश की। वजीर आजम मोदी के पहुंचने पर मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से फजा गूंज उठी। वजीर आजम ने नीदरलैंड्स में भारतीय बरादरी के जरिए उनके खैर मकदम की कुछ झलकियां साझा की हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनका इस्तकबाल शानदार तरीके से किया गया और जिसमें कथक, उड़ीसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम और गरबा रक्स भी शामिल था। वजीर आजम भारतीय बरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स के तजारती लीडरों से बातचीत करेंगे। ये तकरीब वजीर आजम के नीदरलैंड्स के दौरे का एक अहम हिस्सा होगी। इस तकरीब में भारत और नीदरलैंड्स के रिश्तों, भारतीय बरादरी के रोल और भारत की पूरी दुनिया में पहुंच पर खास तवज्जो दी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारतीय बरादरी और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के सीईओ से खिताब करेंगे। सेमीकंडक्टर, चिप्स और एआई जैसे शोबों में कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है, जिसमें नीदरलैंड्स को आलमी रहनुमा की हैसियत हासिल है। तिजारती नुक्ते नजर से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम शराकत दार और बरामदाती व सरमायाकारी के बड़े मरकजों में से एक है। दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, जरई टेक्नोलॉजीज और सेहत के शोबों में मजबूत शराकत दारी रही है। सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब अली फाले काजिम अल जैदी को इराक के वजीर आजम का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ तवील अरसे से चले आ रहे अपने दोस्ताना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और उसने तमाम शोबों में बाहमी रिश्तों को मजीद मुस्तहकम और मजबूत करने का तहैया कर रखा है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि वो दोनों मुल्कों की खुशहाली और तरक्की के लिए मिलकर काम करने के मुंतजिर हैं। भारत के इदारों ने पहली बार 182 करोड़ रुपए मालियत की कैप्टागन मनुष्यात को कब्जे में लिया है। वजीर दाखिला अमित शाह ने ये जानकारी दी और ये भी कहा कि सरकार ने भारत को मनुष्यात से पाक मुल्क बनाने का तहैया कर रखा है। जनाब अमित शाह ने कहा कि मगरबी एशिया जाने वाली मनुष्यात को कब्जे में लेने और इस सिलसिले में गैर मुल्की शख्स की गिरफ्तारी इस बात की दरख्शा मिसाल है कि हम मुल्क में मनुष्यात को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार मुल्क में एक ग्राम भी नशा आवर अशिया न तो आने देगी और न अपने इलाके से गुजरने देगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और मुल्क के कई दीगर हिस्सों में पिछले कुछ दिनों के दौरान तेज बारिश और आंधी में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब सिंह ने मुतासरा कुनबों को ताजियत पेश की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत खराब मौसम से मुतासरा रियासतों को हर मुमकिन मदद दे रही है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 से जारी किए गए जात पात से मुतालिक तमाम सर्टिफिकेट की फिर से तस्दीक का हुक्म दिया है। हुक्काम का कहना है कि गुज़श्ता 14 बरस के दौरान जारी किए गए इन दस्तावेजात के जवाब और असलियत के बारे में सवालात उठाए जाते रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस अरसे के दौरान दर्ज फेरिस्तों, कबीलों और दीगर पसमानदा तबकों को जातों के बारे में लगभग 1,69,00,000 सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। इनमें से बहुत से सर्टिफिकेट द्वारे सरकार कैंप की तवस्सुत से तकसीम किए गए। सब डिवीजनल अफसर और जिला सतह के एहलकार हर सर्टिफिकेट की जांच करेंगे। अगर यह साबित हुआ कि कोई भी सर्टिफिकेट गलत जानकारी या बेकायदगी से जारी किया गया है तो कानून के मुताबिक उसे मनसूख कर दिया जाएगा। हाल ही में वोटर फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी के दौरान जिन अफराद के नाम हजफ कर दिए गए हैं उन पर भी इस हिदायत का इतलाक होगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के तलबा के इम्तहानात के नतीजे के ऐलान के बाद एक नोटिस जारी किया है जिसमें इम्तहानात के अमल में मुनसिफाना तौर तरीकों और शफाफियत की तस्दीक होती है। नोटिस में कहा गया है कि जो तलबा अपने नतीजे से मुतमईन नहीं है वो दो मरहलों वाले नजरसानी निजाम से

0: जब काम की जगह जाने के लिए मजदूर सड़क पार कर रहे थे। चार खवातीन की जाए हादसे पर ही मौत हो गई, जबकि दो दीगर ने काकीनाडा के अस्पतालों में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों को पनाह देना और भारत के खिलाफ कार्रवाइयां बंद करनी होंगी। नई दिल्ली में सेना संवाद में खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ इस तरह की सरगर्मियां जारी रखता है तो उसे यह फैसला करना होगा कि क्या पाकिस्तान दुनिया के नक्शे का हिस्सा बनना चाहता है या नहीं। वजारत दाखिला ने त्रिपुरा में नज्म व जब्त के फ्रेमवर्क को मजबूत करने की तरफ से एक अहम कदम उठाते हुए एक इजाफी भारतीय रिजर्व बटालियन को सरकारी तौर पर मंजूरी दी है। मरकज ने इसके कायम के लिए 50 करोड़ और बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए 30 करोड़ रुपए तक की माली इमदाद को मंजूरी दी है। भारत की सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल में मलेशिया के गो से फेई और नूरजीन को हराया। भारत की जोड़ी ने 82 मिनट में मलेशिया की जोड़ी को 19-21, 22-20 और 21-16 से हराया। 2019 और 2024 में कामयाबी के बाद भारत की इस जोड़ी का यह इस सीजन का पहला फाइनल और टूर्नामेंट का तीसरा फाइनल है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड्स के अपने हमनसब रॉब जेटेन के साथ बाहमी बातचीत करेंगे और शाह विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। सेमीकंडक्टर चिप्स और एआई और बाहमी तिजारत के शोबों समेत कई अहम समझौतों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। मगरबी बंगाल की सरकार ने 2011 के बाद से जारी किए गए जात पात के सर्टिफिकेट की फिर से जाँच के अहकाम जारी किए हैं। सीबीएसई ने 12वीं क्लास के तलबा के लिए सवालों के जवाब के पर्चों की दो सतह पर मुश्तमिल फिर से जांच का ऐलान किया है। फौज के सरबराह जनरल द्विवेदी ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दों को पनाह देना और सरगर्मियां खत्म कर दे। और बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की भारत की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with his Dutch counterpart Rob Jetten and call on King William Alexander and Queen Maxima today. Several important agreements expected to be signed, including in the fields of semiconductor chips, AI and bilateral trade. Army Chief General Upen Dwivedi warns Pakistan against harbouring terrorists and operating against India. West Bengal government orders re-verification of caste certificates issued since 2011. CBSE announces a two-stage re-evaluation process of answer sheets for Class 12 students. And in badminton, Indian duo of Sattvik Sairaj and Chirag Shetty enter finals of Thailand Open after a thrilling victory over Malaysian pair in the semi-finals. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on Their Majesties King William Alexander and Queen Maxima this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Earlier, when the Prime Minister arrived in the Netherlands late last night, he was received by the Dutch Foreign Minister. He was accorded a grand welcome through cultural and musical performances by the diaspora and Dutch troops. Members of the Indian community representing different age groups, regions and faiths gathered to welcome him with traditional dance and musical performances. The venue echoed with chants of Modi Modi and Vande Mataram as he arrived.
2: Modi, Modi, Modi, Modi, Modi.
1: In In a social media post, Mr. Modi said the welcome was remarkable as it included a dance performance covering Kathak, Odissi, Bharatanatyam, Kuchipudi and Mohiniyattam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है।

0: 2025 में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
1: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्रपत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्रपत्र नीदरलैंड्स में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी ही नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र द्वारे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
6: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। छात्र 19 से 22 मई के बीच मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति विषय ₹700 है। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
8: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, गर्मी की तपती धूप सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि हम पर निर्भर होने वाले पशुओं को भी परेशान करती है। गाय हो या भैंस, बकरी हो या भेड़, ऊंट हो या घोड़ा, ये सिर्फ पशु नहीं बल्कि किसान परिवार की ताकत होते हैं। खेत की मेहनत से लेकर घर की आमदनी तक पशुधन हमारे ग्रामीण जीवन की रीढ़ है। लेकिन इस बढ़ती गर्मी में, उमस में और बरसात आने से पहले का ये जो मौसम है, ये पशुओं के लिए कई बीमारियां लेकर के आ सकता है। तो ऐसे में आप अपने पशुओं का किस तरीके से ध्यान रखें, कौन कौन सी सावधानियां आप बरतें, यही आज हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। आज के इस अंक में मैं हूं आपके साथ कोमल और मेरे साथ हैं
2: निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से
1: नमस्कार।
2: कोमल, जैसे आपने बताया बाहर मौसम भी बहुत तेज है, गर्मी है, लू है और पानी की जरूरत इन दिनों में बहुत पड़ती है
1: जी।
2: अगर पशु का इनके ऊपर प्रभाव होता है तो हमारा न केवल दूध का उत्पादन घटता है बल्कि पशुओं की कार्यक्षमता भी घटती है। इनकी देखभाल किस तरह से हम करें और दुधारू पशुओं से अच्छा उत्पादन कैसे ले सकें, इन सभी विषयों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं हमारे श्रोताओं के जाने पहचाने डॉक्टर KL खुराना जी, जो पूर्व निदेशक हैं पशुपालन विभाग दिल्ली सरकार में। और इनसे हम आज जानेंगे इन सभी बातों को कि गर्मी के मौसम में पशुओं की उचित देखभाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, सबसे

0: मौसम चल रहा है गर्मी का, इसमें हमारे पशुओं पर इस गर्मी का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है?
1: निरंकार जी, पशुओं पे जीव हैं, गर्मी का प्रभाव ऐसे पड़ता है जैसे हम लोगों पे पड़ता है
0: जी।
1: और दुधारू पशु खास करके इस समय दूध उत्पादन कम हो जाता है हीट स्ट्रेस से और पशु बीमार पड़ जाते हैं, तो इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उनके खान पान का, रहन सहन का, सब कुछ उनको गर्मी से बचाना बहुत जरूरी है।
0: अगर जैसे कि अब गर्मी पड़ रही है, कैसे हमें पता लगे कि पशु को गर्मी से लू से प्रभावित हो गया है पशु?
1: एक तो आप ध्यान देंगे तो पशु लंबी सांस लेता है और बहुत उसको हीट स्ट्रेस हो गई है तो मुंह खोल के सांस लेता है
2: जी,
1: लार टपकती है, दूध उत्पादन में कमी आ जाती है और थर्मामीटर लगा के आप देखेंगे तो शरीर का तापमान बढ़ जाता है उससे।
0: तो सबसे जरूरी बात यह आती है कि इनसे बचाव के लिए हम उनका रखरखाव कैसे करें, किस तरह की जगह होनी चाहिए, कैसी शेड होनी चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, जब ज्यादा पशु रखते हैं किसान भाई तो आमतौर पे हम ऊपर लोहे की चादर लगाते हैं या एस्बेस्टर शीट का शेड बनाते हैं, तो उससे अगर हमें गर्मी से बचाने के लिए उस शेड के ऊपर या तो फूस डालें
2: जी,
1: फुआल टाइप है वो डालें, या फिर अगर हम कम से कम उस पर सफेद चूने की तह तो बना ही दें, उससे हीट रिफ्लेक्शन होती है, थोड़ी गर्मी कम आती है। और पशुशाला के अंदर जो है खास करके भैंसों के लिए समय समय पे छिड़काव का प्रबंध होना चाहिए, या फोगर मशीन होती है जैसे आजकल पंखा लगाते हैं ना, उसके आगे थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है और पंखे से वो पानी आपकी तरफ आता है, फोगर
0: नमी बनी रहेगी,
1: हाँ उससे नमी बनी रहेगी, तो वो सब करना बहुत जरूरी है। और सीधी धूप में पशु को बाहर ना निकालें, या तो पेड़ की छाया में हो या फिर पशु को अंदर रखें। और पशुशाला में आपका जो क्रॉस वेंटिलेशन, हवा का आवागमन जो है वो जरूर होना चाहिए, और ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हवा का आवागमन पशु की जो शरीर की ऊंचाई है उससे ऊपर हो, कहीं ऐसा ना हो कि हवा के आवागमन के चक्कर में सीधी लू पशु को आके लग रही है, वो उसको ज्यादा नुकसान करेगी।
0: खिड़की मतलब उनकी खिड़की से ऊपर,
1: ऊंचाई से ऊपर होगी तो दोनों तरफ खिड़की है, हवा आ जा रही है पर लू सीधी शरीर पे नहीं लग रही
2: जी। और अगर खाने पीने की बात करें तो इस समय पर उनके खाने पीने का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए?
1: खाने पीने के लिए असल में गर्मी में हरे चारे की भी कमी हो जाती है
2: जी,
1: तो कम से कम भी 25 से 30 किलो हरा चारा, वो
0: हाँ जी,
1: हरी हरी मक्का है, हरी ज्वार है, बरसीम, तो इन दोनों खत्म हो जाती है, वो प्रति पशु देनी जरूरी है
0: जी। अच्छा कोमल डॉक्टर साहब से हम जानकारी तो लेते ही रहेंगे, हमारे जो श्रोता हैं
2: जी,
0: हम बात कर रहे हैं उनके दिमाग में भी कुछ सवाल आ रहे होंगे और उसके लिए जरूरी है कि उनको फोन नंबर पता हो, तो फोन नंबर एक बार रिपीट हम कर देते हैं
2: जी। बिल्कुल, हमारे जितने भी श्रोता हैं वो अगर पशुपालन से संबंधित कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं कि गर्मियों में वो अपने पशुओं की किस तरीके से देखभाल करें जिससे कि उनके पशु जो है अधिक उत्पादन दें, उनकी सेहत बनी रहे, तो आप हमसे फोन करके सीधे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर केएल खुराना हमारे साथ यहां पर बैठे हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए, और हमारी टेलीफोन लाइन जो आप सभी के लिए आज खुल चुकी है वो है 2342-1081, और दिल्ली के बाहर के श्रोता जो भी हमें कॉल करें वो दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।
0: तो अब आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, इस समय जैसे कि हम सभी को भी बार बार प्यास लगती है, पानी की जरूरत होती है, पानी कितनी देना जरूरी है, किस प्रकार का पानी दे? कई बार बहुत आदमी ऐसा भी समझता है कि ठंडा पानी दे दें।
1: ठंडा पानी ऐसा जरूरी नहीं है, इस समय जैसे हम गाय भैंस की बात करते हैं तो 70 से 80 लीटर रोजाना पानी पी सकती है वो, और वो दिन में 3 से 4 बार में। तो आजकल किसान भाई क्या करते हैं, पानी की खेल साथ ही बना देते हैं, तो उसमें क्या है कि घुरले के साथ पानी की खेल है, तो कोशिश ये करें कि उसमें पूरा दिन पानी उपलब्ध रहे ताकि पशु अपनी इच्छा अनुसार पानी पी सके। अगर खेल
0: छाया में हो,
1: हाँ वो भी छाया में हो, और अगर खेल नहीं बना रखी तो फिर कम से कम दिन में 4 बार पानी पशु को बाल्टी से या उससे ताजा पानी पिलाना
2: चाहिए, समय पर देते रहना चाहिए। लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि जो पशुपालक है वो ये सोचते हैं कि उन्होंने चारा दे दिया पशुओं को और वही उनके लिए काफी रहेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ मिनरल्स भी मिलाने बहुत जरूरी होते हैं जो कि हमारे पशुओं के लिए ज्यादा मतलब बेहतर रहते हैं इस मौसम में, तो वो कौन से मिनरल्स हैं, वो कैसे दिए जाने चाहिए?
1: ऐसा है कि आम पशु की, गाय भैंस की हम बात करते हैं, तो उसकी मेंटेनेंस राशन जो

0: गाय भैंस दूध नहीं देती, तो उसके शरीर के रख रखाव के लिए आपको कम से कम 1.5 से 2.5 किलो तक उसके वजन के हिसाब से दाना देना होता है
1: जी।
0: और ये जो दाना बनता है आजकल जैसे बना बनाया दाना लेते हैं या कुछ किसान भाई खुद भी
2: किलो के हिसाब से,
0: हाँ जी खुद भी जैसे बनाते हैं, तो उसमें मिनरल मिक्सचर आपका उसमें डला हुआ होता है, मिनरल मिक्सचर उसके अंदर डला होता है, हाँ नमक डला होता है, थोड़ा गुड़ डला होता है, जैसे 30 से 35% तक उसमें आपका पिसी हुई मक्का हो गई या जौ हो गए, और 30% के करीब उसमें खली हो गई, और 30% के करीब चोकर हो गई, बचा हुआ 5% जो है उसमें 2% मिनरल मिक्सचर होता है, 1% उसमें नमक होता है, और 2% उसमें गुड़ होता है। तो अगर आप बना बनाया चारा लेते हैं घर बनाते हैं तो मिनरल मिक्सचर की रिक्वायर आपकी जरूरत उससे पूरी हो जाती है। तो ये तो 1.5 से 2 किलो तो आपका पशु के आम शरीर के रख रखाव के लिए हो गया। उसके बाद 1.5 किलो दूध आपको 1 किलो दाना देना होता है।
2: तो हमारे जो किसान भाई हैं वे खुद भी इस हिसाब से उनका राशन तैयार कर सकते
0: जी कर सकते हैं।
2: एक श्रोता लाइन पे आ गए हैं, उन्हें सुन लेते हैं। कोमल
1: हेलो।
3: हेलो
1: जी, अपना नाम बताएं, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में।
3: नमस्कार मैम
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं, कहाँ से
3: आपको भी मेरा नमस्कार। मेरा सवाल ये है मैम, हमारा पशु है ये क्या नाम है, 4 महीने का ब्याज हुआ है, एकदम से दूध घटती जा रही
0: जी। गाय है भैंस है?
3: भैंस है मैम भैया। सर
0: भैंस है, देखो एक तो
3: जो है नहीं नहीं हेलो
0: नहीं हो गई
3: नहीं नहीं हो पा रही सर।
0: देखिए एक तो मैंने जैसे अभी मैं पहले बता रहा था कि गर्मी की वजह से दूध घटता है, तो आप उसका पूरा गर्मी से बचाव करें, ठीक है। और जो नई नई हो पा रही तो एक बार नजदीक के पशु चिकित्सालय में जाके ना उसकी बच्चेदानी दिखा लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बच्चेदानी में संक्रमण हो, उस वजह से भी दूध घटता है शरीर में अगर संक्रमण है तो, क्योंकि वो नई नहीं हो पा रही तो डॉक्टर साहब उसकी बच्चेदानी देख लेंगे, तो उसके बाद उसका उचित इलाज करके और वो ठीक हो जाएगी, फिर बच्चेदानी का संक्रमण ठीक होगा तो दूध भी बढ़ जाएगा उसका।
2: यानी कुछ बीमारियां हैं उनकी वजह से भी दूध प्रभावित होता है
0: जी।
2: अब जैसे कि आपने एक कारण तो ये बताया, क्या और भी इस तरह की बीमारियां हैं जिससे कि दूध भी प्रभावित होता है और इस समय पशु को परेशानी भी होती है?
0: निरंकार जी, बीमारी कोई भी हो तो वो उसका पहला असर तो पशु के दूध पे ही पड़ता है।
2: एक और श्रोता आ गए हैं डॉक्टर साहब
0: जी,
1: उन्हें सुन लेते हैं। श्रोता हैं दोबारा से हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं
0: जी।
1: हेलो
3: हेलो
1: जी जी सोनू जी, अपना सवाल कीजिए।
3: मेरे डॉक्टर साहब से सवाल है, पिछले भी आदमी जो 18-20 किलो दूध दे रही थी
0: जी,
3: जब भी 10 किलो पे 12 किलो दूध पे जाते जब भी बीमार होती है।
0: बीमार क्या बीमारी होती है?

0: करवाना पड़ेगा कि ऐसी क्या बीमारी है उसको, जो बार बार बुखार होना और बीमार होना जो है ना, उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जो वहां अस्पताल में ही हो पाते हैं, वो डॉक्टर साहब करेंगे तो उसके बाद ही उसके कुछ निर्णय ले पाएंगे
1: जी। और वैसे भी हम अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर मौजूद जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको एक सलाह दे सकते हैं, और सही जानकारी के लिए आपको अपने पशुओं को जो है अपने पास के जो पशु चिकित्सालय वहां पर ले जाकर के उनका पूरा टेस्ट कराना जरूरी है।
2: हाँ, तो डॉक्टर साहब जो हम थोड़ा बीमारी की चर्चा कर रहे थे, अब ब्याज की भी बात है, कई किसान भाइयों को समस्या आती है कि दूध नया नहीं होने में बड़ी समस्या आती है, या तो नए कटड़े कटड़ी हैं, बछड़े बछड़ी हैं, जब वो होते हैं बछिया है या कटिया है, समस्या आती है कि देर से वो हीट में आती हैं, क्या इस पर भी कुछ इस समय ध्यान देने की जरूरत है, गर्मी में कुछ खास ध्यान रखें?
0: भैंस जो है वो उसको हम सीजनल ब्रीडर कहते हैं
2: जी। सर्दियों में जैसे ज्यादा,
0: वो सर्दियों में ज्यादा आती है, गर्मियों में भैंस गर्मी में आती नहीं है। तो अगर किसी की भैंस जो है अप्रैल के चौथे महीने में या तीसरे महीने के आखिर में ब्याई है तो ऊपर आगे गर्मी आ गई, तो गर्मी में भैंस 100 में से ज्यादा 5 से 10 भैंसे गर्मी में आती है। तो ये उनका मतलब आप ये कह सकते हो कि मौसमी उनका जो है वो बांझपन है। जैसे ही मौसम ठीक होएगा जुलाई के बाद बारिश शुरू होएगी, वो भैंस गर्मी में आ जाती है।
2: तो जो भाई अभी लाइन पे थे, हो सकता है अभी 2-3 महीने पहले भी आई है, गर्मी की वजह से ही प्रभाव पड़ रहा हो।
0: लेकिन क्योंकि वो कह रहे थे दूध कम हो रहा है, तो दूध कम है तो इसका मतलब उसके शरीर में कुछ ना कुछ संक्रमण है, कोई बीमारी है उसके शरीर में
1: जी। एक और श्रोता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पूछ लेते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में, आप अपना परिचय दें और कहाँ से बोल रहे हैं ये बताएं।
3: मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ। निरंकर भाई को भी नमस्कार।
2: हाँ, पुराने श्रोता हैं हमारे
1: जी।
3: और डॉक्टर साहब जी, बात यह है कि हमारी जो गाय है ना उसको कीचड़ की बीमारी है
0: जी।
3: तो कई बार हमने डॉक्टर से इसको दवाई भी करवाया लेकिन फिर वही बात हुई थी, फिर दोबारा देते हैं, इसका क्या कारण हो
0: सकता है? एक मादा चीचड़ जिसको हम यहाँ लोकल भाषा में कलीले कहते हैं, जो मोटे चीचड़ होते हैं ना शरीर पे, जब वो शरीर से गिरती है तो वो 4 से 12 हजार तक बच्चे देती है, 4 से 12 हजार तक अंडे देती है, और उसमें से जब बच्चे निकलते हैं तो आपकी दीवारों में पशु की खुरली के नीचे खूंटे के पास जो छेद है वो उसमें छिपे हुए होते हैं। अब आपने शरीर के ऊपर के चीचड़ तो मार दिए, तो वो जो 12 हजार नीचे गिरे हुए हैं वो आके दोबारा उस पे लग के और वो अपना खून पीना शुरू कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि पशुशाला जहां आप गाय को रखते हैं ना उसकी साफ सफाई रखें, और 4 फुट तक ये देखें कि उसके प्लस्तर में कोई छेद तो नहीं है, फर्श में कोई गड्ढे तो नहीं है, खुरली के खास करके खुरली के जहां खूंटा होता है ना वहां पे जरूर गड्ढा होता है, तो उसके अंदर आप देखेंगे तो आपको वो कलीले मिलेंगे उसमें, तो जब आप वो खत्म करेंगे वहां स्प्रे करवाएंगे तो उसके बाद आपकी गाय को चीचड़ लगने बंद हो जाएंगे
1: जी।
2: ये बड़ी समस्या है डॉक्टर साहब चीचड़ वाली, तो क्या कुछ फिजिकल तरीके से भी वो इसका निदान करा सकते हैं?
0: निरंकार जी, फिजिकल तरीके से आप सिर्फ अपने शरीर के चीचड़ जैसे उतार
2: देते हैं,
0: लेकिन जो उसके अंदर छुपे हुए पशुशाला में वो फिर चिपक जाएंगे। तो जब तक उनकी सप्लाई बंद नहीं होगी, बाहर से आने बंद नहीं होंगे, तब तक वो आपकी वो समस्या चलती रहेगी।
1: तो इसके लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब?
0: इसके लिए ये करना चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि कोशिश करें दीवारों में 4 फुट तक कोई छेद ना हो जहां चीचड़ अंदर घुस सके, और एक बार अच्छे से स्प्रे करवा लें कीटनाशक दवाई का, और कीटनाशक का स्प्रे करवाने के बाद अगर वहां छेद नहीं होंगे और चीचड़ का कोई वहां बच्चे देने का अगर रास्ता नहीं होगा तो उसके बाद समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी
1: जी।
2: अच्छा, जो पशु हैं हमारे जितने, उनको छोटे बड़े सभी बच्चों को होता है, पेट में कीड़े भी हो जाते हैं कई बार छोटे बच्चों में खास तौर पे?
0: ऐसा है निरंकार जी, भैंस का बच्चा जब पैदा होता है
2: जी
0: तो वो पेट में कीड़े लेके पैदा हो सकता है। अगर उसकी माँ के पेट में कीड़े हैं तो माँ को कीड़े असर नहीं करते, हमें उसका नहीं दिखता कि उसको क्लिनिकल तौर पर असर कर रहे हैं, लेकिन बच्चा पेट में लेके पैदा होता है और वो 7 दिन के अंदर वो उसके शरीर में पूरा कीड़ा बन जाता है, जिसको जून बोलते हैं लोकल
2: भाषा में। हाँ जी,
0: तो इसलिए डिवॉर्मिंग जो है जो वो करना बहुत जरूरी है, भैंस के बच्चे का, खास करके बच्चा होते ही 4th दिन उसकी डिवॉर्मिंग करें, और उसके बाद 21 दिन के बाद उसको दोबारा से डिवॉर्मिंग करें। फार्म पे तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि मंथली छोटे बच्चों की डिवॉर्मिंग 1 साल की उम्र तक होनी चाहिए ताकि परजीवी उसमें ना पनप सके।
2: तो आप निदेशक रहे हैं और वेटेरियन भी हैं, तो आपको तो

0: प्रैक्टिस है इसकी, पूरे मतलब प्रैक्टिकल किस तरीके से डिवॉर्मिंग कराएं, तो उसके लिए किसान भाइयों को क्या करना पड़ेगा?
1: किसान भाई नजदीक के अस्पताल में जाएं, अस्पताल में डिवॉर्मर हर अस्पताल में मिल जाता है, बाकी दवाई कई बार भाई उपलब्धता का कारण हो भी ना हो, डिवॉर्मर हर अस्पताल में मिलता है और बड़े सिंपल सी दवाई होती है। अब दवाई का मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, बड़ी सिंपल सी दवाई होती है, हर अस्पताल में मिलती है, वो जाएंगे तो वो डिवॉर्मिंग हो जाती है उसकी।
2: जी डॉक्टर साहब, गर्मी का मौसम है तो ऐसे में पानी जो है सभी को बहुत भाता है, चाहे वो पीने के लिए हो, नहाने के लिए हो, लेकिन कई पशुपालक क्या करते हैं कि पशुओं को बहुत ज्यादा समय तक, कि उन्हें गर्मी से बचाए रखने के लिए, पानी में बहुत लंबे समय तक छोड़ देते हैं, तो कब और कितना उनको कैसे नहलाना चाहिए, जिससे कि कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की ठीक नहीं होती है।
1: भैंस जो है हमारे जो हिंदुस्तान में जो भैंस है, इसका बायोलॉजिकल नाम डोमेस्टिक वाटर बफलो है। इसको आप जो है गांव में जोड़ है या हौद है उसमें कम से कम 40 मिनट इसको जरूर बिठाना चाहिए, पर यह नहीं है कि कई घंटे तक उसमें बिठाए रखें। 40 मिनट की उसका रिकमेंडेड, 40 मिनट ज्यादा से ज्यादा एक घंटा उसको उस जोड़ में बिठाना चाहिए भैंस को। वो भैंस की सेहत के लिए भी ठीक है, गर्मी से भी बचाता है और उसको वैसे भी उसके शरीर के लिए वो ठीक है।
0: नहीं ज्यादा, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा समय रखें,
1: बहुत ज्यादा तो देखो अब हम सारा दिन हम खुद ही बाथरूम में घुसे रहेंगे तो शाम तक निमोनिया करके मानेंगे।
0: बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है इन चीजों का ध्यान रखने का। अच्छा, इस मौसम में अभी जो आगे आने वाला मौसम है उसके लिए भी क्या अभी से टीके लगवा सकते हैं?
1: अब इस समय जो है आमतौर पे पूरे देश में मई के महीने में, मई के शुरू में गलघोटू और

0: लगते हैं और आपके पशुओं को बीमार करते हैं। तो ये टीकाकरण जरूर होना चाहिए। जो फुट एंड माउथ डिसीज का है वो साल में दो बार टीकाकरण हो रहा है भारत सरकार की स्कीम के तहत, तो वो टीका जब भी हो, किसान भाई कहीं कहते ना टीका नहीं लगवाऊंगा, भैंस दूध कम कर जाएगी, तो वो निकाल दें मिथ्या मन से कि दूध कम हो जाएगी। वो दूध जो कम होगा वो एक दो दिन के लिए होगा, लेकिन अगर उसको बीमारी हो गई तो हो सकता है हम पशु से भी हाथ धोना पड़े हमें
1: जी।
0: तो किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, टीके जरूर लगवाने चाहिए, रोग रोधक टीके जो लगाते हैं वो जरूर लगवाने चाहिए।
2: अच्छा, इन दिनों में हरा चारा जैसे गर्मी में कम हो जाता है तो उसके सप्लीमेंट के लिए फिर क्या दे सकते हैं?
0: हरा चारा जैसे मैंने शुरू में बताया, अभी अब वो जब बरसीम होती है, जई होती है, तब तो आप पूरा दे देते हैं जितना मर्जी खाए पशु। इस समय कम से कम 20-25 किलो देना चाहिए, और अगर कम हरा चारा है तो आपको दाने की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी
1: जी। डॉक्टर साहब, कई बार हम लोगों में भी गर्मियों में जो है पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाती
0: जी।
1: है, तो हम तो अपने लक्षण पहचान लेते हैं, बता देते हैं, लेकिन पशुओं में ये लक्षण किस तरीके से पहचाने और उस कमी को किस तरीके से दूर करें?
0: पशुओं में कोमल जी, जैसे मैंने अभी बताया था, स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हैं
1: जी,
0: जैसे वो लंबी सांस ले रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है
1: जी,
0: ठीक है, और अब वो किसान भाई अगर बिल्कुल उसके पास उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके पेशाब करने की मात्रा कम हो जाएगी डिहाइड्रेशन में
1: जी।
0: तो उसको मतलब ये सारे लक्षण जब आपको दिखाई देते हैं तो शरीर का तापमान बढ़ा हुआ है तो तुरंत उसको एक छाया में ले जाओ, उसको पानी पिलाओ
1: जी।
0: और इस समय जो आप इलेक्ट्रोलाइट पाउडर आता है, वेटनरी इलेक्ट्रोलाइट पाउडर के नाम से आता है, वो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर उसके पानी में जरूर डालें, और थोड़ा सा गुड़ पानी में अगर आप साथ में डाल सकते हैं तो ये आपका डिहाइड्रेशन से शरीर का पानी खत्म होने ना खत्म होने में बहुत मदद करे
1: जी। बिल्कुल, जैसे पानी की कमी दूर होने के लिए हम अपने लिए बहुत सारे शरबत या इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो पशुओं के लिए भी बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रोलाइट पाउडर जो होता है वो वेटनरी, वो उनके लिए जरूर इस्तेमाल
0: किया जाए जी।
1: कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम में हम बातचीत और भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,
6: प्रधानमंत्री।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में, जिसमें आज हम बातचीत कर रहे हैं कि गर्मियों में पशुओं की उचित देखभाल आप किस तरीके से कर सकते हैं। और आज इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के एल खुराना, आप पूर्व निदेशक हैं पशुपालन विभाग नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम
4: में। धन्यवाद।
3: और डॉक्टर साहब, कई बार हम ऐसा होता है कि जब कोई बीमार होता है घर में तो हम उसको घर के बाकी सदस्यों से अलग कर देते हैं ताकि बीमारी का जो खतरा है वो बीमारी जो है वो फैले नहीं, संक्रमण फैले नहीं। तो पशुओं के मामले में इस तरीके से कैसे आप एहतियात बरत सकते हैं, वो क्या बताना चाहेंगे आप?
4: देखिए, पशुओं में जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं मुंह पका, खुरका पका और गलघोटू की बात कर रहा था, तो ये दोनों संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु को फैलते हैं
3: जी।
4: क्योंकि ये जैसे गलघोटू है, सांस की बीमारी है, तो पशु के सांस में भी बैक्टीरिया आता है और वो अगर उसके साथ स्वस्थ पशु है तो

0: वो उस बीमारी को पकड़ सकता है।
1: यानी ये इन्फेक्शियस डिजीज है दोनों।
0: जी इन्फेक्शियस डिजीज है, मुंह पका खुर पका भी। तो जहां तक संभव हो आपको बीमार पशु को दूसरे स्वस्थ पशुओं से अलग करना पड़ेगा।
1: कई बार किसान भाई गलती कर देते हैं कि बचा हुआ चारा दूसरे पशु को दे देते हैं,
0: वो फिर पूरा उसको अलग करना पड़ेगा, चारा भी उसका अलग से रखना पड़ेगा। बीमार पशु का अगर बचा हुआ चारा है तो दूसरे पशु को ना खिला के उसको वैसे ही बाहर कुरड़ी पे डाल के आए, मतलब उसको डिस्पोज ऑफ करें प्रॉपर, पशुओं को ना खिलाएं उसको।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को ये तो समझ आ ही गया होगा कि गर्मी के मौसम में पशुओं को बचाने से दूध उत्पादन भी अच्छा रहेगा
0: जी,
1: और उसकी क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण स्तर पर कम खर्चे पर किस प्रकार से प्रबंधन हमारे किसान भाई कर सकते हैं। कोई टेलीफोन भी आ गया है कोमल
2: जी। हेलो।
3: हेलो
2: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्राम में।
3: जी
2: अपना सवाल करें, अपना नाम बताएं।
3: मेरा नाम रामफल, बागपत जिला से।
2: जी अपना सवाल ये है डॉक्टर
3: साहब, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से, ये हमारी भैंस जो है ज्यादा गर्मी मानती है।
0: क्या करती है?
3: गर्मी ज्यादा मानती है।
0: गर्मी ज्यादा मानती है, ठीक है।
3: हाँ जी, क्या देना चाहिए?
0: गर्मी के जो अभी मैंने, अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो मैंने जो बचाव बताए हैं वो सारे आप सावधानियां बरतें। गर्मी ज्यादा मानती है, उसको लू में बाहर ना निकालें, या तो पशु की मतलब उसके पेड़ की छाया के नीचे निकालें या फिर उसको अंदर रखें, और हवा का आवागमन अच्छे से होना चाहिए, और दिन में 4 बार पानी पिलाएं उसको, और अगर दूध देती है तो दूध के हिसाब से उसको दाना दें, और आप जहां तक संभव हो ज्यादा से ज्यादा हरा चारा दें उसको।
1: बिल्कुल, यानी जो पशु हैं उनको इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो उनका गर्मी से बचाव किया जा सकता है। खास जो छोटे बच्चे होते हैं, कटड़े कटड़ी हैं, बछड़े बछड़ी हैं, उनके लिए कुछ खास एहतियात की जरूरत है क्या?
0: उनके लिए निरंकार जी, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी डिवॉर्मिंग करनी बहुत जरूरी है।
1: कई बार उनके बाल उड़ जाते हैं,
0: हाँ,
1: और खुजली हो जाती है शरीर पे पूरे,
0: वो डिवॉर्मिंग करनी बहुत जरूरी है। और खुजली वगैरह का भी जो है, उसमें खुजली आमतौर पर सर्दियों की समस्या ज्यादा है। नीचे जब हम उनके पुआल डालते हैं ना, और कई किसान भाई वो पुआल बदलते नहीं, तो वो खुजली के कीड़ों के लिए सबसे अच्छी जगह है वो।
1: और जैसे कीड़े की बात आती है तो कमजोर भी हो जाते हैं वो।
0: हाँ बिल्कुल, आपको जो खुराक पशु ले रहे हैं वो तो कीड़े खा रहे हैं, तो पशु के शरीर को लगता नहीं।
1: श्रोता एक और आ गए हैं लाइन पे।
2: हेलो। हेलो
3: हेलो
2: जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम बताएं और अपना सवाल करें।
3: जी मैं प्रदीप किशन कुसमरा से बोल रहे हैं जी, और मेरी एक भैंस है गांव में
2: जी,
3: जो 3 लोहे की चादर होती है उसके नीचे बंधती है। कोई दिक्कत तो नहीं है जैसे कि गर्भवती है 5 महीने की?
0: देखिए लोहे की चादर सबसे ज्यादा गर्म होती है, तो आप उसके ऊपर फूस की छान लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फूस की छान लगाएं या बोरी गीली करके लगाएं गर्मी में, ताकि अंदर का तापमान जहां बंधी हुई है वहां का तापमान ठीक रहे। तो क्योंकि लोहे की चादर सबसे ज्यादा गर्म होती है, उसमें उसको फिर गर्मी लगने का खतरा बना रहेगा।
2: और वैसे भी अगर सिर्फ टिन शेड के नीचे है तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी वहां पे, और अगर आपकी भैंस जो है वो गर्भवती है तो ऐसे में आपको उसका ज्यादा ख्याल रखना है, और उस एरिया को थोड़ा सा कोशिश करनी है कि थोड़ा सा
0: ठंडा रखें, ठंडा रखें किसी तरीके से।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे किसान भाई पशुओं को चिचड़ी की बात जैसे हमारे आई थी, और वैसे भी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बताते हैं कि खरेरा कर देते हैं शरीर के ऊपर
0: जी, जी,
1: तो इसका कितना लाभ होता है और गर्मी के मौसम में कितना इसको करना जायज ठहराएंगे?
0: देखिए निरंकार जी, खरेरा एक तरह की मालिश है, तो मालिश तो जानवर अच्छी लगती है, पशु को आदमी को भी अच्छी लगती है।
1: उसका
0: तो फायदा ही होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है उससे, तो वो करना अच्छी बात है। और छोटा मोटा उसके ऊपर जो मतलब परजीवी जो है, जो वैसे घूम रहे उसके ऊपर जो स्किन में नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो निकल जाते हैं उससे, तो वो तो हमेशा ही मददगार रहता है अगर आप कर पाते हैं उसको तो।
1: एक श्रोता शायद फिर लाइन पे हैं। अच्छा
2: जी।
1: अच्छा इस मौसम में आप कुछ सलाह देना चाहेंगे कि खान पान में क्या कुछ खास चीज दें गर्मी के मौसम में?
0: देखिए खान पान के लिए जैसे मैंने बताया, हरा चारा जहां तक संभव हो बहुत जरूरी है
2: जी।
0: तो दुधारू पशु है उसको कम से कम भी 25 से 35 किलो तक हरा चारा देना जरूरी है, वो उसकी दूध की मात्रा को भी ठीक रखेगा और पशु के स्वास्थ्य को भी ठीक रखेगा।
1: नहीं, कई बार जैसे कहते हैं कि सर्दी के मौसम

0: और इतनी सरल भाषा में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए डॉक्टर केएल खुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।
2: और किसान भाइयों से बस यही कहना चाहेंगे कि गर्मी हो या बरसात, अगर पशुओं की आप समय पर देखभाल करेंगे, साफ सफाई रखेंगे, उन्हें संतुलित आहार देंगे और टीकाकरण का आप ध्यान रखेंगे तो पशुपालन आपका आसान हो जाएगा, आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और वो ज्यादा अधिक आपको उत्पादन भी देंगे। क्योंकि याद रखिए, स्वस्थ पशु ही खुशहाल किसान और मजबूत गांव की पहचान होता है। और इसी संदेश के साथ जो है हमारा कार्यक्रम आज का यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन कार्यक्रम से इजाजत लेने से पहले आप सभी से हम एक बार फिर से आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे कि यदि आप कार्यक्रम संबंधी कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, अपने सुझाव हमें देना चाहते हैं या आप किसी अन्य विषय पर कार्यक्रम सुनना चाहते हैं, जानकारी पाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी kkbongold@gmail.com पर। हम आप सभी के मेल्स का इंतजार करेंगे क्योंकि आपके संदेश और जो सुझाव होते हैं ना, वो हमारे कार्यक्रम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करते हैं।
0: और हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम सभी को बहुत पसंद आया होगा। और अब घड़ी की सुइयों से मिल गया इशारा कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है हमारा, तो अब सभी से हम इजाजत चाहते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।
3: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नीदरलैंड्स दोस्ती का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम में हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है।
1: नीदरलैंड्स के समाज और यहाँ की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि भारत में एआई समिट का सफल आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिका में से भी मिलने का कार्यक्रम है। यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर, चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मंगलवार को इटली पहुंचेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
2: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
0: सेना प्रमुख

0: यह टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेस्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य के कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार भारत को नशा मुक्त देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। यह चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: बैडमिंटन में सात्विक राइजर रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में इस जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोह रुजेफेई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their Majesties King William Alexander and Queen Maxima this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community event in The Hague, Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora.
3: Netherlands ke samaj aur yahan ke economy mein jo contribute kar rahe hain us par हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
2: Earlier, when the Prime Minister arrived in the Netherlands late last night, he was received by the Dutch Foreign Minister. He was accorded a grand welcome through cultural and musical performances by the diaspora and Dutch troops. After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. The focus is squarely on the robust economic engine driving this partnership. With bilateral trade reaching record highs, Swedish industrial giants are not just observing the Indian market, they are thriving in it. Indian Army Chief General Upinder Dwivedi said today that if Pakistan continues to harbour terrorists and operate against India, then they have to decide if they want to be part of geography or history or not. General Dwivedi's remarks at the event, Sena Samvad in New Delhi, came days after the country and the Indian military marked the first anniversary of Operation Sindoor.
4: I think if you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbour terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not.
2: Indian agencies have achieved the first ever seizure of Captagon drug worth 182 crore rupees through Operation Rage Pill. In a social media post, Home Minister Amit Shah shared this information and said that the government is resolved for a drug-free India. He said that the busting of the drug consignment destined for West Asia and the arrest of a foreign national stand out as shining examples of our commitment to zero tolerance against drugs.

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: महाराष्ट्र के परभणी जिले में मलसोना गांव के प्रगतिशील किसान श्रीरंग देवबा लाड यानी दादा लाड को वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। दादा लाड जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दादा लाड, आपने खेती के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण के माध्यम से जो मिसाल कायम की है वो न केवल किसानों के लिए प्रेरणादायक है बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय भी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने की सूचना मिली तो उस क्षण आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी और इस प्रतिष्ठित उपलब्धि को आप अपने जीवन, अपने गांव और खेती के सफर के संदर्भ में किस तरह से देखते हैं?
2: ये तो पहली बार मैंने लातूर में था और दूरदर्शन के सामने बैठा था। जब पहले मैं न्यूज सुनी है तो मेरे पर मेरा भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे बारे में कह रहे कि और कोई दादा लाड है। तो तब तक कहीं सब अधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का जब फोन आने लगा तो लगा कि वो मेरे बारे में ही है। तो ये मिलने के बाद एक खुशी तो हो गई, इस बारे में खुशी ये बात की है, परंतु जब तक किसी बात को राज मान्यता नहीं मिलती तब तक कोई अंगीकार उसका नहीं करता। तो अभी तक तो कई सालों से कम 25 साल हो गए मैं टेक्निक किसानों के सामने रख रहा हूँ, परंतु जब ऐसे सरकार के माध्यम से वगैरह अखबारों से प्रसार माध्यमों से ये जब तंत्रज्ञान किसानों के पास जाएगा तो उसको लगेगा अरे इसमें कुछ तो विदम है और इसके कारण ये तंत्र को किसान स्वीकारेगा और ये तंत्र स्वीकारने का जो किसानों का उपज बढ़ जाएंगे उससे मुझे बहुत खुशी होने वाली है। केवल वो ये कारण किसान अभी अपनाता है इसका आनंद मुझे हुआ।
1: दादा लाड, कपास तकनीक विकसित करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और आप बताएंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
2: एक तो मैं किसान पुत्र हूँ और वो भी ऐसे किसान पुत्रों की जिनके घर का कपास पर पूरा अर्थ खाता निर्भर है, यानी कपास का पेड़ उनके लिए यानी तुलसी के जैसी श्रद्धा वाला पेड़ है। तो मैं हमेशा विचार करता था कि इसका उत्पन्न कैसा बढ़े और मैं उसके पास बैठता था और बैठने के बाद एक दिन ऐसा बैठा और उनके ढाली तरफ देखने लगा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि नीचे जो मोनोपोडियम जिनको कहती है वो बड़ी मोटी भी है और उसकी ऊंचाई मूल पौधे के बराबर है। तो और दूसरी जो सिम्पोडिया जिनको कहते हैं वो ऊपर से जमीन से समांतर चलती है, वो छोटी वाली भी होती है और दोनों में फर्क ऐसा, ये बड़ी और छोटी है। बड़ी में तो डेंडों की संख्या बहुत कम लगती है, संख्या भी कम लगती है, उसका वेट भी बहुत कम होता है। और जो सिम्पोडिया रहती है वो बड़ी छोटी वाली होती है, उसको डेंडू की संख्या ज्यादा लगती है और उसका डेंडू का वेट भी अच्छा होता है। तो मैंने ऐसा किया कि यही कैसा आना जाता खेती डेंडू कम देती है और डेंडू का वेट भी कम है और वो सिम्पोडिया का जो डेंडू है वो ज्यादा देती है उसका वेट भी ज्यादा है। और फिर मुझे लगा कि ये तो कुछ तो भी एक अड़सर है मोनोपोडिया, तो इसको निकालने का मुझे ऐसा लगा कि सब अनाज सिम्पोडिया को दे दिया तो इसमें कपास का वेट बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे मन में लगा चिंतन के बाद। और फिर वो सही या झूठ है ये देखने के लिए मैंने मोनोपोडिया को 5 पौधे के मोनोपोडिया को कट कर दिया और जैसा कट दिया जैसा मैंने पकड़ा वैसा ही होने लगा। सिम्पोडिया की लंबी बढ़ गई, सिम्पोडिया के डेंडू की संख्या बढ़ गई, उसके वजन जो डेंडू 5-6 ग्राम का मिलता था अभी वो 8 ग्राम का मिलने लगा। एक फल फांदी पर 3-4 डेंडू लगते थे वो 7-8 आने लगे और मुझे बहुत खुशी लगी कि मेरा चिंतन सही दिशा से चल रहा है। परंतु मेरे मन में तो खात्री हो गई ये सही दिशा है और ये तंत्र किसानों का भला करने वाला है, परंतु उस किसान स्वीकार करेगा का नहीं करेगा मेरे मन में आशंका होती। और किसानों को स्वीकार करने के लिए मुझे कई मात्रा में संघर्ष यानी झगड़ा बिगड़ा कुछ नहीं, समझाने का संघर्ष करना पड़ा।
1: कपास अनुसंधान और नए प्रयोगों के दौरान आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और फिर आपने उन्हें पार कैसे किया?
2: मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन कृषि शास्त्रज्ञ भी वो बोलते थे कि भाई दादा लाड क्या है उनका चिंतन तो हम नहीं बोल सकते लेकिन हमारे अभ्यास से कि एक पौधे के समझो 3 मोनोपोडिया गई, एक पर 5 डेंडू बोले तो 15 डेंडू कम हो गए, 5 ग्राम दो ले तो यानी 70-75 ग्राम का कॉटन कम हो रहा है, और दादाला टेकनी से गए तो 40% कपास का उत्पन्न घट जाएगा। और मैं तो कोई शास्त्रज्ञ, मैं किसान हूँ, और फिर सुनने वाले किसान तो शास्त्रज्ञ के मानेंगे क्या मेरी मानेंगी, ऐसा एक बड़ा इसमें अड़सर था। और दूसरी बात तो फिर घर के लोगों को घर घर में तो एक बड़ी ढाली काटना, छोटे पार्ट भी कट गए फसल के तो किसान बहुत नाराज होता, वो तीन बड़ी बड़ी ढालियां काटना, यानी पति को मान्य होगा तो पत्नी आड़ आती थी, बेटे को मान्य होगा तो पिता आड़ आता था, ऐसा घर में का भी संघर्ष आता था। फिर मैंने उसमें एक किया कि संघर्ष मिटाने की कोशिश की है।
1: दादालाड, आपकी तकनीक से किसानों को उत्पादन लागत या फिर मुनाफे के स्तर पर क्या क्या लाभ हुआ है उसके बारे में बताएं।
2: मेरे तंत्र से एक हो गया कि पहले किसान 6 क्विंटल कपास लेता था, 6-7 पकड़ के चलो 8 खाद ज्यादा डाले तो, अभी 7,000 रुपए क्विंटल भाव पकड़ेंगे तो 8 क्विंटल था यानी 56,000 एक एकड़ में किसान को मिलता था। अभी मेरे टेक्निक से वो चल रहा है तो 15 से 20 क्विंटल तक जाता है, तो अपन चलेंगे पकड़ेंगे 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक जाता है, तो 1,20,000 का 7,000 रुपए पर क्विंटल पकड़ेंगे तो 1,40,000 रुपए, कहाँ पत्ती 40,000 कहाँ 1,40,000, ये बड़ा अंतर है, ये किसानों का आर्थिक बड़ा लाभ होता है।
1: दादा, कृषि क्षेत्र में नवाचार चाहने वाले युवा किसानों और शोधकर्ताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: एक तो नई पीढ़ी खेती में आने में उतनी ये नहीं है, उनको लगन नहीं है खेती की, और ये नहीं आएंगे तो उनका एक है कि खेती नहीं पूर्ति उपज नहीं आता, लेकिन अलग अलग फसल में, केवल कपास का फसल आपके सामने आया है लेकिन ज्वार का भी मेरा टेक्निक है, गेहूं का भी, ये तंत्र से खेती करने लगे तो उपज बहुत पड़ती है। और कौन सा युवा नहीं चाहता कि पैसा नहीं मिले, ये तंत्र से खेती करने का जर युवाओं को सिखाया तंत्र और उनको भी पैसा मिलने लगा तो सब युवा भी खेती की तरफ आ जाएंगे, और खेती की मांग यही है कि पढ़े लिखे युवा खेती पे आ जाए, ये खेती की मांग है। और युवाओं को तो ये खातरी हो गई कि भाई इससे उपज अच्छी आती है और पैसा भी मिलता है, और ये तंत्र से मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ ये तंत्र से युवा खेती करने लगे तो कोई कमी पड़ेगी नहीं उनको पैसे की।
1: भविष्य में कृषि क्षेत्र में आप किन नए प्रयोगों या फिर योजना

0: योजनाओं पर काम करने का विचार कर रहे हैं।
1: अभी तो कैश क्रॉप पर मैंने काम किया, तो इसमें मुझे मैंने प्रयोग किया है, कर्नाटक में इंडी गांव है, वहां भी मैंने प्रयोग किया, जालना में भी। अभी मुझे मन में कि अनाज के पर जाएंगे, पैसा होना चाहिए, अनाज भी होना चाहिए। तो मराठवाड़े के पकड़े तो ज्वार अनाज है और गेहूं भी अनाज है, तो यानी इधर तो गेहूं तो कभी कभी त्योहार के दिन खाते है, हर दिन का हर ज्वार का है, बकरी का है, तो इसलिए यह अनाज उत्पन्न बढ़ने के लिए मुझे एक अच्छा पॉइंट मिला है उनका ज्वार का। मैंने बताया कि अभी ज्वार का उत्पन्न है किसान 6-7 क्विंटल और 400 कड़ भी लेता है।
0: दादा लाड जी, आपने अपने अनुभवों और खेती में किए गए नवाचारों के बारे में हमारे साथ बहुत सी बातें साझा की और प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपलब्धि न केवल आपके लिए बल्कि परभणी जिले या आपके गांव मलसोना और हम कह सकते हैं कि देश भर के किसानों के लिए गर्व का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

3:20, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। और जी, शनिवार की दोपहरी है और बहुत गर्म है, मैं जानती हूँ, क्योंकि अभी स्टूडियो आई हूँ तो रास्ते को महसूस करती हुई आई हूँ। कोशिश कीजिए कि आप भी अगर बाहर निकलने को हैं तो पानी की बोतल और छतरी या टोपी, कैप, कुछ भी आप अपने साथ रखिए। गर्मी बहुत है लेकिन हमारी हिम्मत भी कुछ कम नहीं है। स्वागत आप सभी का एक बार फिर मन भावन प्रोग्राम में। शनिवार का दिन है, फुर्सत है आपके पास, अपनी पसंद का गीत हम तक पहुंचाइए। हम बड़े ही प्यार से आपके किसी अपने तक उस गीत को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। fmgoldairdelhi@gmail.com ये है जी पता जिस पर आपने अपनी फरमाइश हम तक पहुंचानी है। एक बार दोबारा सुन लें, fmgoldairdelhi@gmail.com। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। और जैसे कि हर बार की तरह होता है कि पहला गीत मेरी फरमाइश का आप सबके लिए है।

भाई अपने अंदाज में हम इतना तो कह सकते हैं कि गर्मी बहुत है, और अगर आपको बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो फिलहाल तो कहीं ना जाएं आप, और अगर कहीं नहीं भी जा रहे हैं तो भी FM गोल्ड 100.1 आपके साथ है, मन भावन प्रोग्राम है जी, आपकी पसंद का प्रोग्राम है, आप अपनी पसंद अपनों तक पहुँचाते हैं, कुछ ख़ास दिन आज है तो भी हमें मैसेज कीजिए, किसी से नाराज़ हैं तो भी हमें बताइए, हम कोई गीत उनके लिए आपकी तरफ से बजा देंगे जी, यहाँ प्ले कर देंगे, और आपकी जो फीलिंग्स हैं वो उस गीत के माध्यम से उन तक पहुँच जाएंगी। बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं इंसान के, बहुत सारे मूड होते हैं, अब आप जिस भी मूड में हैं बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, fmgoldaiadelhi@gmail.com। और जी यहाँ शुरू होते हैं हमारी जो फरमाइशें आई हैं उनकी शुरुआत करते हैं, गंज टंडवारा से शमशुर कमर राही है, शाहीन फातिमा है, अदनान खान है और अनु खान है। ये तो हमने जी पहला संदेशा पढ़ दिया, और अब दूसरे संदेशे की बारी है, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से ये मास्टर अशोक वर्मा है, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा है, शेख मूसा भाईजान है, भाई राजकुमार है, और सुदामा नगर खंडवा से ये कौन है जी, लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप जी हैं। तो ये हमने नाम पढ़े, हम ऐसे ही एक एक करके नाम हम पढ़ रहे हैं, आप बस सिर्फ और सिर्फ हमारा साथ किस तरह से दे सकते हैं, आपको हमें अपने संदेशे भेजने हैं। और अशोक वर्मा जी, अशोक कुमार जी बहुत सारे संदेशे एक के बाद एक आप भेज रहे हैं, इसमें जो असल में हम तक पहुंचना चाहते हैं वो फिर नहीं पहुंचेंगे, इसीलिए थोड़ा सा आप थोड़ा ख्याल कीजिए इस बात का। यहाँ पर मैसेज आया है, नमस्कार सीमा जी, आज कल ऑफिस में हमारी नाइट शिफ्ट चल रही है, लेकिन आपके कार्यक्रम से बेशुमार मोहब्बत है, इसीलिए जाके हुए हैं। चलिए हमारा प्रोग्राम सुनने के बाद सो जाइएगा। आपने पहाड़गंज से हमें संदेशा भेजा है, मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन है, उषा मोहन है और टिल्लू नायक हैं। यहाँ पर जब मैं फुर्सत में बैठी थी थोड़ी देर पहले, तो मैंने कुछ आपके नाम यहाँ लिख के रखे हैं, यानी कुछ संदेशे मैं पढ़ ही रही थी, तो यहाँ मुरादाबाद से मुकेश, शीतल कश्यप हैं, सोनू हैं, सुरेश हैं और राजपाल पंकज हैं, मानवी और तानवी हैं, और लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह जी हैं। ये भी एक संदेशा है, मुझे लग रहा है संदेशे बहुत सारे हो गए, अब बारी है आप की पसंद के गीत की, तो किसी एक की पसंद का गीत आपकी नजर हम अब करते हैं, लीजिए सुनिए है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

एक बार फिर आप सभी का स्वागत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। और जी आपसे बात करते करते समय तो आगे निकल ही रहा है, 31, 32, 33, 34, 34, 3:34:55 हो गए हैं। फिर भी आप सभी को एक बार फिर बता दूं, एफएम गोल्ड AIRDelhi@gmail.com इस पर आपको अपना संदेशा भेजना है, क्योंकि प्रोग्राम आपका मनपसंद है जी, मन भावन। और आज शनिवार की दोपहर ही आपके साथ मैं सीमा वर्मा, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपना जो संदेशा है वो हम तक इस पते पर पहुंचाएं और आपका जो संदेशा है वो मैं आपके अपनों तक पहुंचाऊंगी। होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल जी हैं, सजन खोरवाल हैं, दीपांशु हैं, और इन्होंने एक फिल्म की फरमाइश की है, यानी फिल्म की फरमाइश नहीं गीत सुनने की फरमाइश की है। और प्ले एनी सॉन्ग ये कौन हमें लिखकर भेज रहे हैं, पटियाला से मुकेश बाता और नीलम है इनके साथ, निहारिका हैं और वंश बाता हैं। ये संदेशा आ गया जी, और अब अगला संदेशा पढ़ रही हूँ। ये हमारे पास आया है, शनिवार से ही शनिवार का इंतज़ार रहता है, ये हमारे दोस्त हैं और देखते हैं कौन है ये जो ऊपरकोट बुलंदशहर से हमारे पास आया है। मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन है, शाहान नवाज हैं, सरफराज हैं, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरा का पूरा अब्बासी परिवार है जी। मुझे भी बहुत इंतज़ार रहता है शनिवार से शनिवार का, क्योंकि शनिवार आपसे मुखातिब होती हूँ मैं। और चंडीगढ़ से हमारे पास जी ये संदेशा है बिमला अनेजा और सतीश अनेजा जी का, आप भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं और आप बड़े प्यार से हमें रोज़ सुनते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर ये दूसरा जो मैसेज है वो मैं देखूँ किसका है भला, चलिए एक थोड़ा सा इस तरफ भी देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि जब मैं फुर्सत में बैठी होती हूँ और मेरे पास थोड़ा सा समय होता है तो मैं क्या करती हूँ कि आपके मैसेजेस पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उन मैसेजेस को लिख लूँ, ताकि किसी तरह से कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई छूट ना जाए। तो यहाँ पर हरियाणा रोहतक से अंकित कांगड़ा हैं जी, प्रिंस बोट हैं, सीता राम जी हैं और साहिल कांगड़ा हैं। गांव नथाना पंजाब से जसवीर जस्सी हैं, हरजिंदर चिंदी हैं और सीता और गीता हैं इनके साथ। और आइए अब एक जो संदेशा है वो और पढ़ देती हूँ और उसके बाद फिर हम आपका जो जो गीत है, आपने जो फरमाइश की है वो भी ले लेंगे। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी हैं, कमला रानी हैं और गीतिका और भानु हैं। आपने हमें मैसेज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी मैसेजेस बहुत सारे हैं, रामगंज खांडवा मध्य प्रदेश

ये विजय हैं जी, और इनके साथ कविता हैं, विशाल हैं, सोनू मोनू और रानू हैं, देवराज जी हैं, सपना शिवी सोनाली हैं, पिंटर बाबू हैं, अनिल सोनी और दोस्त सुदामा हैं इनके साथ। तो मैसेजेस काफ़ी सारे हो गए हैं, अब काम करते हैं कि किसी एक की पसंद जो है उसे हम सुनते हैं, और जो आखिरी में मैं ये पढ़ने वाली हूँ इन्हीं की पसंद का गाना सुन लेते हैं, क्योंकि ये गीत बड़ा प्यारा इन्होंने पसंद किया है। बागपत से संजय ढींगरा जी, नमन है इनके साथ, अपार ढींगरा है। और संजय जी किसको कहना चाहते हैं कि आप तो ऐसे ना थे। हाँ, आइए सुनते हैं ये गीत, टाइटल ट्रैक है। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं साथियों जिसमें एक ही गीत होता है, लेकिन उसको मेल सिंगर भी गाता है और उसको फीमेल सिंगर भी गाती हैं। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। कलाकार फूल की मानिंद होता है, कोई किसी से

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

स्वागत आप सभी का एक बार फिर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 के साथ। जी मनभावन प्रोग्राम आपका पसंदीदा प्रोग्राम है और जो गीत आपके मन को भाते हैं वो आप हमें फरमाइश के तौर पर भेज देते हैं। आज अगर आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है आपके लिए तो हमें मैसेज कर सकते हैं आप fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। और यहाँ पर हमारे पास जो संदेश आया है ये कहाँ से आया है, अग्रसेन यादव जी हैं। हम आपसे क्यों नाराज़ होंगे यादव साहब, आपने हमारा क्या ऐसा किया जो हम नाराज़ होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आंखों की बात है, नज़रों से कभी कोई चीज़ ओझल हो जाती है और कोई बात नहीं है। और अग्रसेन यादव जी के साथ शकुंतला जी हैं और इनके साथ गरिमा है और ये दिल्ली में रहते हैं और इन्होंने हमें संदेशा भेजा है। अब दूसरा संदेशा लेना है मुझे। संदीप मक्कड़ जी हैं, ज्योति मक्कड़ हैं, मन्नत हैं, इनके साथ भरत हैं और कमल सहानी जी हैं इनके साथ और ये इन्होंने हमें जो संदेशा भेजा है वो जालंधर शहर से हमें संदेशा इन्होंने भेजा है। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, छत्तीसगढ़ पलारी से इन्होंने हमें ये संदेशा भेजा है। और इसी तरह आप हमें मैसेज करते रहिए, पता हमने आपको बताया है। पता जो है वो है fmgoldaiadelhi@gmail.com। और मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार जी हैं, इनके साथ शेख शगीर हैं और शेख वजीर हैं और एक और नाम है इनके साथ जो कि है सोहेल शेख। ये इनका मैसेज आया है और आप अपने संदेशे हम तक पहुंचा दीजिए, फिर आप ना कहिएगा कि देखिए अब टाइम जो है वो कम रह गया है, अभी हमारे पास समय है, आप अपने संदेशे हम तक पहुंचाइए। ये हमारे पास बबलेश पवार जी का संदेशा आया है और चाय का टाइम हो गया, ये कह रहे हैं। अच्छा, चाय का टाइम हो गया आपका बड़ी जल्दी चाय पीते हैं आप। गांधी चौक से इन्होंने हमें ये संदेशा भेजा है। बाड़मेर से बबलेश पवार हैं, डैनी पवार हैं, इनके साथ मनीष हैं और राम देवरा से इनके साथ दिनेश चौहान हैं और डांगरी से बाबूराम जयपाल हैं। और अगला संदेशा जो है वो मैं लेती हूँ, बस ये बीच बीच में देखते रहना है हमने कि हमारा जो समय है वो हमारे पास होना चाहिए और ज़्यादा नाम ना हो जाएं ताकि गीत कम ना पड़ जाएं। यहाँ पर हरियाणा रोहतक से हमारे पास अंकित जी का ये संदेशा आया है और एक और संदेशा आया, फिल्म की फरमाइश भी इन्होंने की है। शब्बीर हुसैन साहब हैं, शहजाद हुसैन हैं और मुजू बाब हैं और आयजा अनम हैं और ये इन्होंने फिल्म तो लिख दी है, बिल्कुल लिखी है, लेकिन अब देखना यह है कि हम आपकी फिल्म का गीत चला पाते हैं कि नहीं। सनावत से शेख मूसा जी हैं और बानो भी हैं, इन्होंने भी हमें संदेशा भेजा, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए। और अब मुझे लगता है कि अब एक गीत जो है वो आना चाहिए क्योंकि नाम मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ दिए हैं। गीत आप तक पहुँच ही रहा है और पहुँच ही गया है fmgoldaiadelhi@gmail.com पता है जी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है जी ये, और आपका मनपसंद मन भावन प्रोग्राम। आज आपके साथ मैं सीमा वर्मा, और हमारे साथ जो वक्त कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है उसके बारे में भी आपको बता दूं, 3:55:11 हो गए। अब आप समझ गए होंगे ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी जाफराबाद से ये हमारे पास श्री सुधाकर राजे जाधव जी का संदेश आया है। डॉक्टर प्रशांत हैं और इनके साथ कुमार सचिन हैं, कुमार प्रथमेश हैं, कुमारी प्रणाली हैं देशमुख, और कुमार सर्वद देशमुख हैं, और सानवी देशमुख हैं। इन्होंने हमें संदेशा भेजा। आपने बहुत सारे लोग हमें फरमाइश अपनी नहीं भेजते हैं, ये सोच करके चलिए आपकी फरमाइश हमारी बन जाएगी। तो ऐसा ही एक और संदेशा आया है, ये कहाँ से आया है, गांव लोहगढ़ से ये संदेशा आया है। स्वर्ण सिंह गिल हैं, दलजीत हैं, और राजदीप सिंह हैं, गुरनूर हैं इनके साथ, और इनके साथ दो और नाम हैं, गुरलाल हैं और अविराज सिंह जी हैं। और मुझे लग रहा है अब एक गीत जो है हम फटाफट सुन लेते हैं और देखते हैं कि ये पूरा हम सुन पाते हैं या नहीं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: साथियों वेलकम बैक है जी आपका एफएम गोल्ड में, लेकिन प्रोग्राम जो है उसका समय जो है वो अब समाप्त होता है, लेकिन खुशी की बात है कि मन भावन आपसे रोज मुखातिब होता है ये कार्यक्रम। और फिलहाल सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए, इस कार्यक्रम से आप सुनते रहिए एफएम गोल्ड। बहुत सारे कार्यक्रम अभी आपके लिए हमने लाने, फिलहाल समय समाचारों का हो गया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नीदरलैंड्स दोस्ती का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने हैग में एक सामुदायिक कार्यक्रम में हैग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है।
1: नीदरलैंड्स के समाज और यहां की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर हर भारतवासी को गर्व है। मैं आज इस अवसर पर नीदरलैंड की जनता का, यहाँ की सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं यहाँ की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर का तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए नॉर्वे पहुंचेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करनी होगी। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में जीव विज्ञान के प्रश्नपत्र लीक से जुड़े एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने 14 मई को गिरफ्तार की गई मनीषा वाघमारे के माध्यम से नीट परीक्षा के संभावित उम्मीदवारों को जुटाया और पुणे स्थित अपने आवास पर इन विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग कक्षाएं चलाई। इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। नोटिस में सीबीएसई ने कहा है

कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे दो चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेज बिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार भारत को नशामुक्त देश बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत राज्य में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोह सजेफेई को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर और वक्त भी आप नोट करें 4:11:20। आइए साथियों आपको बताते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आने वाले घंटों में आप कौन कौन से कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप और हम मिलकर सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार। 4:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम परिक्रमा का रहेगा। साथियों आप जानते हैं आपके मनपसंद एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हर घंटे आप समाचार सुनते हैं और इसी कड़ी में 5:00 हिंदी में समाचार, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 5:10 पर आपसे मुखातिब होगा कार्यक्रम गाते गुनगुनाते, जिसमें मैं सीमा आपके साथ रहूंगी और हमारे साथ रहेंगे कुछ चुनिंदा गीत 80 और 90 के दशक के। मेरी मुलाकात मेरा साथ आपके साथ 6:00 तक, 6:00 हिंदी में समाचार आप सुन सकेंगे, 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे और 6:10 पर सदाबहार गीत एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगे, साथ रहेंगी रेशमा तिवारी। 6:20 पर शाम संस्कृत में समाचार होंगे और 6:30 का वक्त न्यूज सर्विसेज डिवीजन के कार्यक्रम मार्केट मंत्रा का रहेगा। इसी तरह हम आगे की जानकारी भी आपको जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं एक बहुत खूबसूरत सा गीत एक साथ।

0: नमस्कार, मैं मालिनी अवस्थी। मुझे लगता है मेरी जिंदगी की पूरी कहानी यदि आप लिखेंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा आकाशवाणी के हवाले होगा। 90 बरस हुए और आप ये समझ लें कि 50 साल का मेरा जुड़ाव रेडियो से है। मैं 10 बरस की थी, गोरखपुर में आकाशवाणी गोरखपुर का सेंटर खुला था नया, और तब बाल जगत में सबसे पहले तो बच्चों के साथ और भैया दीदी के साथ बैठ करके बात करते थे, और वो पहला अनुभव था। ये बात हो गई 76 के, और बड़े अच्छे कमाल के ज्ञानवर्धक बातें, बच्चों को अपनी कविताएं सुनानी होती थी, कोई गा सकता है तो गाए भी, तो आकाशवाणी एक तरह से इल्म भी था। फिर वहां से रेडियो में युवावाणी है, फिर अब जनरल है, फिर अब टॉप ग्रेड तक पहुंचना है, एक तरह का वो हमारे लिए सीढ़ी बन गई। गोरखपुर से लखनऊ आकाशवाणी, फिर दिल्ली रेडियो, तो हमारे लिए पूरी दुनिया में बल्कि भारतवर्ष में कॉन्सर्ट्स में हम जब यात्रा करते हैं अलग अलग शहरों में, तो सबसे खुशी होती थी कि जब नाम के साथ ये जुड़ता था कि अब आपके सामने आ रही आकाशवाणी कलाकार मालिनी अवस्थी। और सबसे बड़ी बात आज यहाँ जरूर कहूंगी, आकाशवाणी इस मामले में एक बहुत क्वालिटी कॉन्शियस था। आप किनको गा सकते हैं और किनको नहीं गा सकते, रेडियो का जो एक स्टैंडर्ड था वो इतना कमाल का था, तो हमारे लिए आकाशवाणी स्टूड लाइक गोल्डन स्टैंडर्ड और व्हाट नीड्स टू बी फॉलोड।
1: मारे करे जुवा माती बलम घरे ना मोरे नने दी,

0: Han. Interviews are scheduled on 18th and 19th May 2026 at the Institute campus in New Delhi. Candidates should check eligibility, qualifications and other details on the official website. And the website is www.niap.res.in. I repeat, www.niap.res.in. Islamic University of Science and Technology has invited online applications for the post of a professor in architecture under pay level 14. Applicants should have a PhD in architecture, strong academic background and substantial teaching and research or professional experience. The last date for online application is 18th May 2026, while hard copies must be submitted by 25th May 2026. For details, kindly refer to the official website at this www.iust.ac.in. I repeat, www.iust.ac.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान राजकोट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज राजकोट गुजरात, PMSSY, नर्सिंग कॉलेज एम्स राजकोट के लिए नियमित आधार पर प्रोफेसर सह प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पद का नाम है प्रोफेसर सह प्राचार्य। वेतन स्तर होगा 13, 7वें CPC के अनुसार। रिक्ति है 1 अनारक्षित। प्रत्येक पद के लिए पात्रता मानदंड, विस्तार में विज्ञापन एवं जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी। www.aimsrajkot.edu.in यहां पर जाएं और जानकारी प्राप्त करें। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड। सैनिक स्कूल पुंगलवा नागालैंड के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें 3 वर्ष की अवधि तक उसे बढ़ाया जाएगा। इन पदों के नाम की जानकारी आप तक हम दे दें। PGT गणित में 1 पद है, काउंसिलर के लिए 1 पद है, नर्सिंग सहायक के लिए 1 पद, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के लिए 1 पद, PEM PTI सह मेट्रन महिला 2 पद, सामान्य कर्मचारी 2 पद। संविदा की कुल अवधि किसी भी परिस्थिति में नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। हालांकि कर्मचारी के कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 11 महीने पूरे होने तक स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा कार्य निष्पादन समीक्षा और संस्थागत आवश्यकता के आधार पर अनुबंध को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ईमेल से आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तारीख है वो है 18 मई 2026, और इंटरव्यू जो शेड्यूल्ड है वो है 22 और 23 मई 2026। आपको हम वेबसाइट की जानकारी दें ताकि आप वहां से आवेदन पत्र और इससे संबंधित सारे शर्तें पात्रता देख सके। www.sainikschoolpunglava.nic.in से डाउनलोड कर सके। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड श्री विजयपुरम, अनिटको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के 1 पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं aniidco@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप जानकारी ले सकते हैं। सैनिक स्कूल सतारा। सैनिक स्कूल सतारा में कुछ रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। टीजीटी गणित में अनारक्षित दो पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। टीजीटी हिंदी के लिए अनारक्षित दो पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर। टीजीटी सामाजिक विज्ञान अनारक्षित एक स्थान रिक्त है, संविदात्मक। टीजीटी मराठी में अनारक्षित एक पद रिक्त है, संविदात्मक। कला शिक्षक अनारक्षित एक पद रिक्त है।

0: जो कि संविदात्मक ही होगा। संगीत शिक्षक में भी एक पद रिक्त है अनारक्षित, और प्रयोगशाला सहायक, विद्यालय चिकित्सा अधिकारी दोनों में एक एक स्थान अनारक्षित संविदात्मक आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वार्ड बॉय मेट्रन छात्रावासों के लिए अनारक्षित है ये पद, 3 स्थान यहाँ रिक्त है संविदात्मक। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा, पीओ बॉक्स नंबर 20, सदर बाजार, जिला सतारा, महाराष्ट्र के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्र और लघु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को बाद में सूचित की जाने वाली तिथि को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। परीक्षा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों को कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। इससे संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्कूल का, www.sainiksatara.org.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: अभी आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज और रोजगार समाचार सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 है। कुछ ही देर में हम कार्यक्रम सुनेंगे परिक्रमा।
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। कार्यक्रम परिक्रमा में मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सरबजीत कौर। नमस्कार सरबजीत।
5: नमस्कार वैष्णवी, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर लिसनर्स। इट्स अ ब्यूटिफुल सैटरडे इवनिंग एंड टाइम फॉर आवर डेली शो परिक्रमा। लिसनर्स, 30 मिनट्स एंड इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट पैकेज ऑफ न्यूज, डिस्कशन सेगमेंट कॉल्ड डेटलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्स्यूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड अ फ्लेवर ऑफ म्यूजिक टू। ऑल दिस एंड मच मोर विद द नेक्स्ट 30 मिनट्स। एंड वैष्णवी, लेट्स फर्स्ट बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम।
5: Several important agreements expected to be signed, including in the fields of semiconductor chips, AI and bilateral trade.
4: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे।
5: वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ऑर्डर्स रीवेरिफिकेशन ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट्स इश्यूड सिंस 2011।
4: सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के 2 चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की।
5: एंड इन बैडमिंटन, इंडियन ड्यूओ सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी एंटर फाइनल्स ऑफ थाईलैंड ओपन आफ्टर अ थ्रिलिंग विक्ट्री ओवर मलेशियन पेयर इन द सेमीफाइनल्स। And listeners, now time for our discussion segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. Today, we'll talk about Sikkim's 51st Statehood Day and Prime Minister's visit to the UAE. Vaishnavi, Sikkim, it's a beautiful land where mountains touch the clouds.
4: Mm-hmm.
5: But beyond its breathtaking beauty lies a story that makes every Indian proud. Today, Sikkim is celebrating its 51st Statehood Day, and across the country, wishes have poured in from the nation's top leaders. President Draupadi Murmu describes Sikkim as a shining example of sustainable development.
4: राष्ट्रपति ने सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता की सराहना की। वास्तव में सरबजीत, अगर हम देखें तो इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो सकता है। सिक्किम दुनिया का पहला और एकमात्र पूरी तरह से जैविक यानी ऑर्गेनिक राज्य है, जहां विकास और प्रकृति एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर आगे बढ़ते हैं।
5: एब्सोल्युटली वैष्णवी, सिक्किम इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेयर वी हैव सीन growth but not at the cost of nature, not at the cost of rivers, forests and clean air.
4: बिल्कुल, यहाँ के किसानों ने जैविक खेती को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। प्रकृति को सहेजते हुए पर्यटन का विकास किया गया और आधुनिकता के इस दौर में भी स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को जीवंत बनाए रखा है।
5: वैष्णवी, इट्स बीन अ जर्नी फॉर सिक्किम एंड ऑफिशियली सिक्किम बिकेम इंडियाज 22nd स्टेट ऑन दिस डे इन द ईयर 1975 एंड दैट इज व्हाई स्टेटहुड डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। बट द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस हैड कंटिन्यूड थ्रू आउट द ईयर, इवेंचुअली कल्मिनेटिंग इन अ ग्रैंड सेरेमनी इन अप्रैल दिस ईयर Prime Minister Modi joined the people of the state in Gangtok. Let's share a detailed report on this with our listeners.
6: 16th May is celebrated as Sikkim Day. As on this day in 1975, Sikkim became part of India.
7: Initially, Sikkim was under Chogyal dynasty rule during the 17th century. However, by 1890, it became a protectorate state under British rule, who used it as a buffer state between China and British India. In 1947, as Sikkim became a part of India unofficially, its foreign policy, security and communication came under the realm of India, while maintaining its independence at the same time.
6: In 1973, the people started demanding a responsible government and a civil disobedience movement was established against the monarch. A referendum was held in which 97.5% of voters supported abolishing the monarchy. This led to Sikkim's official merger with India. To enable the incorporation of the new state, the Indian Parliament amended the Indian Constitution.
7: First, the 35th Amendment laid down a set of conditions that made Sikkim an associate state. A month later, the 36th Amendment repealed the 35th Amendment and made Sikkim a full state, adding its name to the first schedule of the Constitution.
4: इस दौरान प्रधानमंत्री ने सिक्किम में मिले स्नेह और आत्मीयता का भी उल्लेख किया। श्रोताओं, जो भी कभी पूर्वोत्तर गया है वे इस भावना को भली भांति समझ सकता है। कई बार मुस्कान के साथ परोसी गई स्थानीय चाय की एक प्याली भारत की एकता और अपनत्व का एहसास गहराई से करा देती है।
5: Yes, and Vaishnavi, heaven of the east. That's how Prime Minister described this beautiful state. And interestingly, this did not sound like a political line. It sounded personal.
4: बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, खेल और युवाओं के लिए अवसर के बारे में बात की, क्योंकि दशकों से हिमालय क्षेत्रों के कई हिस्सों में लोगों को मुश्किल सड़कों, सीमित सुविधाओं और कम अवसरों से जूझना पड़ रहा है।
5: Union Home Minister Amit Shah also praised Sikkim's achievements, saying the state continues to inspire the nation, whether through organic farming or redefining mountain tourism. The phrase redefining mountain tourism means a lot, Vaishnavi. Tourism in many places often becomes overcrowded and chaotic, but Sikkim offers something different. Clean streets, respect for nature, quiet monasteries and local markets selling handmade products.
4: बिल्कुल सही कहा आपने सरबजीत, कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो हम सिर्फ तस्वीरें लेके वापस नहीं लौटते हैं, बल्कि हम अपने वहां से शांति, सुकून और खुशी का एहसास लेकर के भी लौटते हैं। और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को सिक्किम घूमने और वोकल फॉर लोकल पहल के तहत वहां के स्थानीय उत्पादों तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया।
5: Absolutely, Vaishnavi, and the Honorable Prime Minister has at various fora, you know, spoken about vocal for local, and he has been encouraging the citizens to go in for products made in the country itself. So because, you know, what is the reason behind this? Well, when someone buys local hand-woven products, especially from Gangtok, or tastes organic produce grown in Sikkim's villages, they are not only shopping, they are helping preserve livelihoods, traditions, and an entire way of life.
4: वहीं इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान श्री सिंधिया नामची पर्यटन सर्किट, भालेडुंगा स्थित स्काई वॉक परियोजना और नाथुला के निकट कैलाश मानसरोवर यात्रा से संबंधित बुनियादी ढांचे सहित महत्वपूर्ण पर्यटन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे।
5: वेल, फॉर मेनी ईयर्स पीपल स्पोक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट एज इफ इट वॉज डिस्टेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कट ऑफ, नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, बट टूडे The conversation is changing. Roads, railways, tourism, sports, digital connectivity and cultural exchanges are bringing the region closer to the national mainstream.

0: while preserving its unique identity.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम दौरे के दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्वोत्तर को भारत की अष्टलक्ष्मी बताया. ये 8 ऐसे राज्य हैं जो अपार शक्ति, सौंदर्य और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं, और ये भावना सिक्किम से अधिक कहीं और दिखाई नहीं दे सकती हमें.
0: एंड दिस इंडीड वैष्णवी इज इंट्रीगिंग. व्हाट ट्रूली मेक्स इंडिया सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी? इज इट आवर लैंग्वेजेस, आवर फूड, आवर फेस्टिवल्स, आवर लैंडस्केप्स?
1: मुझे लगता है सरबजीत, इस सब सारे प्रश्नों का जवाब यही है कि मठों, ऑर्किड, बर्फों से ढकी चोटियों और जैविक खेतों से सजा एक छोटा सा हिमालय राज्य भी उतने ही गर्व और आत्मीयता से स्वयं को भारतीय महसूस करता है जितना राजस्थान के रेगिस्तान, केरल के समुद्र तट या दिल्ली की गलियां. यही भारत की असली ताकत है, विविधता में एकता और हर क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान के साथ जुड़ा राष्ट्रीय गौरव.
0: Very well said, Vaishnavi. Different stories, different cultures, different identities, yet one heartbeat. And Sikkim's journey beautifully reminds us of that truth.
1: श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रधानमंत्री के संयुक्त अरब अमीरात दौरे के बारे में. भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मित्रता अब केवल व्यापारिक संबंधों और तेल आपूर्ति तक सीमित नहीं रह गई है. आज ये साझेदारी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, समुद्री सुरक्षा और वैश्विक कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भविष्य को नई दिशा दे रही है.
0: एब्सोल्युटली, वेरी वेल स्टेटेड वैष्णवी. एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रीसेंट विजिट टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज टेकन दिस पार्टनरशिप to an entirely new level. But it's very important to look into this question, that what does this really mean for the ordinary Indian? Does it mean cheaper and more secure energy for our homes? Does it mean more jobs for young engineers and skilled workers? Or does it mean India is preparing itself to lead the technologies of tomorrow?
1: इन सभी सवालों का जवाब हाँ है, और इसके संकेत अभी से स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं. सदियों से भारत और संयुक्त अरब अमीरात अरब सागर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं. आधुनिक कूटनीति की शुरुआत से बहुत पहले ही दोनों देशों के व्यापारी इसी समुद्री मार्ग के जरिए मसालों, मोतियों, खजूर और कपड़ों का व्यापार किया करते थे.
0: But Vaishnavi, today the relationship has evolved far beyond trade ships and business deals. It has become a partnership built on trust, ambition, shared dreams for the future. And don't miss the scale of this growth. Trade between the two countries has crossed $100 billion for the first time.
1: जी सरबजीत, और एक पल के लिए अगर हम सोचे तो हर दिन हजारों व्यवसाय, कामगार, निर्यातक और परिवार इस मजबूत होती साझेदारी से लाभान्वित हो रहे हैं. चाहे सूरत का कोई कपड़ा व्यापारी हो, कोची का कोई सी फूड निर्यातक, वहीं बेंगलुरु का कोई स्टार्टअप संस्थापक या दुबई में कार्यरत कोई तकनीशियन, ये सभी भारत के इस वैश्विक मंच पर तेजी से उभरने की इस बड़ी कहानी का हिस्सा हैं.
0: जी, एंड वैष्णवी, वी कैनॉट मिस ऑन दिस दैट वन ऑफ द बिगेस्ट आउटकम्स ऑफ दिस विजिट इज एनर्जी सिक्योरिटी. इट्स अ बर्निंग टॉपिक इन टूडेज टाइम्स. एंड ऑफकोर्स, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? एनर्जी इज द बैकबोन ऑफ एवरी मॉडर्न नेशन, फ्रॉम द एलपीजी सिलेंडर इन अ मिडिल क्लास किचन टू फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट. Energy touches everyday life.
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अब कच्चे तेल, एलएनजी, एलपीजी और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारों के क्षेत्र में अपने सहयोग और मजबूत किया है. इसका मतलब यह है कि भारत खुद को इस तरह तैयार कर रहा है कि वैश्विक उथल पुथल या अंतर्राष्ट्रीय संकटों के दौरान भी वे मजबूत से बना रहे. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई परिवार आगे आने वाले मुश्किल समय के लिए बचत करता है. एक जिम्मेदार परिवार जरूरी चीजों का भंडारण करता है और सोच समझ कर योजना बनाता है.
0: एब्सोल्युटली, एंड इंडिया इज नाउ डूइंग द सेम एट अ नेशनल स्केल. बट द विजिट वॉज नॉट ओनली अबाउट ऑयल एंड ट्रेड, इट वॉज अबाउट द फ्यूचर. A future driven by artificial intelligence, supercomputing, advanced manufacturing and innovation. India and the UAE are partnering to set up an 8 exaflop supercomputing cluster, and that sounds highly technical, but its impact could touch millions of lives. Faster supercomputers can help India improve weather forecasting, scientific research, healthcare systems, defense technology and artificial intelligence innovation.
1: श्रोताओं, आज किसी छोटे शहर में बैठा एक छात्र भी कल इन्हीं साझेदारियों से विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीक की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उपकरण तैयार कर सकता है. अवसरों का दायरा इतना व्यापक हो चुका है, और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आता है, क्या भारत एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में उभर सकता है?
0: Yes, indeed. The question is equally intriguing, Vaishnavi, and indeed, this is also a milestone for the country. The answer, of course, is slowly unfolding along the country's coastlines. A major agreement has been signed for developing ship repair and maritime infrastructure in Gujarat. Alongside this, there will also be skill development programs for India's maritime workforce.
1: श्रोता, इसका अर्थ ये है कि वेल्डर, टेक्नीशियन, इंजीनियर, लॉजिस्टिक पेशेवरों और शिपिंग व जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं.
0: Yes, Vaishnavi, and so interesting and nice that a young person from a coastal town who once searched for jobs abroad may soon find world-class opportunities within India itself. And that is the real transformation.
1: जी बिल्कुल, और इसी दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी और गहरा हुआ है. भारत अब रक्षा क्षेत्र को केवल बाहर से उपकरण खरीदने तक ही सीमित नहीं मानता, अब इसका जोर मेक इन इंडिया की सोच के अंतर्गत सह विकास, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग की ओर बढ़ रहा है.
0: And perhaps the most beautiful part of this relationship, Vaishnavi, lies in the people-to-people connection. Millions of Indians living in the UAE are contributing every single day. Doctors, teachers, engineers, shopkeepers, entrepreneurs, construction workers and professionals. Their hard work has built bridges stronger than diplomacy itself.
1: श्रोता, घर भेजा गया हर रेमिटेंस भारत में कई सपनों को सहारा देता है. किसी बच्चे की पढ़ाई, किसी पारिवारिक व्यवसाय की शुरुआत, एक नए घर का निर्माण या बेहतर भविष्य की उम्मीद, यही कारण है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात की साझेदारी इतने सारे भारतीयों को गहरे अपनत्व का एहसास कराती है.
0: एंड वैष्णवी, टुडे इंडिया इज नॉट स्टैंडिंग ऑन द साइडलाइंस वेटिंग फॉर द फ्यूचर टू अराइव. इनफैक्ट इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग टू बिल्डिंग दैट फ्यूचर. एंड परहैप्स द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस विजिट इज दैट इंडियाज राइज इज नो लॉन्गर अ प्रिडिक्शन, इट इज बिकमिंग अ रियालिटी दैट द वर्ल्ड इज एक्टिवली पार्टनरिंग विद. एंड दैट इज अ स्टोरी एवरी इंडियन कैन फील proud of.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है.
0: Yes, a major step towards preserving Nagaland's indigenous heritage has taken shape with the inauguration of the Nagaland Indigenous Tribes Cultural Resource Center in Kohima this month. The center aims to preserve, document and promote the rich traditions of the state's indigenous communities through art, crafts, music, folklore and storytelling. More details on this from our Kohima correspondent.
2: The Nagaland Indigenous Tribes Cultural Resource Center in Kohima was inaugurated by Advisor for Art and Culture, Government of Nagaland, K. Khongan Konyak on May 7. Constructed at a cost of over 1,283 lakh rupees, the project was jointly funded by the central and state governments. The three-story building houses a district museum, library, seminar hall, and dedicated tribal spaces representing all 16 tribes of Nagaland. The facility is expected to serve as a hub for exhibitions, research, learning, documentations, and cultural exchange, while also fostering unity and mutual understanding among tribal communities. Advisor for Art and Culture, K. Khongan Konyak, described the center as a living cultural space for future generations.
3: This center not merely as a place to preserve the past, but as a living cultural space where tradition can be actively practiced, shared and carried forward to future generations.
2: The project, first sanctioned in 2011, faced delays after funding was discontinued. The state government later revived the project using its own resources, leading to its completion earlier this year. The Nagaland Indigenous Tribes Cultural Resource Center now stands as a symbol of cultural pride, unity and preservation for generations to come. For Parikrama, Asunyo from Kohima.
1: श्रोताओं, अब रुक करते हैं कोहिमा से पानाजी की ओर. खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को मजबूत करने और शून्य हानि कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने पर बल देते हुए 42वें खनन सुरक्षा सप्ताह 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह कल गोवा में आयोजित किया गया. एक रिपोर्ट.
4: इस अवसर पर खान सुरक्षा महानिदेशालय के उप महानिदेशक राम अवतार मीना मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। खनन क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने तथा शून्य हानिकारी संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा,
5: हमारा जो पिछला सेफ्टी वीक का फंक्शन हुआ था 2016-17 में हुआ था, 2018 से हमारी माइंस काफी बंद हो गई थी और हम सबको ये खुश होना चाहिए कि इस वर्ष हमारा कई माइंस चालू हुई है। हम लोग इस बार जो सेफ्टी वीक का ये फंक्शन कर रहे हैं इसमें करीब 50 माइंस पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें गोवा राज्य की माइंस है और महाराष्ट्र की कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग का है कुछ माइंस, रत्नागिरी की एक तो माइंस है और रायगढ़ का कुछ माइंस है। तो सुरक्षा के प्रति हमारे जो कामगार है उनकी जो जागरूकता है उसको निरंतर बढ़ाने के लिए इस तरह का ये सेफ्टी वीक का आयोजन किया जाता है।
4: कार्यक्रम में डीजेएमएस के वरिष्ठ अधिकारी, खनन कंपनियों के प्रतिनिधि तथा उद्योग से जुड़े भागीदार उपस्थित थे। गोवा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी से लगभग 50 खदानों ने 15 से 20 दिसंबर 2025 तक चले इस सप्ताह भर के आयोजन में भाग लिया था। इस दौरान सेमिनार, ट्रेड टेस्ट और फर्स्ट एडर प्रतियोगिताओं जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनका उद्देश्य खदान सुरक्षा और व्यावसायिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। समारोह में एक स्मारिका का विमोचन किया गया, जिसके बाद विभिन्न सुरक्षा श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार वितरित किए गए। अगले खान सुरक्षा सप्ताह की मेजबानी वेदांता लिमिटेड को सौंपी गई है। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: Well, as Maharashtra, along with other states, enters the second phase of the house listing and housing census today, let us go to Sindhudurg, district of Maharashtra, where a small village achieved a huge feat. We have a report.
6: Moot, a small village in Sindhudurga, has crossed a major milestone by becoming the first village in the state of Maharashtra to complete the self-enumeration process. It's a small village of just 36 houses, 43 families and a total population of 144. To elaborate further on how Moot village completed the self-enumeration process and how it inspired other villages to follow the same roadmap, we have with us District Collector of Sindhudurga, Trupti Dhodmise.
7: The first village which actually completed its self-numeration 100%, that is the village Moot in Vengula Taluka, which actually comprises the population of 144. After that, more than 15 villages have completed the self-enumeration process. Seeing our achievement, Honorable Director Census Operations Nirupama Dange Ma'am also has taken the cognizance and appealed villages and district administration across the state to participate proactively in the self-enumeration process. So many villages in the state also have come forward after that and they have completed their self-enumeration process.
6: Moot village has set an example that when the government administration joins hands with common citizens and they work together towards a shared goal, small communities can achieve large targets. With Nilesh Joshi from Sindhudurga, this is Ankita Apte for Parikrama from Mumbai.
1: सरब जी, अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की ताजा हलचल। शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोह सजे फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए थे।
0: इन आईपीएल क्रिकेट, कोलकाता नाइट राइडर्स विल टेक ऑन गुजरात टाइटंस एट द आइकॉनिक ईडन गार्डन्स दिस इवनिंग। द मैच इज शेड्यूल्ड टू बिगिन एट 7:30 PM। अर्लियर लखनऊ सुपर जायंट्स डिफीटेड चेन्नई सुपर किंग्स बाय 7 wickets at the Ekana Stadium last night, chasing a target of 188 runs. Lucknow Super Giants overhauled the winning mark in 16.4 overs, riding on Mitchell Marsh's fabulous innings of 90 runs in just 38 balls. Marsh was also adjudged player of the match.
1: अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है जन्मदिन, पुण्यतिथि या जयंती।
8: वी रिमेम्बर फ्रीडम फाइटर भीम बोरदेओरी, हु वॉज बोर्न ऑन द 16th of May 1903। भीम बोरदेओरी स्ट्रगल्ड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ असम, यूनाइटिंग ऑल द कम्युनिटीज ऑफ द स्टेट। ही ऑल्सो फॉट एंड इंश्योर्ड असम्स इंटीग्रेशन इनटू इंडिया।
9: अ लॉयर बाय प्रोफेशन, Deori helped found the Assam Backward Plains Tribal League in 1933. He worked to ensure that indigenous Assamese people were allotted land. Deori was one of the main architects of the famous Khasi Darbar Hall resolutions held in March 1945, where indigenous leaders of different ethnic identities resolved resolutions to restore their independent homelands.
8: He led Northeast India towards a new vision of development while maintaining the independence of different tribes. Bhimbor Deori continued to fight for the rights of indigenous people

0: Wasn't that beautiful, Vaishnavi?
1: Ji, bilkul.
0: And we are also remembering Maria Gethina Agnes. Today is her birth anniversary. Maria was an Italian mathematician, philosopher, theologian and humanitarian. The interesting part is that she was the first woman to write a mathematics handbook, the first woman appointed as a mathematics professor at a university, and the second woman appointed as a professor on an overall basis. She's credited with writing the first book discussing both differential and integral calculus. The Britannica defines her as to be the first woman in the Western world to have achieved a reputation in mathematics.
2: एक गहन आत्मविश्वास से भरकर सुबह निकल पड़ता हूँ घर से ताकि सारा दिन आश्वस्त रह सकूं। एक आदमी से मिलते हुए मुस्कुराता हूँ, वे एकाएक देख लेता है मेरी उदासी। एक से तपाक से हाथ मिलाता हूँ, वे जान जाता है मैं भीतर से हूँ अशांत। एक दोस्त के सामने खामोश बैठ जाता हूँ, वे कहता है तुम दुबले बीमार क्यों दिखते हो। जिन्होंने मुझे कभी घर में नहीं देखा वे कहते हैं अरे आप टीवी पर दिखे थे एक दिन। यही खासियत ही मंगलेश डबराल की कविताओं की कि वे बिना किसी भारी शब्दों के सीधे इंसान के भीतर चल रही भावनाओं को सामने ले आते थे। उनकी रचनाएं पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे ही मन की बात कह रहा हो। आज ही के दिन वर्ष 1948 में जन्मे मंगलेश डबराल हिंदी की आधुनिक कविता के प्रमुख और सम्मानित रचनाकारों में गिने जाते हैं।
0: और वैष्णवी, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा दैट शाम का समय है, इट्स अ ब्यूटिफुल इवनिंग और इट्स अ सैटरडे इवनिंग, सो यू नो बिफोर वी वाइंड अप दिस प्रोग्राम व्हाइल वी आर पेइंग ट्रिब्यूट्स टू द ग्रेट फनी मजूमदार, टुडे इज हिज डेथ एनिवर्सरी, वी मैनेज्ड टू ब्रिंग two songs for our listeners from some of his classic movies. Fani Majumdar worked in Bengali and Hindi cinema. So our production team has brought in these two beautiful numbers. Let's hear them out.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपनी पांच देशों की यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकटों जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्च स्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्स के इंजीनियर और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीष गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक की पूरी पहुंच थी। इस मामले में पांच आरोपियों को पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका है और विस्तृत पूछताछ के लिए 7 दिन की पुलिस हिरासत और रिमांड पर लिया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। सीबीएसई ने कहा कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से पेचिंग की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मिलेंगे। पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर

हो रही है। इस दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। ये घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूर इज़ुद्दीन और गो स्केफे को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद जरूरी है, जबकि कोलकाता यह मैच जीतकर अंक तालिका में शीर्ष पर आना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

गाते गुनगुनाते हुए सफर की शुरुआत करने का वक्त आ गया है, बिल्कुल आ गया है। 5:11:20। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। और शुरू होता है जी गाते गुनगुनाते। शनिवार की शाम हो गई है, आप ने गैस पर चूल्हे पर चाय रख दी होगी शायद, और हमने यहाँ से गीतों की शुरुआत कर दी है। शाम का खूबसूरत वक्त, 80 और 90 के दशक के गीत, आपसे हमारी मुलाकात, क्या बात है। सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास जी की आवाजों में अभी ये गीत हमने सुना। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है और आइए अब आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताते हैं जो संजय दत्त साहब की डेब्यू फिल्म रही। 1981 में ये फिल्म आई, नाम रहा रॉकी। और रॉकी में संजय दत्त के साथ टीना मुनीम को हमने देखा, आर डी बर्मन का बेहतरीन संगीत। और मुझे हल्का हल्का याद है कि जब ये फिल्म आई थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस फिल्म का इंट्रोडक्शन किया गया था और बाइक, संजय दत्त न्यू फेस, और किस तरह वो बाइक में अपनी अपेयरेंस देते हैं कि बाइक चलाते हुए हीरो आ रहा है। और बहुत पसंद की गई ये फिल्म लोगों द्वारा, स्पेशली जब कोई नया चेहरा आता है और ऐसी फैमिली से आता है जो फैमिली पहले से ही फिल्म लाइन में होती है, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो है वो बढ़ जाती है। आज इतने साल हो गए हैं और हमने संजय दत्त जी की इतनी बेहतरीन फिल्में देखी हैं, क्या उन्होंने अलग अलग तरह के रोल्स निभाए हैं। लेकिन अगर हम इसकी बात करें इस फिल्म की, तो आर डी बर्मन साहब का बहुत खूबसूरत संगीत रहा। और आर डी बर्मन जी के बारे में जब हम बात करते हैं, जब उनके बारे में देखते हैं, उनके ग्राफ को देखते हैं, तो 70s में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त संगीत दिया जिसमें आशा जी के साथ बहुत अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए। और उसके बाद 80s का ये दौरा, एक बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का संगीत वो देते थे। जो संगीत में हैं, संगीत से जुड़े हुए हैं, वो झट से बता देते हैं कि ये जो म्यूज़िक है ये आर डी बर्मन साहब का है। इस फिल्म में आनंद बख्शी जी ने गीत लिखे और गीत अपने आप में बहुत सुंदर, एक गीत आप तक मैं लेकर आई हूँ, ये आपने सुना भी है लेकिन हो सकता है बहुत समय से अगर आपने नहीं सुना है, तो आइए एक साथ मिलकर इस गीत को सुनते हैं। और आप सुनते रहिए 100.1।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी पाहुजा है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर काम कर रही हूँ। आकाशवाणी को 90 साल पूरे करने पर बहुत बहुत बहुत बधाई। 90 साल का कामयाब सफर तय करना कोई आसान बात नहीं है। आकाशवाणी मेरे लिए एक परिवार की तरह है। आपने मुझे आज तक अपने साथ जोड़ कर रखा है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे जीवन की हर पड़ाव, सफलता, मेरे जीवन के संघर्ष, कोई भी चीज़ आपसे छुपे नहीं। आपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से मुझे कई अवसर दिए कि मैं देश भर के श्रोताओं से जुड़ी रहूँ। आप मेरी आवाज़ बने, मैं इसके लिए आपकी कृतज्ञ हूँ।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

घाटी गुनगुनाते का सफर बड़े शानदार तरीके से चल रहा है क्योंकि आप हमारे साथ हैं। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 के साथ और आज शनिवार की शानदार शाम आपके साथ मैं सीमा वर्मा।

दिल से दिल की बात पहली बार में तो समझ नहीं आती है। हाँ, जहाँ जो रिश्ता होता है उसकी जड़ें जब मजबूत हो जाती हैं, तब एक ऐसा वक्त आता है जब आप किसी के दिल की बात बिना शब्दों के समझ जाते हैं। बहरहाल, आपको ये गीत अच्छा लगा होगा फिल्म खामोशी से, और अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक बहुत खूबसूरत फिल्म। लेकिन इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि साथियों, हमने देखा है पार्ट वन पार्ट टू बनता है, यानी फिल्म का नाम वही रहता है लेकिन उसका पार्ट वन पार्ट टू बन जाता है। और वो तभी होता है जब पहली फिल्म जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा सुपरहिट होती है और पसंद की जाती है, ऑब्वियसली तभी उसका पार्ट टू बनता है। तो ये एक ऐसी फिल्म है जो 90s में लोगों के दिलों में जाकर सट कर बैठ गई, और कह सकते हैं कि इसके गीत जो हैं वो जुबां पर सट कर बैठ गए। और इतने खूबसूरत फिल्म, इतना खूबसूरत संगीत, और इस फिल्म की कामयाबी ने कुछ यूं असर किया कि फिर उसके बाद पार्ट टू आई। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी फिल्म है जिसका जिक्र मैं कर रही हूं। बहरहाल, इस फिल्म का नाम तो मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कुछ शब्द जो यूं कहते हैं दिल की बात कि आपके दम से तो दुनिया का भरम है कायम, आपके दम से तो दुनिया का भरम है कायम, आप जब हैं तो जमाने की जरूरत क्या है, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए हैं, आपसे तुम से तू होने लगे हैं। अब ये कौन होने लगे हैं और ये कौन सी फिल्म है अब बतानी है आपको। बात कर रही हूँ आशिकी फिल्म की। नया चेहरा हीरोइन के रूप में, नया चेहरा हीरो के रूप में, संगीत बेमिसाल। इस फिल्म के म्यूजिक को जब भी सुनते हैं बहुत फ्रेश फील होता है। आइए एक बार और सुनते हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: गाते गुनगुनाते हुए हम अब एक ऐसे वक्त पर पहुंच चुके हैं जहां मुझे कहना होगा 5:42 और 42 सेकंड आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। आपके साथ आज शनिवार की शाम सीमा वर्मा और मेरे साथ तो आप हैं, आप हम दोनों के दरमियान हमारे बीच कुछ बहुत ही खूबसूरत फिल्मी गीत हैं। आइए अब इस गीत को भी सुनते हैं, थोड़ा सा संगीत भी सीख लेते हैं।
1: तुम भी गाओ।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ,
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो ये गाओ,

इस गीत में सुरेश वाडेकर साहब को सुना हमने और अनुराधा पौडवाल जी को सुना, और इस गीत को सुनते हुए ना मुझे वो गीत याद आ रहा था पुराने दौर का, जहां मुकेश जी और लता जी दोनों कुछ ऐसे ही सिचुएशन में वो गीत उन्हें सिखा रहे होते, संगीत सिखा रहे होते हैं। इस सावन का महीना पवन करे शोर, फिर शोर, फिर शोर, यानी कहीं ना कहीं आप कहें तो ये बात तो बात बिल्कुल सच है कि बहुत कुछ रिलेट करता है पुरानी चीज़ों से, नई चीज़ें बहुत रिलेट करती हैं। यही बात यादों की होती है कि कभी कुछ नया जब हम कुछ करते हैं, अचानक से उठकर एक पुरानी याद जो है, मेल खाती याद एकदम हमारे सामने आ जाती है। चलिए अब बता दें आपको कि 5:50 हो गए हैं और ऐसे में ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा जो गाते गुनगुनाते हैं ये पसंद आ रहा होगा। गाड़ी चला रहे हैं, घर पर हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ रहा है

5:55 हो गए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1। साथियों, और अब गीत सुनाने से पहले एक छोटी सी प्यारी सी बात है कि जितनी गर्मी हमें लगती है साथियों, उतनी ही गर्मी बाकी जीवों को भी लगती है। हमारे पास घर है रहने के लिए, उनके पास नहीं है। पंछी हों या हमारे घरों के आसपास रहने वाले जानवर हों, कोशिश कीजिए आपके घर का कोई एक ऐसा बर्तन जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं उसमें पानी भर के रोज सुबह चिड़ियों के लिए रखिए। आप अगर नीचे के घर में रहते हैं, गली पर, गली में एक साइड में पानी रखिए, ताकि जैसे हमारी प्यास बुझती है, इन जीवों की भी प्यास बुझे।

तो साहब किया मैंने आपको इस खूबसूरत गीत के हवाले, क्योंकि वक्त हो गया है। अब अपने दोस्त सीमा वर्मा को इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ, रेशमा स्टूडियो में आ गई हैं। आप सुनते रहिए FM गोल्ड। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। अपने पांच देशों के दौरे के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया इस समय कोविड महामारी, जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है, जो तकनीक और मानवीय मूल्यों दोनों के आधार पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा को इस ऐतिहासिक समझौते के बाद पहली बड़ी उच्चस्तरीय बैठक के रूप में देखा जा रहा है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ड ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्नपत्र तक पूरी पहुंच थी। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल शिक्षा छोड़ने पर मजबूर, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान एनआईओएस द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:11 और 4 सेकंड हो गए हैं और एफएम गोल्ड पर इस समय मैं हूं आपके साथ रेशमा, और आज आपके मेरे साथ की शुरुआत करते हैं फिल्म सच्चा झूठा के इस गीत से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

जी, और बातों बातों में तो पता भी नहीं चलता कि कब समय खत्म हो जाए। 6:15 और 36 सेकंड हो गए हैं और 6:20 पर FM गोल्ड पर समय हो जाएगा संस्कृत समाचारों का। तो एक गीत और सुनवा रही हूँ आपको मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म कश्मीर की गली से, और उसके बाद सुनेंगे आप संस्कृत समाचार।

सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। गतरात्रौ लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडांगणे लखनऊ सुपर जायंट्स इत्यनेन दलेन चेन्नई सुपर किंग्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम् इति वार्ताः।

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: शुभ संध्या, नमस्कार, अभिवादन. आप जुड़ गए हैं मार्केट मंत्र से, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरों पर चर्चा करने वाले हैं. श्रोताओं, आज शनिवार है और आज हम आपके प्रश्नों को भी सीधा प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं. ये नंबर है 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से जो भी बाहर के श्रोता हैं, वो इन नंबर पर कॉल करने से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे समक्ष आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली. शरद, हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से और हमारी तरफ से भी मार्केट मंत्र में आपका बहुत बहुत अभिनंदन.
0: वार्म वेलकम शरद.
2: धन्यवाद प्राची, धन्यवाद राजेश, सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिवादन.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करेंगे मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेसेस इंडियन डायस्पोरा इन नेदरलैंड्स, हाईलाइट्स देयर रोल इन डीपनिंग बायलैटरल टाइज़. Benchmark domestic indices tumble over 2% this week, and global crude oil prices surge as combative comments from US and Iran dim hopes of de-escalation in West Asia.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय को संबोधित कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की भूमिका को रेखांकित किया. इस सप्ताह प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में 2% से अधिक की गिरावट आई और दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम, अमरीका और ईरान की टिप्पणियों के कारण पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कम होने की संभावनाओं के कारण बढ़ गए.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक व्यवधानों से निपटने के लिए भारत और नेदरलैंड्स एक विश्वसनीय, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण के लिए मिलकर काम कर रहे हैं. नेदरलैंड्स के हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने डच समाज में भारतीय प्रवासियों के योगदान और भारत नेदरलैंड्स के बीच मित्रता के जीवंत सेतु के रूप में उनकी भूमिका की सराहना की. श्री मोदी ने रेखांकित किया कि प्रौद्योगिकी और नवाचार प्रमुख क्षेत्रों के रूप में उभर रहे हैं और नेदरलैंड्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग लगातार बढ़ रहा है. उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत और बढ़ते व्यापार तथा आर्थिक संबंधों पर बल देते हुए कहा कि नेदरलैंड्स

0: यूरोप में भारत के सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक है, साथ ही इसके प्रमुख निवेश साझेदार में से भी एक है। श्री मोदी ने आगे ये भी बताया कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता दोनों पक्षों के लिए नए अवसर खोलेगा।
1: We have two callers online with us now, one from Delhi and the other from Mumbai. We first go on to say a big hello to Mahesh from Delhi. A warm welcome, Mahesh.
2: My name is Mahesh Chawla. I'm from Pitampura, Delhi. My question is, in current scenario, should we continue with the SIP or should we stop our ongoing SIP? So how do you see the market in the coming futures?
3: Well, Mahesh ji, that's a very relevant question, because this is a question which comes to the minds of most of the SIP contributors. You know, SIP is called Systematic Investment Plan. And you know, Rajesh and Prachi, I have renamed it. I've called it Sabr Investment Plan. Or I call it as Smart Investing Patiently, SIP. So I think some of the part of my answer is in these expansions of the acronym. But then, you know, this is what SIP is, Mahesh ji, is meant for. Then the times when the market is down. And if you continue to do SIP, you are effectively buying at lower levels. And I also tell people that, you know, SIPs are meant for 10 years. If you take a period of 10 years, it would include 2 American presidential terms. In fact, 2.5 presidential terms. 10 years can take care of things like COVID. 10 years can take care of things like Iran war and so on and so. So when you have a long-term perspective, you will realize that the SIP or the mutual fund has overcome all these ups and downs, these major events. So therefore, Mahesh ji, the answer to your question is yes, you must continue. You should not discontinue. In fact, these days when you're contributing to SIP, your AMC is buying at lower levels, which is good for you. It will maximize your return in the times to come. I hope I've answered not just you, but the millions of people who want to know what should they do with their SIPs. Please remember the new name, Sabr Investment Plan.
0: आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं अमित से, ये मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं।
4: सर, थैंक यू। अशोक जी, जब प्रोग्राम रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत डिटेल में आंसर करते हैं सर। सर, मेरे दो सवाल थे कि सपोज इन्वेस्टमेंट है माँ और लड़के के नाम पे
3: जी,
4: और वो इन्वेस्टमेंट एफडी ज्वाइंट में है
3: जी,
4: तो वो इन्वेस्टमेंट पहली एज पर इनकम टैक्स की दृष्टि से वो किसकी समझी जाएगी, ज्वाइंट फर्स्ट होल्डर की? ये पहला सवाल। और दूसरा, फर्स्ट होल्डर की यदि डेथ हो जाती है तो एफडी जो अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी तो वो इन्वेस्टमेंट फिर बाद में किसके नाम पे रहेगी? यानी वो मुझे ऐसे दो सवाल थे सर। मैं रेडियो के सवाल आपका आंसर सुनता
3: जी। अमित, आप आज शरद कोहली को बुलाया हुआ है, अशु तो कोई नहीं बुलाया, मैं खाली आपने नाम बोला था। देखिए, आपका जो सवाल है उसमें मदर एंड डॉटर की आपने बात करी, तो अगर इसमें दो सिनेरियो उत्पन्न होते, एक तो अगर डॉटर मेजर है यानी कि 18 साल से ऊपर की उम्र की है, तो एफडी जो की हुई है इसमें यह देखना होगा कि एफडी में कॉन्ट्रीब्यूट किसने किया है, ये अमित देखना बहुत जरूरी है। अगर सारा पैसा मदर का है तो फिर ये मदर को ही अपनी इनकम में दिखाना चाहिए, पर कभी कभी क्या होता है जहां डॉटर मेजर होती है, 18 साल से ऊपर की है, वैसे तो अगर डॉटर अगर 18 से कम की है, माइनर है, तो फिर तो ये मदर में क्लब हो जाएगा। इनकम टैक्स में क्लबिंग प्रोविजंस होता है और आईटीआर में आप जाएंगे तो उसमें इनकम फ्रॉम अदर पर्सन शेड्यूल में मेंशन होता है, वहां मेंशन हो। अगर डॉटर मेजर है तो कभी कभी आधा आधा भी ले लिया जाता है। अब दूसरा आपने पूछा कि अगर डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर ऐसे में वो जो सेकेंड होल्डर है वो उसका ओनर बन जाता है और सेकेंड होल्डर को फिर सारा का सारा अपने में दिखाना पड़ता है। या ऐसा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है उन्होंने अपनी विल में क्या लिखा है। अगर मान लीजिए मदर का कोई और लीगल एयर है, मतलब कोई और वारिस है, तो फिर ये उनको उसको और बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो आता है प्राची और राजेश कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है साल के बीच में वित्तीय वर्ष में, तो उनको उनकी जो रिटर्न जिस डेट तक मृत्यु होती है तो उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल करता है। फिर बीच का एक ऐसा फेज आता है जब उनका अभी तक वारिस अपॉइंट नहीं हुआ होता, तो उस फेज में एस्टेट ऑफ द डिजीज करके फाइल की जाती है, और फिर जब वारिस अपॉइंट हो जाता है तो फिर वारिस के नाम से रिटर्न जाती है। मैं उम्मीद करता हूं अमित आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, मैंने आपको सारे पहलू इसके बता दिए।
1: अमित झा फ्रॉम दिल्ली जॉइंस अस नाउ। अमित झा, वार्म वेलकम।
5: हाँ नमस्कार राजेश सर।
1: नमस्कार
5: कोहली सर। नमस्कार सर।
3: नमस्कार अमित
5: सर। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हालिया दिनों में आप भी जानते हैं सर कि हमारी ऊर्जा पे निर्भरता, जाहिर सी बात है ऑयल एंड गैस हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, ज्यादा है
3: जी।
5: तो ये तो ठीक है सर, बट क्या हम अन्य स्रोतों में अपने देश में कुछ रिन्यूएबल एनर्जी जाएगा इस तरह का है, और कितना प्रतिशत के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी, सौर ऊर्जा, पानी, पनबिजली, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, जो भी ये बढ़ रहे हैं, एक सर बायोगैस की कोई कंसेप्ट अपने यहाँ पे चल सकता है क्या सर? और सर जो आईटी कंपनी अभी भी आईटी के नहीं निकल पा रही है, वो क्लाउड का कब तक खत्म होगा? मुझे तो संभव समझ नहीं आ रहा है सर। धन्यवाद
3: अमित, आपने जो पहला सवाल है, मुझे जहां तक मेरी मेमोरी मुझे सर्व कर रही है, आपने पहले भी पूछा था कि रिन्यूएबल एनर्जी में भारत का कितना योगदान। देखिए, सोलर है, विंड एनर्जी है, बायोफ्यूल है, और इस पे देश में लगातार और बहुत तेजी से काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अगर मैं गाड़ियों की बात करूं, बहुत तेजी से काम चल रहा है, और इसका जो योगदान है वो ओवरऑल में बढ़ता जा रहा है। और अब जो हालात पैदा हुए हैं उसमें मुझे लग रहा है हमने एक्सेलरेटर दबा दिया है कि अब इस पे जहां जहां भी काम चल रहा है इस पे और स्पीड पकड़ ली है। तो आप इस मामले में निश्चिंत रहे, पर अभी क्या है कि ये संकट जैसे अभी 2-2.5 महीने हुए हैं, तो इसमें हम ऐसा नहीं हो सकता कि 2 महीने में हम सब कुछ सोलर पे कर दें, सब कुछ हम बायोफ्यूल पे कर दें, सब कुछ विंड एनर्जी पे चलने लग जाए, गैस की जगह हम कुछ और। और दूसरा आपने बायोगैस के पूछा, बिल्कुल बायोगैस पे काम होता है, बायोगैस तो किसान बनाते हैं, मुझे याद है वो गोबर और अन्य कंपोस्ट उसको बोलते हैं, कंपोस्ट से बनाई जाती है। दूसरा आपने आईटी कंपनीज का पूछा, देखिए अमित ऐसे जनरल में कहना तो बहुत मुश्किल है, कुछ आईटी कंपनीज को वाकई में सेटबैक हुआ है एआई की वजह से और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी से, पर ज्यादातर आईटी कंपनी जो भारत की बड़ी है, क्योंकि हम यहां नाम नहीं लेते तो मैं इसको बहुत स्पेसिफिक तो नहीं बता सकता, पर ज्यादातर आईटी कंपनीज भारत की बहुत बड़े लेवल पर अपने आप को तैयार कर रही हैं इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग चैलेंज से, यानी कि आने वाला जो उनके सामने चैलेंज है उससे सामना करने के लिए। अब ये तो आपका सवाल है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी कंपनी, तो सारी कंपनी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राची राजेश के भी, कांट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश, कि हम सारी आईटी कंपनीज को कह दें कि उनको दिक्कत आ रही है। अब ये तो आईटी कंपनी टू आईटी कंपनी डिफर करेगा, पर आपको मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ज्यादातर जो बड़ी आईटी कंपनीज जिनकी मार्केट कैप बहुत हाई है, उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग में और रोबोट्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत भारी मात्रा में R&D और इन्वेस्टमेंट किया है। मैं वो अपने आप को तैयार कर रही है, ऐसा नहीं है कि सारी भारत के आईटी कंपनीज का बिजनेस बंद हो जाएगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा जब वो अपने प्रोडक्ट्स और टूल्स सामने लाएंगे, मुझे उम्मीद है कि उनका मार्केट वैल्यूएशन भी इम्प्रूव होगा।
0: और जितेंद्र जयपुर से जुड़ रहे हैं, जितेंद्र जी।
6: हाँ सर, अभी जैसे आपने अभी कुछ उत्तर दे दिया हमारा उसी से प्रश्न था, तो हमारा जैसे आईटी सेक्टर में निफ्टी 50 में जो है ना वो क्वार्टरली SIP किया हुआ है
3: जी,
6: तो 1300-1400 रुपया पे था, अभी 1100 रुपया पे भी आ गया, लेकिन मैं सोचता हूँ कि और ऐड कर लूँ, कि आपने अभी जो बताया अपने को तैयार कर रही है हमको लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो कोई गलत तो नहीं है ना सर निफ्टी 50?
3: देखिए निफ्टी 50 में तो जितेंद्र जो निफ्टी की 50 कंपनियां हैं सभी आती हैं, आप शायद निफ्टी आईटी की बात करें, निफ्टी आईटी भी है जिसमें सारी आईटी की कंपनीज आती हैं, तो उसमें जैसा मैंने आपको कहा कि भारत की ज्यादातर कंपनीज जो हैं उन्होंने अपने आप को तैयार किया है बिल्कुल, तो जवाब तो मैंने दे ही दिया कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहते हैं और कंपनीज का चयन अच्छा करते हैं, अगर आपने इंडेक्स में किया हुआ है, इंडाइसिस में किया हुआ है, तो आई थिंक उसमें सभी तरीके की कंपनीज आ जाती है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि लंबे वक्त में ये कंपनीज अपने आप को डूबने नहीं देंगी और ये कंधे से कंधा मिला के चलेंगी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज के साथ, क्योंकि इन कंपनी का जो लेवल है ऑपरेशन का वो बहुत ही ऊंचा है और इनकी मार्केट कैप भी बहुत अच्छी है जी।
1: From Noida, we are joined by Virendra. Virendra, warm welcome.
7: Thank you. Kohli ji, namaskar.
3: Namaskar, Virendra ji.
7: एक बहुत बड़ा इशू मेरे पास है AIS से रिलेटेड
3: जी,
7: आप इसका कोई बढ़िया सा नाम भी देते हैं अभी ध्यान नहीं आ रहा।
3: आईना इसे समझिए।
7: हाँ, आईना इसे समझिए
3: जी।
7: मेरे AIS में एक आ गया है, किसी कंपनी से मैंने कार खरीदी है और मेरा TCS कटा है ओरिक्स कारपोरेशन।
3: अच्छा,
7: और वो 26AS में भी आ रहा है
3: जी,
7: और मैंने कभी कभी आप जो बताते हैं उसमें है उसमें इन्फॉर्मेशन डिनाइड करके मैंने लिख भी दिया है
3: जी।
7: मुझे याद है एक लेडी भी शायद ओरिक कॉर्पोरेशन टाइप का है, बात करके वो बात की थी, मार्केट मंत्रम मेरे यहाँ भी आ गया है
3: जी।
7: तो क्या चीज है, मान लो कोई AIS देखेगा नहीं और ये कंपनी जैसे घपला कर देंगे, इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर इतना कमजोर है कि कोई दूसरा जो डीलिंग है वो AIS में आ जाए।
3: नहीं वीरेंद्र जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि AIS में अगर आ रहा है तो कहीं पैन में या किसी में कोई गलती, और अगर कोई जानबूझ के ये शरारत कर रहा है कि एक ही नाम से कई लोगों के AIS में ऐसा आ रहा है, तो आप जब लोग जब फीडबैक इसमें AIS में फीडबैक देना, मैं प्राची और राजेश को बताना चाहूंगा, AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है, मैंने उसको नया नाम दिया आईना, इसे समझिए, क्योंकि आपके द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन का आईना दिखा देता है। तो मुझे लगता है ये कहीं कोई टेक्निकल एरर है या कोई जानबूझ के अगर शरारत करता है, तो जैसे आप फीडबैक देंगे वीरेंद्र जी, और वो जो महिला

0: जिन्होंने सवाल किया था वो भी फीडबैक देंगी और लोग भी हैं जो फीडबैक देंगे, तो इनकम टैक्स के संज्ञान में आ जाएगा कि अवश्य कोई ऐसा व्यक्ति है जो जानबूझ के ये या तो जानबूझ के अनजाने में गलती हो रही है उसको ठीक कर लिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, अगर आपने कोई गाड़ी नहीं खरीदी है या आपसे संबंधित ये ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसके लिए आपको जिम्मेवार नहीं ठहराया जाएगा। आप बिल्कुल इस बात से निश्चिंत रहें, फीडबैक दें, अगर फिर भी आता है दोबारा मार्केट मंत्रा में कॉल करिए, फिर मैं आपको कोई और नुकता इसका बताऊंगा कि इसको कैसे समाधान पाना है, पर मुझे उम्मीद है आपके फीडबैक का असर होगा। ऐसी कोई धांधलेबाजी नहीं है क्योंकि इसमें एआई और डेटा बेस्ड ऑपरेशन है, इसमें मैनुअल इंटरवेंशन जब आती है वीरेंद्र जी, जब बड़े लेवल पर कोई धांधलेबाजी कोई मिस्टेक सामने आ जाती है। जी
1: मुंबई से हमारे साथ रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, जी अपना सवाल पूछिए।
0: गुड इवनिंग।
2: मेरा सवाल है कि ये जो शेयर मार्केट में शेयर का एसआईपी कैसे चालू कर सकते हैं और उसके लिए कुछ प्राइस निश्चित करके हम शेयर के लिए परचेस करने के लिए या सेल करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं क्या, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल है कि मेरे शेयर समझो मेरे ब्लड रिलेशन में लड़के के नाम पर ट्रांसफर करना है
0: जी।
2: तो उसके लिए क्या प्रावधान है।
0: रत्नाकर जी, पहला सवाल आपका शेयर्स एसआईपी से संबंधित है। देखिए, शेयर्स एसआईपी नाम की कोई ऐसी कोई स्कीम तो चलती नहीं है। शेयर्स एसआईपी जब बताया जाता है तो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तरह बताया जाता है कि आप शेयर्स भी थोड़े थोड़े करके लेते रहें बजाय एक साथ खरीदने के, तो ये तो आपको स्वतः करना पड़ेगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा कि आप एक हफ्ते का या जब जब वो नीचे आए, एसआईपी ऐसा भी होता है जब जब करेक्शन हो, अगर आपने मान लीजिए 15 दिन का या हफ्ते का हमने नियम डाल दिया और मान लीजिए उस टाइम शेयर नीचे नहीं आया, तो बल्कि शेयर्स एसआईपी में तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, आप नजर रखिए उसकी प्राइस चेक करते रहिए, जब भी वो नीचे आए। तो यहां एसआईपी का मतलब वो म्यूचुअल फंड वाली एसआईपी नहीं है जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, यहां पर एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट का तरीके के तौर पर बताया जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके। दूसरा आपने दूसरा पूछा, आपके ब्लड रिलेशन में आप शेयर्स करना चाहते हैं तो एक ट्रांसफर फॉर्म ब्रोकर के यहां मिलता है, उनसे आप फॉर्म लीजिए और एक रिलीज डॉक्यूमेंट आपको फाइल करना होता है अपने डीमैट अकाउंट से, और जिस व्यक्ति के अकाउंट में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उनके अकाउंट में वो तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। बहुत आसान है, आप अपने ब्रोकर से संपर्क करिए, वो आपकी इसमें मदद कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आप उनसे अगर गिफ्ट कर रहे हैं तो कोई पैसा नहीं आएगा, और अगर गिफ्ट नहीं कर रहे हैं तो वो पैसा आपके अकाउंट में वो व्यक्ति ट्रांसफर कर दें। जी
1: श्रोताओं, अब आइए जान लेते हैं कि इस सप्ताह के दौरान हमारे प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर बाजार में 2% से अधिक की गिरावट आई जिससे 2 सप्ताह से जारी बढ़त का सिलसिला टूट गया। पश्चिम एशिया में चल रहे भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, विदेशी निवेशकों की निरंतर निकासी, भविष्य में मुद्रास्फीति को लेकर चिंताओं और चौथी तिमाही के मिले जुले नतीजों के कारण निवेशकों का रुख सतर्क सा नजर आया। सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 2090 अंक यानी 2.7% गिरकर 75,238 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 532 अंक यानी 2.2% लुढ़ककर 23,644 पर आ गया। इस बीच विस्तृत शेयर बाजार में भी गिरावट आई। मिडकैप 100 सूचकांक में लगभग 2.2%, जबकि स्मॉल कैप में 4.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। क्षेत्रीय स्तर पर अगर देखें तो रियल एस्टेट सबसे अधिक प्रभावित रहा और इसमें 8% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद आईटी क्षेत्र की अगर बात करें तो 5.7% की गिरावट आई, जबकि ऑटो और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सूचकांकों में भी सप्ताह के दौरान 4% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया सप्ताह के दौरान 1.49 रूपये गिरकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर यानी 95.97 रूपये पर आ गया। और कार्यक्रम में हम जोड़ रहे हैं कर्नाटका से वीरेंद्र कुमार को। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम, वीरेंद्र कुमार फ्रॉम कर्नाटका। शरद जी, आई हैव टू क्वेश्चंस। One is, I am getting a 20% return in some of the stocks I have invested.
0: Okay.
3: In this uncertain times, is it wise to book the profit? One. Second is in IT, one of the IT stocks, it is 25% minus.
0: Okay.
3: So should I continue to average it?
0: Mr. Virinder, your first question is whether you should book 20% profit which you are. See, I mean, it depends on the goals which you have. if your goals have been achieved, if you had set this target, I'm not sure how long you have been keeping those shares for. So if the goals have been achieved, I think you there'll be no harm in booking profits, although I do feel that the market right now is going through testing times. Mm-hmm. And once it recovers, your profit may also improve. So you have to check how long were you keeping it. If you have kept it for more than 1 year, then maybe I would suggest you should book profit. But if you have recently bought, then your profit is very handsome and you can probably keep it for bigger profits as well. Regarding IT stocks, you know, this, you know, I would like to talk for a minute with the permission of our respected anchors, Prachi and Rajesh. This process of, averaging is not always recommended. A lot of people talk about averaging, that if it's fallen, let me buy some more, because it can let you go into a trap also. So therefore, my advice, Virinder ji, is that you should wait for some time for IT stocks to recover, and do not average. Rather than averaging, try and use this money for buying more attractively valuated stocks. So I'm not a great fan of averaging, because I've seen a lot of people falling into the trap. Then they are not able to recover. In fact, they sink in more money into. Mm-hmm. So therefore, I'll not very strictly favor averaging. You can use the money for other stocks.
4: From Chennai, we are joined in by Krishnamurthy. A warm welcome.
5: I have two short questions. One is, the dividends declared by companies earlier, the limit in which tax is not deducted was 5,000. Has there been an increase in that? Second question is, what is the new form for 15G and 15H? And what is the year? Earlier it used to be financial and assessment year. What is the current position when we file the form?
4: Mr. Krishnamurthy, would you repeat your first question?
5: First question was, the tax, when dividends are declared by companies, TDS is not deducted up to a limit of 5,000 earlier. Has it been increased?
4: Okay. Has dividend...
0: No, there is no increase, Mr. Krishnamurthy. Dividends continue to be deducted on the thing. And if it is deducted, Mr. Krishnamurthy, you must be aware that you can always claim it as a credit in your taxable income. Your income is not taxable, you can claim a refund. If there is taxable, this would be adjusted in your remaining incomes for that matter. Yes.
1: आगे बढ़ते हैं, बैंगलोर से हम जो
4: हैं. We also, sorry about that, 15G and 15H. Asked about that.
0: So 15G and 15H, I think you will have to file if you're retired and you do not, although the form numbers have been changed now, if you're retired and your income is below taxable, mm-hmm. you should file that, with your bankers or wherever you're collecting. But if you are once you go to the banker, Mr. Krishnamurthy, they will give you the new form. So I think form number is not as relevant as the action which is needed. Basically, it is meant for a person where you're not taxable. You inform the other person that, yes, I'm not taxable, so you should not deduct tax at source. So you may please visit, I don't know from which source your tax is being deducted. If it's a banker, please go. They will hand over a new form to you and you can submit that form, with those guys.
1: Bilkul Sharad, aur agla sawal hum lenge NR Prasad se, jo ki Bangalore se hain.
6: Hi, good evening, Market Mantra. This is NR Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Prachi ji.
4: Hello, Mr. Prasad.
6: Sharad ji, one question, but it's got two parts.
0: Yeah.
6: I got ESOPs.
0: Yeah.
6: Those ESOP quantities at the moment, it is almost zero value, that is. Okay. I also bought the same company shares also subsequently.
0: Yeah.
6: You know what's happening is, whenever I sell, ESOPs getting sold because on FIFO. Okay. Now, that has got some quantities, still I'm having it with zero value and some more with a higher average.
0: Yeah.
6: Now, some of the quantities of the ESOPs, I'm transferring it to my son.
0: Yeah.
6: Okay. My question is, when he gets it, would he also get as a zero value? And the second thing is, he also has the same companies, but he is in a higher value. So, when he sells, first that higher value will go up. Followed by that is, he gets a full profit when he comes to that ESOP value, which is transferred by me. So this is my query, whether when I transfer these ESOPs to him, whether the same zero value will continue to him.
0: All right.
6: And second thing is, when he sells it, when he gets the full profit. Thank you. These are my questions.
0: All right, Mr. Prasad, good to have you back, first of all. You know, it's a pleasure having you back at all times. I think as far as ESOPs are concerned, when you're transferring it at zero value, by the way, Mr. Prasad's question is a very, very technical question. And I think, you know, not many people who are listening may be able to understand unless you've got a similar problem. So ESOPs, yes, zero value would get transferred to zero value. So the rule in income tax is that the person who's selling, the cost to previous owner in a gift is the cost. So if it is zero, it will be a zero to him also. As far as FIFO is concerned, FIFO is first in, first out. So if they are getting sold by FIFO, you will have to pay tax as per the shares picked up by the system.

0: So if they're getting picked up on FIFO method, you will have to pay tax on the basis of, so for example, if a higher value share gets sold first, you will have to pay. So you'll have to keep track of the certificate number on which shares are being sold. And same goes for your son when you're transferring it to your son. If it is of higher value or gets sold before his own ESOP, so it'll be as per basically the shares being sold, the selling price minus the cost of acquisition. If it is there and if it is zero, it with the full amount, there'll be no tax for that matter. Mr. Prasad.
1: Moving on, the US equities finished under pressure yesterday as a retreat in technology stocks and rising benchmark treasury yields dragged major indices into the red. The Nasdaq Composite Index plunged more than 1.5%, the S&P 500 lost over 1.2%, and the Dow Jones Industrial Average slipped nearly 1.1%. Over the week, the Nasdaq and the Dow declined marginally, while the S&P 500 eked out a small gain, marking its seventh straight weekly advance. Meanwhile, investors were disappointed following the conclusion of the summit between Donald Trump and Xi Jinping, as no major deals have been announced. And also, the crude oil prices gained over 3% yesterday as combative comments from the US president and Iran's foreign minister faded hopes for reopening of the Strait of Hormuz. By the close, Brent crude July futures settled over 3.3% up at $109.26 per barrel, while the West Texas Intermediate June futures climbed 4.2% to end at $105.42 per barrel. Over the week, Brent surged more than 7.8% and WTI soared nearly 10.5% on uncertainty over the shaky ceasefire in West Asia.
2: Bile se hamare saath Ravi Narayan jud rahe hain. Ravi ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
3: नमस्ते सभी को, शरद जी को नमस्ते. एक बड़ा फनी सा सवाल पूछ रहा हूँ
0: जी.
3: एक सारे विंडो जिसके क्लोज हो गए हो, एज बार्ड हो, एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं एंट्री ना हो, वो इसको शेयर मार्केट को अपना आजीविका का साधन बना सकता है? तो यदि बना सकता है तो सेफेस्ट मोड क्या होगा?
0: रवि जी, पहली बात तो सवाल फनी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सवाल आपका रेलेवेंट है और बिल्कुल बना सकते हैं अगर आपकी रिसर्च पूरी है, आपने उसके बारे में स्टडी पूरा किया है.
2: बिल्कुल.
0: तो मैं आपको सलाह दूंगा किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में आप इस काम को करें. तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होती है, तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में करें, क्योंकि जब आप ऐसे हालात में हैं तो आपके पैसा और ज्यादा बहुमूल्य हो जाता है. और तो मैं आपको सलाह दूंगा, खुद रिसर्च करिए, स्टडी करिए और पहले आप पेपर मनी से शुरू करिए. मैंने पहले भी एक बार कही थी, पेपर मनी से ट्राई करिए, देखिए आपका कितना एक्यूरेट बैठ है, और उसके बाद आप इसको ट्राई करिए. पर किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में शुरू में मैं आपको सलाह दूंगा, रवि जी इसको करें जी.
2: और कोलकाता से हमारे साथ अतानु शाह जुड़ रहे हैं. कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
4: शरद कोहली जी, मेरा प्रणाम.
0: प्रणाम.
4: मेरा जल्दी बोलना होगा. मेरा क्वेश्चन है, मैंने साढ़े तीन साल पहले मैंने कुछ पैसा 78 रुपीज डॉलर मैंने भेजा था, 80,000 रुपीज टू फॉर नैस्डैक परचेज, नैस्डैक मार्केट परचेज सम अदर कंपनी. सर मेरा प्रश्न यही है कि इसके लिए मैंने तो W8 और W9 जो है वो मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था पिछले साल में सर. इसके लिए इज इट सर मार्केट, इज इट द मैटर ऑफ एनी इन्फॉर्म टू अवर टैक्स डिपार्टमेंट सर?
0: जी हाँ तानू जी, मैं संक्षेप में दूंगा, समय कम है. बिल्कुल आपको यहां इन्फॉर्म करना चाहिए. आपको भारत में इनकम टैक्स रिटर्न में कॉलम होता है, आपका विदेशी निवेश आपको बताना पड़ता है, इनकम फ्रॉम फॉरेन एसेट्स जो आप होल्ड करते हैं, बिल्कुल आपको दिखाना चाहिए, वरना वो ऑफेंस माना जाता है जी.
2: शरद जी, कार्यक्रम में आने, हमारे तमाम श्रोताओं के तमाम सवालों के तमाम जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस शरद.
0: माय प्लेजर. थैंक यू.
1: एंड बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन. Prime Minister Narendra Modi addresses Indian diaspora in Netherlands, highlights their role in deepening bilateral ties. Benchmark domestic indices tumble over 2% this week, and global crude oil prices surge as combative comments from US and Iran dim hopes of de-escalation in West Asia. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाह

0: वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी के दलदल में जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दौरे के तीसरे चरण में कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के पास गणना प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करने का विकल्प भी होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की भी समीक्षा की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आत्मनिर्भरता भारत की अगली पीढ़ी की विकास यात्रा तय करेगी। नई दिल्ली में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश क्वांटम तकनीक, डीप टेक फाइनेंसिंग और उद्योग आधारित शोध के जरिए नवाचार संचालित विकास के नए दौर की ओर बढ़ रहा है। कार्यक्रम में अनुसंधान विकास, नवाचार, आरडीआई निधि योजना के तहत 5 परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद कोलकाता के लिए यह मैच प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with

0: चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा, भारत नीदरलैंड संबंधों में नया अध्याय पर चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक सज्जनहार, जो कि पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर अशोक, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
0: अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नीदरलैंड्स में हैं और बहुत ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड्स में क्या कहा।
2: साथियों, आज का भारत एक अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आपने हाल में देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी और सफल AI समिट भारत ने आयोजित की। उससे पहले G20 की सफल समिट भी भारत ने आयोजित की थी, और ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था। ये आज के भारत का मिजाज बन गया है। दुनिया का सबसे बड़ा यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम भारत ने चलाया। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम में से एक भारत ने चलाया। जिस स्केल पर भारत डिजिटलाइजेशन कर रहा है वो अभूतपूर्व है। दुनिया की सबसे बड़ी गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भारत चला रहा है। और हाँ, चांद पर भी भारत वहां पहुंचा जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया था।
0: ऐसे समय में जब तमाम हम चीजें देख रहे हैं, वर्ल्ड में कई सारी चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण है और इसके मायने क्या हैं?
1: विश्व में बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा जो ये वाला जो दशक है शायद ही आपदा का दशक माना जाएगा, डेकेड ऑफ क्राइसिस माना जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा यहाँ पर आपदाएं आई हैं। एक तो पहले कोविड आया, उसके बाद युद्ध आया, और अभी हम देख रहे हैं जो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्या पूरे विश्व में बहुत इसमें तंगी आ रही है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री की 5 देशों की यह यात्रा है, 15 मई से 20 मई तक ये हो रही है। कल प्रधानमंत्री यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में थे, अबू धाबी में थे, वहां पर उनके राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। केवल 2.5 घंटे का वहां पर उनका पड़ाव था, परंतु बहुत ही जिसे कहा जाए ठोस बात हुई और अपने संबंधों को बहुत तेजी से आगे लेकर जाया गया। और 4 देश जो हैं वो यूरोप के देश हैं। नीदरलैंड्स पहला पड़ाव है जहां पर कि वो आज हैं, और कल यहां से स्वीडन में जाएंगे, फिर स्वीडन के बाद 2 दिन वहां पर रुककर गोटेनबर्ग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग को एड्रेस करेंगे, और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टसन जो कि मोदरातना पार्टी से हैं उनके साथ उनकी बातचीत होगी। उसके बाद वो नॉर्वे जाएंगे ओस्लो में, जहां पर कि उनकी बातचीत होगी नॉर्वे के प्रधानमंत्री जॉन स्टोर के साथ, और वहां पर भी जैसे नीदरलैंड्स में उनकी मुलाकात हुई है अभी वहां के राजा और रानी के साथ, वहां नॉर्वे में भी वहां भी उनके किंग और क्वीन के साथ उनकी मुलाकात होगी। वहां पर नॉर्डिक समिट भी वहां पर ऑर्गेनाइज करेंगे, और उसके बाद आखिरी पड़ाव होगा उनका इटली में 19 और 20 तारीख को। और सभी जगह जहां जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने द्विपक्षीय संबंधों को तो उसमें और ऊर्जा मिलेगी, परंतु मेरे विचार से एक संदेश पूरे विश्व को भी जाएगा, जो भारत जो बदलता हुआ परिपेक्ष है उसमें बहुत ही एक्टिव है और अपने हितों को आगे ले जाने के लिए बहुत तेजी, बहुत ऊर्जा और बहुत सक्षमता से काम कर रहा है।
0: अशोक जी, आज प्रधानमंत्री ने बोला है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार आपूर्ति व्यवस्था बनाने पर मिलकर काम कर रहे हैं। एक बड़ा स्टेटमेंट है उनका ये। आपको क्या लगता है कि कोविड महामारी और जो जारी संघर्ष है, ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियां हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है?
1: देखिए, बहुत ऐसे विषय हैं जिनमें कि हम नीदरलैंड के साथ अपने संबंधों को, सहयोग को बढ़ाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो। जैसे हमारे सेक्रेटरी वेस्ट ने कल जब उन्होंने इसके ऊपर बातचीत की, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है उसको फोकस कहां पर रहेगा, तो उन्होंने कहा 3 T's पर रहेगा, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टैलेंट, क्योंकि हमारा टैलेंट वहां पर हर यूरोप के देश में जाता है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहां से जाते हुए कही, उन्होंने कहा ये जो सारा उनकी यात्रा हो रही है 4 देशों में, यूरोप के देशों में, वो इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि बिल्कुल ही एक ऐतिहासिक सहयोग जो अग्रीमेंट है, वो इस साल के पहले 26 जनवरी को उसको पूरा किया गया, आपके सभी सुनने वालों को ये मालूम होगा बातचीत की शुरुआत, नेगोशिएशंस की शुरुआत 2007 में हुई थी, तो मतलब 19 साल के बाद इसको हम तोड़ तक पहुंचा पाए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व में जो बदलाव हो रहा है सबको चाहिए और यही प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा, जो हमको सप्लाई चेन्स ऐसी चाहिए जो कि रिलायबल हों, जो कि स्टेबल हों, जो कि ट्रांसपेरेंट हों, और दोनों ये बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन से ऊपर है, यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को अगर देखा जाए तो उनकी पूरी अर्थव्यवस्था करीब $20 ट्रिलियन के आसपास है, तीसरी सबसे विश्व में बड़ी अर्थव्यवस्था है, और जो इनका सहयोग होगा तो इन देशों के लिए बेहतर तो होगा परंतु पूरे विश्व में व्यापार को स्टेबिलाइज करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होगा।
0: अशोक जी, अभी आपने 3 T's का जिक्र किया और यूरोप की जब हम बात करते हैं तो लगातार बदलते हुए व्यापार नियम देखने को मिलते हैं, कार्बन टैक्स, सप्लाई चेन की बात होती है, जलवायु परिवर्तन, जल प्रबंधन और इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो भू राजनीतिक चुनौतियां हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी भी चर्चा में एक एजेंडा के केंद्र में रहती हैं। तो भारत और नीदरलैंड्स अपने साझेदारी को ऐसे में किन रणनीतिक स्तर तक ले जा सकते हैं?
1: इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, ये उसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, परंतु हमको ये भी देखना है क्योंकि अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमारे अपने हित में है, और आपने देखा होगा जो चाहे वो SDG 2030 के हो या फिर हमने अपना जो एक कमिटमेंट दिया है कार्बन फ्री, कार्बन न्यूट्रल अपनी इकोनॉमी को बनाएंगे बाय 2070, और हमने बहुत सारे ऐसे मापदंड किए हैं जो कैसे हम ग्रीन एनर्जी 2030 तक हम कैसे अपने 45% एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को हम ग्रीन एनर्जी के द्वारा करेंगे। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी, आपको याद होगा 2015 में जब कॉप पेरिस में हुआ था, तो वो एक क्षेत्र है जिसमें हम आगे चल रहे हैं। दूसरा टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र है, और जो इंडो पैसिफिक है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने अपना एक पोजीशन दिया है इंडो पैसिफिक के ऊपर जिसमें वो कहते हैं जो हमको फ्री, ओपन, स्टेबल, प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक की मांग है उनकी। नीदरलैंड्स तो अपनी गाइडलाइंस उन्होंने दी है, इंडिपेंडेंटली दी है 2020 में, और भारत का जो स्टांस है वो बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, और इसीलिए उसमें हम उनके साथ सहयोग करते हैं। और टेक्नोलॉजी जहां बात है, स्टार्टअप्स की जहां बात है, भारत बहुत इसमें अग्रणी श्रेणी में आ गया है, बहुत तेजी से इसमें काम कर रहा है, और चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो UPI हो जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, जो करीब विश्व में जितना भी ये डीलिंग होती हो कैशलेस ट्रांजैक्शंस की, तो उसमें विश्व में आधे से ज्यादा भारत में होती है हमारे यहाँ, तो हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और इन सब में जो यूरोपियन देश हैं ये सब ही बहुत ही अग्रणी श्रेणी में हैं, और इनके साथ काम करके दोनों देशों के हितों को बहुत फायदा हो सकता
0: है। अशोक जी, भारत और स्वीडन की अब हम बात करते हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगले अपने दौरे में स्वीडन पहुंचेंगे, तो वहां भी साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की बात जरूर होगी, तो इस यात्रा से क्या चीजें निकल करके आने वाली है अगर मैं तकनीकी निवेश, रणनीतिक सहयोग और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों की बात करूं?
1: जहां तक टेक्नोलॉजी है और इनोवेशन है उसमें तो बिल्कुल सबसे आगे है, अग्रणी है, रक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत आगे है, और अभी हमने ये 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उसमें उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है साब, जो कि ग्रिपन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, उनका यहां पर अभी पिछले साल इन्वेस्टमेंट हुआ है भारत में, जो कि हमारे रक्षा के संबंधों को बहुत आगे लेकर जाएगा। ग्रीन ट्रांजिशन में भी हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं स्वीडन के साथ, और इनको आगे और जोर मिलेगा क्योंकि यहां पर अभी जब बातचीत होगी, जैसे मैंने कहा गोटेनबर्ग में एक समिट को एड्रेस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन, उसके साथ साथ यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेन वो भी वहां पर होंगी, उनसे भी बातचीत होगी, तो जो हमारा इंडिया EU फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसको भी आगे कैसे ले जाया जाए, इस क्षेत्र में कैसे आगे ले जाया जाए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। देखिए, ये वाले देश हैं जो नॉर्डिक कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, 5 देश हैं, आइसलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है और डेनमार्क है, इनके पास ये छोटे देश हो, उनकी छोटी जनसंख्या हो, छोटा इनका क्षेत्रफल हो, परंतु टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये बिल्कुल ही अग्रणी है। और स्वीडन तो और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो पहला इंडिया नॉर्डिक समिट हुआ था वो 2018 में स्वीडन ने ऑर्गेनाइज किया था, दूसरा वाला 2022 में डेनमार्क में हुआ था, और अभी जब नॉर्वे में फिर से तीसरा इंडिया ईयू नॉर्डिक समिट होगा तो इसमें पांच देश मैंने गिनाए हैं उन सभी देशों के प्रधानमंत्री वहां पर आएंगे, उनसे बातचीत होगी और अपने संबंधों को इन

0: सभी क्षेत्रों में
1: जी
0: आगे कैसे और ले जाया जाए और कैसे गहरा किया जाए उसके ऊपर बातचीत होगी।
1: अशोक जी, बदलती हुई जो हमारी ब्लू इकोनॉमी जिसमें हम तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल की बात हो, सस्टेनेबल फिशरीज की हम बात करते हैं, ऑफशोर विंड और ग्रीन शिपिंग जो कि आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में नॉर्वे के साथ हमारी जो साझेदारी बढ़ रही है उसको और प्रगाढ़ करने में प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, जहां तक आप नॉर्वे की बात करते हैं और स्वीडन और फिनलैंड भी काफी हद तक उसी क्षेत्र में आते हैं, डेनमार्क भी उसी क्षेत्र में आता है, ये सब देश वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो चलते हैं। नॉर्वे में फॉसिल फ्यूल्स, गैस, ऑयल बहुत अधिक मात्रा में है जो कि उनके नॉर्थ सी से वहां से ऑफ सी जो उनके एक्सप्लोरेशन है उससे लेकर उसका वो प्रयोग करते हैं। आपके सुनने वालों को ये मालूम होगा जो जब रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप ने रूस से तेल लेना, गैस लेना बंद कर दिया था
1: जी,
0: तो तब नॉर्वे और डेनमार्क से बहुत मात्रा में यूरोप के देशों को ये सप्लाई हुआ था। और नॉर्वे में 95% से ज्यादा जो वहां पर वाहन हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, मतलब वहां पर फॉसिल फ्यूल के से नहीं चलते हैं। और इसीलिए जब हम भी अपनी एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लू इकोनॉमी की आपने बात की है और ब्लू इकोनॉमी में भी नॉर्वे बहुत ही अग्रणी है। फिशरीज में वो बहुत ही उसको माहिरता हासिल है। हमारे अपने क्षेत्र में तो हम जिसे कहा जाए पायरेसी है, मरीन डोमेन अवेयरनेस है, साउथ चाइना सी में है जिसमें हम क्वाड के माध्यम से हम सहयोग करते हैं और देशों के साथ, तो ये इन देशों के साथ भी उन्होंने कैसे इस दिशा में उन्होंने कैसे प्रगति की है उसको हम देख सकते हैं, उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। जब हम एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे थे तो हमारे लिए वाटर सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और वाटर के मामले में चाहे नीदरलैंड्स हो, नॉर्वे हो, फिनलैंड, ये सभी देश, स्वीडन हो, इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रगति की है जिनके साथ हम बड़ा अच्छा अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं।
1: जी अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के अंतिम चरण में इटली पहुंचेंगे और इटली के साथ हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको नई गति मिली है हाल के वर्षों में, तो ऐसे में शिप बिल्डिंग की बात हो, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में काम करने की बात हो, तो इटली के परिप्रेक्ष्य अगर मैं आपसे पूछूं तो इस दौरे का प्रधानमंत्री का क्या महत्व है?
0: जी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हम 2023 में, क्योंकि जॉर्जिया मलोनी वहां के प्रधानमंत्री हैं
1: जी,
0: उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री मोदी के, अगर देखा जाए 2023 से लेकर अभी तक 2026 तक 3 सालों में दोनों प्रधानमंत्री करीब 7 बारी एक दूसरे से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल में 3 बारी वहां पर गए हैं परंतु ये पहली बार उनका द्विपक्षीय वहां पर दौरा है, तो इसीलिए इसके ऊपर भारत और इटली के सहयोग को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि इटली सबसे एक बड़ी अर्थव्यवस्था है यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी इससे बड़े होंगे परंतु इटली भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है, उससे हमारा सहयोग बड़ा अच्छा होता जा रहा है। अगर आप देखें यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन हुए 2024 में, तो वहां पर जर्मनी की पार्टीज हैं, फ्रांस की पार्टीज हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाई परंतु जॉर्जिया मेलोनी की जो पार्टी है उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, तो उनकी शक्ति जो है यूरोप में वो काफी बड़ी है। और भारत और इटली के बीच में चाहे वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात, तो उसमें भी प्रधानमंत्री मेलोनी बहुत ही एक्टिवली एंगेज्ड है, क्योंकि जो इटली के यहाँ पर मैरिटाइम एरियाज हैं, वेनिस है, जेनोवा है, फ्लोरेंस है, बहुत ही ये महत्वपूर्ण इसमें काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री की यात्रा हमारे दोनों देशों के संबंधों को और यूरोप और भारत के संबंधों को आगे ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देगी।
1: अशोक जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद निखिल जी।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:26 हो गए हैं और एफएम गोल्ड पर ये समय है कार्यक्रम सांझ ढले का। आज की शाम सांझ ढले में मैं हूँ आपके साथ रेशमा, और आपको सुनवा रही हूँ ये पहला गीत सांझ ढले में फिल्म बंदिनी से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर है।

जी हाँ, आकाशवाणी का एफएम गोल चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है सांझ ढले, और सांझ ढले में मैंने आपको अभी कुछ देर पहले गीत सुनवाया फिल्म बंदिनी से, लता मंगेशकर की आवाज में। इस फिल्म से गीतकार और शायर गुलजार का फिल्मी सफर शुरू हुआ था, और इस फिल्म में एसडी बर्मन की धुन के लिए गीत लिखने वाले गुलजार ने आगे चलकर उनके बेटे आरडी बर्मन के लिए भी गीत लिखे। आरडी बर्मन ने एक इंटरव्यू में ये बात बताई भी थी कि गुलजार के बोलों पर धुन सजाना बड़ी टेढ़ी खीर होती थी, क्योंकि उनके गीतों का मीटर ही अलग होता था। और लेकिन बावजूद इसके कुछ बेहतरीन गाने इस जोड़ी ने दिए हिंदी फिल्म संगीत जगत को। मसलन फिल्म आंधी का ये अगला गीत, जिसकी धुन असल में पंचम दाने एक बांग्ला गीत के लिए बनाई थी, लेकिन गुलजार ने सुनकर कहा कि इस धुन पर एक गीत मैं बनाऊंगा, और फिर बना ये गाना।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम सुन रहे हैं आप सांझ ढले, जिसमें मैं हूँ आपके साथ रेशमा। और मैंने आपको अभी गीत सुनवाया फिल्म आंधी से, जिसमें संगीत था आर डी बर्मन का और गीत लिखा था गुलजार ने। अगला गीत एक बार फिर गुलजार का लिखा और संगीत पंचमदा का, फिल्म इजाजत से आशा भोसले की आवाज में। और इस गीत के साथ सांझ ढले का ये सफर यहीं तक होगा, क्योंकि इसके बाद 7:45 पर FM गोल्ड पर समय हो जाएगा प्रादेशिक समाचारों का। तो उसके बाद हम मिलते हैं आपको 8:10 पर फिर मधुरिमा में। फिलहाल सुनते हैं इजाजत फिल्म से ये गीत।

0: राजधानी क्षेत्र में एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट दर को 25% से घटाकर 7% किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने 101 जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए जल संचय अभियान की शुरुआत की। राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। दिल्ली पुलिस ने जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और आईपीएल क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने कल सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF पर वैट दर को 25% से घटाकर 7% कर दिया है। ये रियायती दर प्रारंभिक दर पर 6 महीने की अवधि के लिए लागू की जाएगी। इस फैसले से एयरलाइन कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी और आम यात्रियों को भी सस्ती हवाई यात्रा का फायदा मिल सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज डिस्ट्रिक्ट पार्क पश्चिम विहार से जल संचय अभियान की शुरुआत की। ये कार्यक्रम दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य 30 अगस्त तक राजधानी में 101 महत्वपूर्ण जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस पहल के पहले चरण में लगभग 383 एकड़ के क्षेत्र में फैले 101 चिन्हित जल निकायों का पुनरुद्धार किया जाएगा। इनमें द्वारका जोन के 22, दक्षिण जोन के 13, रोहिणी जोन के 17 और नरेला जोन के 6 जल निकाय शामिल हैं। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने शहर में दीर्घकालिक जल सुरक्षा, भूजल पुनर्भरण और पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ये पहल केवल सौंदर्यीकरण का एक प्रयास मात्र नहीं है, बल्कि पारिस्थितिक बहाली और सतत शहरी विकास की दिशा में केंद्रित प्रयास है। साथ ही उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय सीमाओं का कड़ाई से पालन करें और सभी जीर्णोद्धार स्थलों पर कार्य निष्पादन के उच्चतम मानकों को बनाए रखें। श्री संधू ने लोगों से जन भागीदारी के माध्यम से इस अभियान में शामिल होने और अधिक हरित तथा जल सुरक्षित विकसित दिल्ली के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली लगभग 500 मेधावी छात्राओं को साइकिलें वितरित की। इस अवसर पर श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये बेटियां अपने परिवार, पूरे राष्ट्र के सपनों और संकल्पों की वाहक है। उन्होंने कहा कि ये पहल छात्राओं को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी तथा अभिभावकों की चिंताओं को भी कम करेगी, जिससे उनकी बेटियां बिना किसी बाधा के अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ सके। मीडिया से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हम सभी से ईंधन बचाने की अपील की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे अपील की है ईंधन की बचत करें। उसके बहुत सारे तरीके हैं। मुझे खुशी है कि आज के इस कार्यक्रम में जो आज इन बेटियों को साइकिल दी गई है, ये भी उस पूरे परिवार के काम आने वाला साधन है, जिससे ईंधन की बचत भी होगी और एक बहुत ही स्वायत्तता उस बेटी को मिलेगी जो अपने घर से स्कूल तक जाने के लिए अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगी, वो अपनी साइकिल के साथ खुद आगे बढ़ेगी।
0: राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। उत्तर रेलवे ने कहा कि इस आधुनिकीकरण के अंतर्गत नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग आधारित सिग्नलिंग प्रणाली लागू की गई है। एक रिपोर्ट।
3: रेलवे ने बताया है कि इस स्वचालित प्रणाली से ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुरक्षित, तेज और सुगम हो गई है, जिससे भविष्य में रूट की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इनमें आधुनिक सिग्नल तकनीक, स्वचालित असफल सुरक्षित सुविधाएं और AI आधारित उन्नत निगरानी व्यवस्था शामिल है, जो दुर्घटनाओं की आशंकाओं को कम करती है। ये पहल दिल्ली मंडल में सिग्नलिंग बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही यात्रियों और मालगाड़ियों दोनों के लिए सुरक्षित तथा अधिक कुशल ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने की भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपनी विधानसभा के सेक्टर 9 स्थित लेक व्यू अपार्टमेंट्स में RMC सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। साथ ही विश्वा अपार्टमेंट और स्टार अपार्टमेंट में वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र का उद्घाटन किया। इसके अलावा श्री गुप्ता ने अपने आवास में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज नरेला भवाना मार्ग पर 9.5 किलोमीटर की सड़क पर 55 करोड़ की लागत से बनने वाले प्री कास्ट आरसीसी नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये परियोजना आधुनिक प्री कास्ट तकनीक पर आधारित है, जिससे निर्माण कार्य तेजी से पूरा होगा और गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग मंत्री ने नांगलोई जाट विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय विधायक मनोज शौकीन और क्षेत्रवासियों द्वारा बताई गई समस्याओं को श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि वे सभी आवश्यक कार्य जल्द शुरू कर जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वस्तु और सेवा कर जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त आयुक्त रवि कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी फर्जी कंपनियां चलाकर जीएसटी रिटर्न, नकली बिलिंग और गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 128 करोड़ रुपए के नकली जीएसटी लेनदेन किए गए। जांच के दौरान पुलिस ने लगभग 51 लाख करोड़ रुपए नकद, 15 मोबाइल फोन, 2 कारें, फर्जी बिल और सिम कार्ड बरामद किए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे के वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्नपत्रों तक पूरी पहुंच थी। इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली का उपयोग किया है। नोटिस में सीबीएसई ने कहा है कि जो छात्र अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं है वे 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। एक रिपोर्ट।
4: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन जमा किए जाने चाहिए और प्रत्येक चरण के लिए केवल 1 आवेदन स्वीकार किया जाएगा। अनुपम और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज 11 कुलपतियों और लगभग 96 स्कूलों के प्रधानाचार्यों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक संवाद कर मेरा भारत मेरा योगदान अभियान को लेकर चर्चा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि इस संवाद का उद्देश्य केवल नियुक्तियों पर चर्चा नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों और युवाओं को इस जन अभियान का सहभागी बनाना है, जिससे छोटे छोटे प्रयास भी देश हित में बड़े बदलाव का माध्यम बन सके। उन्होंने इस दौरान विद्यालयों के बुनियादी ढांचे, आधुनिक कक्षाएं, छात्र सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा और बेहतर शिक्षा के वातावरण को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी ने सभी विभागों को सरकारी वाहनों का सीमित उपयोग सुनिश्चित करने और ईंधन बचत उपायों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। ये निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के आह्वान के बाद आया है। राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग और लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने अपने निजी काफिले से पायलट वाहन को हटा दिया है। लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग से 9 वाहन और लोक निर्माण विभाग भवन और सड़क शाखा से 8 वाहन तत्काल वापस लेने के आदेश जारी किए गए। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है।

0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मॉनसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है।
1: यह दिवस मच्छरों के प्रजनन को रोकने के उद्देश्य से सरल नियंत्रण रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसमें रुके हुए पानी को हटाना और जल भंडारण टैंकों का उचित रखरखाव शामिल है। डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए मई के महीने को मॉनसून से पहले जागरूकता गतिविधियों का मुख्य महीना घोषित किया गया है। मंत्रालय जुलाई माह को डेंगू विरोधी माह के रूप में मनाता है, जिसके दौरान देशव्यापी स्तर पर निरंतर जागरूकता और रोकथाम अभियान चलाए जाते हैं। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर हमें इस बीमारी को हराने के अपने संकल्प को और अधिक दृढ़ करना होगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि घर के आसपास पानी जमा न होने पाए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने नागरिकों को कहा कि डेंगू के लक्षणों, बचाव और समय पर उपचार के प्रति जागरूक बने और अपने परिवार तथा आसपास के लोगों को भी इसके प्रति सचेत करें, साथ ही अपने घर और आसपास स्वच्छता बनाए रखें, कहीं भी पानी जमा न होने दें और मच्छरों से बचाव के सभी जरूरी उपाय अपनाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली सरकार कल घिटोनी गांव में नवनिर्मित तरला मोहल्ला चौपाल और बाल्मीकि बस्ती चौपाल का लोकार्पण करेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेज साहिब सिंह ने कहा कि ये आयोजन गांव के विकास और जन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। दक्षिणी दिल्ली के नेहरू प्लेस डाकघर में सोमवार को 11 बजे से एक दिवसीय डाक चौपाल का आयोजन किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिधोड़ी ने कहा कि इस डाकघर का आधुनिकीकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि अब डाकघर में पोस्टल, बैंकिंग, बचत खाता और बीमा के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अरुण जेटली स्टेडियम में कल आयोजित होने वाले आईपीएल क्रिकेट मैच के मद्देनजर सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ा दिया है, जिससे मैच के बाद वापसी में यात्रियों को सुगम यातायात मिल सके।
2: मेट्रो में सफर करने वाले यात्री डीएमआरसी की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया पर समय बदलाव की जानकारी ले सकते हैं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने भी यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात पुलिस ने बताया कि बहादुर शाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग पर शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक यातायात बाधित रहेगा। इसके साथ ही दरियागंज से दिल्ली गेट चौक से गुरु नानक चौक और आईटीओ से दिल्ली गेट चौक पर किसी भी भारी तथा व्यावसायिक वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी। आदित्य की रिपोर्ट के समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेज दिया। राजधानी में आज दिन भर मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट दर को 25% से घटाकर 7% किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने 101 जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए जल संचय अभियान की शुरुआत की। राजधानी के किशनगंज रेलवे स्टेशन पर लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। दिल्ली पुलिस ने जीएसटी धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और आईपीएल क्रिकेट मैच के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने कल सभी लाइनों पर आखिरी मेट्रो के समय को बढ़ाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्रवाई, फैसला या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मनीषा गुरुनाथ मंधारे महाराष्ट्र के पुणे की वरिष्ठ वनस्पति विज्ञान शिक्षिका हैं। उन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी के पास वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान के प्रश्न पत्रों तक पूरी पहुंच थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने इस वर्ष 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए पूरी तरह से विद्यालय आधारित तथा आंतरिक मूल्यांकन होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बीच में ही स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले, विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एकीकृत कृषि के व्यापक प्रचार प्रसार और विस्तार पर विशेष बल दिया है और कहा है कि किसानों को इसे व्यावहारिक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की व्यय वित्त समिति से संबंधित एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री सिंह ने ये बात कही। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 56 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten. He called on King Willem Alexander and Queen Maxima in The Hague this afternoon. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, Prime Minister said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis.

पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड है ये और समय हुआ है 8:11 यानी समय है कार्यक्रम मधुरिमा का। मधुरिमा में मैं हूं आपके साथ रेशमा और श्रोताओं, आज मधुरिमा में हम चर्चा करेंगे राग सोहनी की और सुनेंगे उसी राग पर आधारित या उसकी झलक लिए हुए गीत। तो आरंभ करते हैं कार्यक्रम 1960 में आई फिल्म करोड़पति के इस गीत से जिसे गाया है आशा भोसले ने।

शांत मौन और सुखद वातावरण का आभास कराता है राग सोहनी, जिसे भोर से पहले देर रात तक गाया जाता है। मध्य और तार सप्तक में गाए जाने पर इसके माध्यम से गहन भावनाएं व्यक्त होती हैं। राग सोहनी के स्वर राग मारवा और राग पूरिया के समान हैं, सिवाय इसके कि आरोह में इसके ऋषभ वर्ज्य है। आइए सुनते हैं इसी राग पर आधारित संगीत सम्राट तानसेन फिल्म से अगला गीत, जिसे गाया है मुकेश ने। संगीत है इसमें एस एन त्रिपाठी का और बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 8:19 हो गए हैं और कार्यक्रम चल रहा है इस समय मधुरिमा, जिसमें मैं हूं आपके साथ रेशमा और आपको सुनवा रही हूं राग सोहनी पर आधारित या इसकी झलक लिए हुए कुछ फिल्मी गीत। तो श्रोताओं, राग सोहनी की उत्पत्ति मारवा थाट से मानी गई है और इसकी जाति है औड़व शाड़व वक्र। वादी स्वर है इसका धैवत और समवादी स्वर है गंधार। आरोह में ऋषभ और पंचम वर्ज्य रहते हैं और अवरोह में पंचम वर्ज्य होता है। ऋषभ इसमें कोमल लगता है, मध्यम लगता है तीव्र और शेष सभी स्वर इसमें शुद्ध लगते हैं। आइए अब सुनते हैं इसी राग पर आधारित यह अगला गीत, मोहम्मद रफी और निराला देवी की आवाज में। फिल्म है मुसाफिर खाना, संगीत ओपी नैयर का, बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मधुरिमा कार्यक्रम में बात हो रही है राग सोहनी की। श्रृंगार रस व्यक्त करने वाला राग सोहनी एक उत्तरांग प्रधान राग है जिसकी प्रकृति चंचल और कोमल है। इस राग में सीधे सपाट आलापों की बजाय वक्र चाल का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें खटके और मुर्कियां इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस राग का गायन वादन समय भोर से ठीक पहले 4 से 7 बजे के बीच का है।

0: शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ संजीव कुमार। संजीव, आपका स्वागत है।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में जगह बनाई। सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, 3 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम और भारतीय हॉकी में डच हॉकी कोचों की सराहना की। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी और संजना ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज बैंकॉक में सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एक रिपोर्ट।
2: भारत की टॉप पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सेमीफाइनल में मलेशिया के गोफ सेफेई और नूरुजीदीन को 1 घंटे और 22 मिनट तक चले मुकाबले में 19-21, 22-20, 21-16 से हराकर 2026 सीजन के अपने पहले फाइनल का टिकट कटाया। मलेशियाई जोड़ी ने दमदार आगाज किया और उतार चढ़ाव भरे पहले गेम को 21-19 से जीत लिया। वहीं दूसरा गेम और भी ज्यादा नाटकीय रहा, जहां दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन सात्विक और चिराग ने पहले गेम के मुकाबले ज्यादा आत्मविश्वास और संयम दिखाया। 20-20 से बराबर पर आने के बाद सात्विक ने एकदम सही जगह पर शॉट मारकर जरूरी पॉइंट बनाया और दूसरा गेम 22-20 से जीत लिया। इसी लय को बरकरार रखते हुए जोड़ी ने आखिरी गेम में अपना दबदबा बनाए रखा और गेम को 21-16 से जीतने के साथ ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: संजीव, 2024 में इस जोड़ी ने थाईलैंड ओपन में मैच डबल्स खिताब जीता था, उसके बाद चाइना ओपन में एक फाइनल का सफर है, उसके बाद ये फाइनल नसीब हुआ है। एक कदम की दूरी है अब खिताब से।
1: जी बिल्कुल, और जहां तक मुझे याद है कि उन्होंने यहां पिछले टूर्नामेंट में खिताब जीता था, यहां अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं और जिस तरह से खेल रहे हैं, खासतौर पे अगर आप सेमीफाइनल की बात करें, हालांकि हर एक राउंड में उन्होंने अच्छा खेल दिखाया है, बट सेमीफाइनल में अगर आप देखें तो डाउन थे, पहला गेम हार चुके थे और उसके बाद वहां से वापसी करते हुए उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया। और जिस तरह से, जैसे तीसरे दूसरे और तीसरे गेम की बात करें, खासतौर पे दूसरे, पहला गेम तो
0: बराबरी का रहा, काफी
1: 21-19 से हार गए, लेकिन दूसरे में 22-20 से जीते और तीसरा का स्कोर 21-16 रहा। तो मैं ये स्कोर बता के ये मतलब बताना चाह रहा हूं कि फिटनेस को लेके इनका हमेशा इशू रहा है। हाल के 1-2 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो फिटनेस की समस्या से जूझते रहे हैं दोनों, नहीं पार्टनर में अगर एक भी कोई कभी समस्या हुई तो वो दोनों पर उस पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जिस तरह से वो एक गेम डाउन होने के बाद वापसी करते हैं, दूसरे गेम में भी फाइट करते हुए 22-20 से जीतते हैं, तो ये बताता है कि फिटनेस का लेवल क्या है अभी और किस तरह से उन्होंने फिटनेस हासिल कर ली। खेल में तो कभी वर्ल्ड नंबर वन जोड़ी रह चुकी है, खेल में तो कभी इनके सवाल ही नहीं था कि उनका खेल डाउन है या आउट ऑफ फॉर्म है, फिटनेस का इश्यू हमेशा रहा था। बट ये जो स्कोर लाइन है, मैं बता के इसलिए ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जबरदस्त फिटनेस है। अब उनके सामने फाइनल में लियो कर्नांडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी है, ये इंडोनेशिया के प्लेयर हैं, दोनों थॉमस कप डबल्स में जीत चुके हैं और ओवरऑल कई खिताब जीत चुके हैं और इनके पास भी काफी अनुभव है और देखना है कि किस तरह का इस मैच में इनका खेल रहता है। दोनों की उम्र थोड़ी कम है इनसे, एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद कर सकते हैं, बट ओवरऑल जिस लय में दिख रहे हैं सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, हम खिताब जीतने की उम्मीद कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि ये जोड़ी इस साल की और इस सीजन के अपने पहले फाइनल को एक अच्छे खिताब में कन्वर्ट करती हुई नजर आए। रियाद में सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री 2026 में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अनिमेश कुजूर और मोहम्मद अफसल ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट में अपनी अपनी स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते। भारत ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक भी अपने नाम किए।
2: सऊदी एथलेटिक्स ग्रैंड प्री में भारतीय धावकों की रफ्तार का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला।
3: अनिमेश ने पुरुषों

0: के 200 मीटर रेस 20.77 सेकंड में पूरा करते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों की 100 मीटर रेस में 10.44 सेकंड के साथ रजत पदक अपने नाम किया। उनके साथ ही भारतीय स्प्रिंटर गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर का कांस्य पदक जीता। पुरुषों की 800 मीटर रेस में 1:48.24 सेकंड के समय के साथ भारत के मोहम्मद अफसल ने देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता, जबकि प्रतियोगिता में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक पुरुषों की 4x100 मीटर रिले टीम ने जीता। भारत के लिए एक और कांस्य पदक 110 मीटर बाधा दौड़ में एम कृषिक ने 13.90 सेकंड के समय के साथ अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: संजीव, सभी खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है रियाद में, लेकिन एक नाम भारतीय एथलेटिक्स में थोड़ा धीरे से लेकिन अपनी रफ्तार से बहुत तेजी से सामने आ रहा है, अनिमेष कुजूर। छत्तीसगढ़ से आते हैं, 100-200 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। कितनी संभावनाएं इस खिलाड़ी में नजर आती है, जो कि स्प्रिंटर अब तक भारत में बीते कुछ समय से एक ब्रेक लगा हुआ था, ये खिलाड़ी आया है।
2: देखिए, ये नेशनल रिकॉर्ड इनके नाम है और रेगुलर ये क्लॉक कर रहे हैं, 10.2 है, 10.4 है, तो इस तरह से लगातार वो, हालांकि जो रिकॉर्ड है 10.18 है। अब हमें इंतजार है कि कब एक कोई भारतीय 10 सेकंड से कम में 100 मीटर दौड़े। 200 में भी इनकी टाइमिंग अच्छी है और एशियन गेम्स में हम इनसे उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि एशिया में चाइना के, जापान के, इवन कुछ और देशों के ऐसे एथलीट हैं जो 10 से कम दौड़ने वाले हैं, बट यहां पर वो दिन वो होता है कि वो दिन किसका अच्छा रहता है। तो मुझे ये लगता है कि कम से कम एशियन लेवल पे एक अच्छे एथलीट के तौर पर उभर रहे हैं। उम्र भी ज्यादा नहीं है, मेहनत भी करते हैं और लगातार ये उस टाइम को मेंटेन किए हुए हैं। अब उनके जहन में भी ये बात होगी कि किस दिन हमारा 10 सेकंड से कम टाइम निकले। फिलहाल उम्मीदें जो आप कह रहे हैं कि उनसे क्या हम उम्मीद करें, तो उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है और अगले एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स का थोड़ा टफ होता है 100 मीटर 200 मीटर, बट एशियन गेम्स में मुझे लग रहा है कि वहां हमारी निगाहें रहेंगी कि वो पोडियम पे आए।
1: जी बिल्कुल, उनको पोडियम में देश देखना चाहेगा, जो कि उनके 9 सेकंड उतने ही होंगे जो नीरज चोपड़ा के लिए 90 मीटर का एक बेंचमार्क था, और पदक में बदलते हुए ये खिलाड़ी आपको आने वाले समय में नजर आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की अपनी यात्रा के दौरान आज नीदरलैंड्स में क्रिकेट की चर्चा की और नीदरलैंड्स क्रिकेट में भारतीय समुदाय के योगदान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने टी20 विश्व कप 2026 की मेजबानी की और नीदरलैंड्स ने टी20 विश्व कप में भाग लिया और अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया।
3: अभी टी20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें नीदरलैंड्स की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत वर्ल्ड कप चैंपियन है, लेकिन भारत की टीम को भी नीदरलैंड की टीम ने बहुत बड़ी टक्कर दी थी। जब हम तेजा निदामनुरू और विक्रमजीत सिंह को नीदरलैंड की जर्सी में देखते हैं, या फिर जब आर्यन दत्त जैसे युवा खिलाड़ी डच क्रिकेट के फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम सभी को बहुत अच्छा लगता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को ट्रेनिंग देने वाले डच कोचों का भी उल्लेख किया।
3: भारत की हॉकी को और अधिक निखारने में डच कोचिज की भी मेहनत रही है। हमारी विमेन हॉकी टीम बीते कुछ समय से शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, इसमें कोच मरीन का अहम रोल है।
1: हम हॉकी की बात तो अक्सर करते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक इमर्जिंग टीम है नीदरलैंड्स। नो डाउट वर्ल्ड कप में जिस तरह का वो भारत और नीदरलैंड्स का मुकाबला था, भारत ने 17 रन से जीत दर्ज की थी, लेकिन अच्छा खेल और अच्छी खेल भावना नजर आई।
2: हाँ बिल्कुल, और ये जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया, जाहिर तौर पर ये जो हम देखते हैं कि नीदरलैंड्स हॉकी में जबरदस्त उनका रिकॉर्ड रहा है, पिछले कुछ 2-3 दशकों से 4 दशकों से तो नीदरलैंड्स की टीम ने हॉकी में बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, और खिलाड़ी ही नहीं बल्कि वहां से अच्छे अच्छे कोचेज निकले हैं। और उन्होंने सही कहा कि उनकी देखरेख में भारतीय टीम, उन्होंने नाम भी लिया विमेंस टीम के कोच का। और क्रिकेट की तो जो बात है, नीदरलैंड्स ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी टीम नहीं है, क्योंकि अगर देखें तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत कम है, वहां बहुत कम लोग हैं, बाहर से जो जाके लोग वहां बसे हैं इधर भारतीय उपमहाद्वीप के, वही खेलते हैं, वहां के भी लोकल अब खेलने लगे हैं। और

0: पॉइंट देती है वो टीम
1: जी।
0: तो इसकी चर्चा उन्होंने की और जाहिर तौर पर उनको इससे एक प्रेरणा मिलेगी वहां के क्रिकेट प्लेयर्स को।
1: जी बिल्कुल। और क्रिकेट की बात हुई है तो बात अब आईपीएल की भी कर लेते हैं, जहां कोलकाता में इस समय गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 14वें ओवर में 2 विकेट पर 167 रन बना लिए थे। इससे पहले लखनऊ में कल मिचेल मार्श की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराकर चेन्नई की प्लेऑफ में पहुंचने की राह को थोड़ा और मुश्किल बना दिया। एक रिपोर्ट।
2: प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार 3 जीत का क्रम तोड़ दिया। लखनऊ में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 5 विकेट गंवाकर 187 रन बनाए। टीम के लिए कार्तिक शर्मा ने 42 गेंद पर सर्वाधिक 71 रन की पारी खेली थी। एलएसजी के लिए आकाश महाराज ने 3 विकेट लिए। 188 रन के लक्ष्य को मिशेल मार्श की 38 गेंद पर 90 रन की तूफानी पारी ने एलएसजी ने बेहद आसान बना दिया और टीम ने 20 गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। जोश इंग्लिश ने 32 गेंद पर 36 और निकोलस पूरन ने 17 गेंद पर नाबाद 32 रन बनाकर मार्श का बखूबी साथ दिया। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद सीएसके अंक तालिका में 12 मैचों में 6 जीत और 6 हार के साथ 6ठे स्थान पर है, जबकि एलएसजी अंतिम और 10वें स्थान पर है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: अब लखनऊ इस टूर्नामेंट से एक अच्छा फेयरवेल लेके विदा होना चाहता है अगले सीजन के लिए, लेकिन इस फेयरवेल ने चेन्नई की राह थोड़ी मुश्किल कर दी।
0: हाँ बिल्कुल, चेन्नई के पास अब जो अब बाकी के 2 मैच बचे हैं तो ये टीम जीतती है तो 16 अंकों तक पहुंचेगी। फिर भी देखना है कि बाकी टीमें और जो ऊपर हैं, आरसीबी है, गुजरात टाइटंस है, सनराइजर्स है, पंजाब किंग्स है, इनका प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर ये सारे अपने अपने मैचेस जीतने में सफल रहे तो फिर चेन्नई के लिए मुश्किल है। और फिलहाल जो आज का मैच अभी का चल रहा है वो भी काफी रोमांचक हो चला है गुजरात और केकेआर के बीच।
1: जी बिल्कुल, केकेआर के लिए कहना गलत नहीं होगा, डू और डाई है कि आज अगर आप जीत नहीं दर्ज करते हैं तो इस प्रतियोगिता में आपके लिए आगे का सफर लगभग समाप्त हो जाएगा।
0: बिल्कुल, और अगर आज गुजरात की टीम जीत हासिल करती है तो मुहर लग जाएगी एक तरह से, वो 18 अंक पहुंच जाएंगे और उनके अभी 2 मैचेस बाकी हैं तो आप मान सकते हैं कि ये टीम पहुंच जाएगी प्लेऑफ में, जबकि केकेआर का सफर खत्म हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल, तो गुजरात की नजर होगी कि टेबल टॉप करे और कम से कम फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे रहते हुए अपनी टैली को समाप्त करे।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए केकेआर के लिए तो यही है कि अगर वगर में भी उनको रहना पड़ेगा, अगर वो बाकी बच्चे में अपने मैच जीतते भी हैं तो ये गारंटी नहीं है कि वो आगे चले ही जाएंगे, बट हाँ ये है कि ये जीतने के बाद उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी। अभी जो मैच की स्थिति है, 15वां ओवर चल रहा है, 175 रन बन गए हैं 2 विकेट पर, रघुवंशी अंकृष रघुवंशी क्रीज पर है और अगर ये रहते हैं तो अगले 5-6 ओवर में ये 225 तक टीम पहुंच सकती है और ऐसे में देखना होगा कि गुजरात की तरफ जिनके पास एक से एक बढ़ के बैट्समैन हैं किस तरह वो टारगेट हासिल करते हैं। बट ओवरऑल जो ये ईडन गार्डन पर मुझे लग रहा है कि 1 महीने के बाद ये मैच हो रहा है, लास्ट जो यहां मैच हुआ था तकरीबन उसके 1 महीने बाद यहां पर मैच चल रहा है और एक वहां जो दर्शक पहुंचे होंगे उनको एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा।
1: जी बिल्कुल, एक रोमांचक मैच देखने को मिलेगा जबकि गुजरात की टीम को भी किसी भी स्कोर पे आप कम नहीं आ सकते हैं, तो उम्मीद होगी कि आने वाले समय में एक अच्छा मैच यहां से बनता हुआ नजर आएगा। और क्रिकेट के बाद बात कर लेते हैं भारोत्तोलन की। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने आज महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठा करके 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। संजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
1: और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
1: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लीडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
2: वी हैव अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप विद स्वीडन ऑन डिफेंस।
3: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
2: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा 1 में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
3: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद यह घोषणा की गई।

अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लेटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइंस, लाइट, साउंड, कैमरा, एक्शन।

0: नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के मई महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक, मदर्स डे पर विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है,
1: मेरे पास माँ है,
0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ।
2: जिंदगी कैसी है पहेली,
0: और स्मृति शेष में नमन अभिनेता और निर्माता सुदेश कुमार को।
3: सारंगा तेरी याद में।
0: सबसे पहले संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक।

सिनेमा हमेशा से ही नई कहानियों की तलाश में रहता है। कभी वो ताजा तरीन घटनाओं से प्रेरणा लेता है तो कभी किताबों से। सिनेमा की प्रेरणा की एक और धारा रही है और वो है दूसरी भाषाओं के सिनेमा का हिंदी रूपांतरण या रीमेक। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी सिनेमा ने दुनिया की तमाम भाषाओं की फिल्मों से प्रेरणा ली है, अंग्रेजी से भी और अन्य विदेशी भाषाओं की फिल्मों से भी। पर आज हम उन फिल्मों की बातें करेंगे जो क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों से प्रेरित हैं या उनका हिंदी रीमेक है। चूंकि हम मुंबई महाराष्ट्र से इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन फिल्मों की बातें जो मराठी से हिंदी में रीमेक की गई हैं। अगर हम इतिहास की ओर झांकें तो पाएंगे कि जाने माने निर्देशक वी शांताराम ने नारायण हरि आप्टे के उपन्यास ना पटनारी गोष्ठ पर आधारित एक मराठी फिल्म बनाई कुंकू। इसी फिल्म को हिंदी में उन्होंने दुनिया ना माने के नाम से बनाया। ऐसी ही एक और मिसाल थी वी शांताराम की फिल्म शेजारी, जो हिंदी में पड़ोसी के नाम से बनाई गई थी। मराठी फिल्मों के हिंदी रीमेक की परंपरा में कई ऐसी फिल्मों के नाम आते हैं जो आपको हैरत में डाल दें, जैसे राज खोसला की फिल्म मेरा साया। सन 1966 में आई ये फिल्म असल में 1964 में आई राजा परांजपे की मराठी फिल्म पाठ लाग का हिंदी रीमेक थी। मराठी फिल्म के मुख्य कलाकार थे काशीनाथ घाणेकर और भावना। इस फिल्म को जीडी माडगुलकर ने लिखा था। यहाँ एक दिलचस्प बात, पाठलाग जयंत देवकुड़े के उपन्यास आशा परत येते पर आधारित थी। इस फिल्म ने मराठी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि सन 2009 में आई श्याम बेनेगल की फिल्म वेल डन अब्बा अभय कीर्ति की एक मराठी फिल्म का रीमेक थी। इसी तरह से नागराज मंजुले की फिल्म सैराट 2016 में आई थी, इसका हिंदी रीमेक धड़क के नाम से बना। कृति सेनन की कामयाब फिल्म मीमी साल 2011 में आई मराठी फिल्म मला आई वाईचाय का हिंदी रीमेक थी। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि तमिल फिल्मों के हिंदी रीमेक का सिलसिला काफी पुराना है। सन 1951 एम वी रमन ने एक फिल्म बनाई बहार, जिसके जरिए अभिनेत्री वैजयंती माला ने हिंदी सिनेमा में अपना पहला कदम रखा था। ये फिल्म एवी मैयप्पन की तमिल फिल्म वजकई का रीमेक थी। चूंकि हम तमिल से हिंदी में बनी फिल्मों की चर्चा कर रहे हैं, तो अब यहां जिक्र कर लिया जाए सन 1955 में आई फिल्म आजाद का। दिलीप कुमार और मीना कुमारी के अभिनय वाली ये फिल्म एस एम श्री रामुलु नायडू की तमिल फिल्म मलयक्कालन का हिंदी रीमेक थी।

0: को भी खबर है।
1: सन 1957 में आई एलवी प्रसाद की फिल्म मिस मैरी के कलाकार थे मीना कुमारी और किशोर कुमार, पर असल में ये फिल्म प्रसाद की ही तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में बनी फिल्म मसीमा अम्मा का हिंदी रीमेक थी। सामाजिक फिल्मों का दौर था, तमिल से धड़ाधड़ हिंदी रीमेक बन रहे थे। 1963 में आई फिल्म दिलेक मंदिर सी वी श्रीधर की तमिल फिल्म मनिंजिल और आलयम का हिंदी रीमेक थी। कलाकार थे राजेंद्र कुमार, राजकुमार और मीना कुमारी। संगीत शंकर जयकिशन का था। इसी तरह सन 1965 में आई फिल्म खानदान तमिल फिल्म भागा पिरिविनाई का हिंदी रीमेक थी। फिल्म दो कलियां एक तमिल फिल्म का रीमेक थी, जबकि हाथी मेरे साथी सेंडो एम ए चिनप्पा थेवर की तमिल फिल्म देवा चयाल का हिंदी रीमेक थी।
2: चल चल चल मेरे साथी ओ मेरे हाथी।
1: सन 1988 में आई फिल्म दयावान मणिरत्नम की तमिल फिल्म नायकन का हिंदी रीमेक थी, जबकि हिंदी फिल्म सिंघम तमिल फिल्म सिंघम का ही रीमेक थी। मणिरत्नम की तो कई फिल्मों का हिंदी रीमेक हुआ है, जैसे साथिया उन्हीं की तमिल फिल्म अलैपुथे का हिंदी रीमेक थी।
3: साथिया
1: दक्षिण की भाषाओं में मलयालम से भी हिंदी में कई फिल्में बनी हैं। सन 1974 में आई जे ओम प्रकाश की फिल्म आपकी कसम असल में मलयालम फिल्म वाजवे मायम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम में इसे के एस सेतु माधवन ने बनाया था।

0: चूंकि जिक्र के एस सेतु माधवन का चला है तो आपको बता दें कि सन 1975 में उन्होंने अपनी ही मलयालम फिल्म चट्टकारी का हिंदी रीमेक बनाया जिसका नाम था जूली।
1: जूली, आई लव यू।
0: सन 1970 में आई फिल्म द ट्रेन 1967 में आई मलयालम फिल्म कूचीन एक्सप्रेस का हिंदी रीमेक थी। नए दौर को देखें तो प्रियदर्शन की फिल्म भूल भुलैया सन 1993 में आई मलयालम फिल्म मणिचित्र तजु का हिंदी रीमेक थी। मलयालम से अब चलते हैं तेलुगु सिनेमा की तरफ। सन 1967 में आई जितेंद्र और बबीता की अभिनय वाली फिल्म फर्ज।
1: मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए।
0: फिल्म फर्ज के निर्देशक थे रविकांत नागाइच। ये फिल्म 1966 में आई तेलुगु फिल्म गुडचरी 116 का हिंदी रीमेक थी। तेलुगु से हिंदी में बनी एक बहुचर्चित फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: सन 1981 में आई इस फिल्म के निर्देशक थे के बालचंदर। ये फिल्म उन्हीं की तेलुगु फिल्म मारो चरित्र पर आधारित थी। इस फिल्म के जरिए अभिनेता कमल हासन ने हिंदी सिनेमा की दुनिया में कदम रखा था। सिनेमा हमेशा से ही कहानियों की तलाश में रहता है और नई कहानियां खोजना कोई आसान काम नहीं है। जाहिर है कहानियों की तलाश में फिल्मकार सारी दुनिया की फिल्में देखते हैं और अगर कोई फिल्म उन्हें लुभाती है तो वे अधिकार लेकर अपनी भाषा में अपने तरीके से उसे बनाना चाहते हैं। हिंदी फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने बांग्ला की कई फिल्मों को हिंदी में बनाया। सन 1957 में आई कृष्ण पंजू की फिल्म भाभी बांग्ला फिल्म भांगा गारा का हिंदी रीमेक थी। इसी तरह सन 1958 में आई राज खोसला की फिल्म काला पानी। देवानंद मधुबाला और नलिनी जयवंत इस फिल्म के कलाकार थे। ये फिल्म अग्रदूत के निर्देशन में बनी बांग्ला फिल्म सबर उपरे का हिंदी रीमेक थी। बांग्ला से हिंदी में बनी प्रमुख फिल्मों में एक है छोटी सी मुलाकात। बांग्ला में इसे अग्रदूत ने अग्नि परीक्षा के नाम से बनाया था और ये बांग्ला फिल्म आशापूर्णा देवी के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई।
0: सन 1966 निर्देशक असित सेन ने एक फिल्म बनाई ममता। इस फिल्म के कलाकार थे सुचित्रा सेन, धर्मेंद्र और अशोक कुमार। ये फिल्म बांग्ला फिल्म उत्तर फाल्गुनी का हिंदी रीमेक थी।

0: क्या आप जानते हैं कि 1968 में आई चर्चित कॉमेडी फिल्म पड़ोसन भी एक बांग्ला फिल्म का रीमेक थी। सन 1952 में आई ये बांग्ला फिल्म थी पाशेरबाड़ी, जो अरुण चौधरी की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी। सन 1969 में आई फिल्म खामोशी के निर्देशक थे असित सेन, कलाकार थे वहीदा रहमान और राजेश खन्ना। दरअसल असित सेन ने अपनी ही बांग्ला फिल्म दीप ज्वेले जाई को हिंदी में दोबारा बनाया था और इस फिल्म ने कल्ट फिल्म का दर्जा हासिल किया।
1: वो शाम कुछ अजीब थी।
0: बांग्ला से हिंदी में आई कई ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट फिल्मों का दर्जा हासिल कर चुकी हैं। सन 1970 में आई फिल्म निशी पद्मा को शक्ति सामंत ने बनाया था और इसे नाम दिया अमर प्रेम। इसी तरह 1975 में आई गुलजार की फिल्म खुशबू बांग्ला फिल्म पंडित मोशाय का हिंदी रीमेक है। कुल मिलाकर कहानियों की अपनी यात्रा होती है। विश्व सिनेमा के इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि एक ही कहानी पर न जाने कितनी भाषाओं में अपने अपने तरीके से फिल्में बनी हैं। ठीक यही बात भारत के बारे में भी है। इतनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं, उनका अपना साहित्य और सिनेमा, इसलिए कहानियां भाषाओं का पुल पार करके इधर से उधर और उधर से इधर आती रहती हैं। ये था संपादकीय क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में फिल्मों के रीमेक। जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी अब अपने 90 वर्ष की ओर अग्रसर है। इस गौरवशाली यात्रा को शुभकामनाएं देते हुए जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह ने ये बातें कही।
2: एक ऐसे युग की कहानी जिसका नाम है आकाशवाणी, और जिसने वो हवाएं देखी, वो रातें देखी, वो दिन देखे, वो तूफान देखे, लेकिन उसके बाद भी मैं खड़ी हूँ क्योंकि मैं आकाशवाणी हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस आकाशवाणी को, जिसने पूरे 90 साल पूरे कर लिए हैं और आगे बहुत सी जनरेशन में इसका नाम सुनना और बाकी रहेगा। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के मौके पर ये थे जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह के उद्गार। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस बरस 10 मई को मदर्स डे था। इस दिन पूरी दुनिया में मातृशक्ति को नमन किया जाता है, इसलिए चित्र भारती के इस अंक में हम लेकर आए हैं विशेष लघु रूपक मेरे पास माँ है।
3: मेरे पास माँ है।
0: हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार हमेशा से ही बड़ा अहम रहा है। अगर आप पुराने जमाने की फिल्में देखें तो पाएंगे कि माँ सफेद साड़ी में लिपटी दुखियारी स्त्री हुआ करती थी। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दुनिया भर के दुख सहती है। लीला चिटणीस, निरूपा राय, दुर्गा खोटे, सुलोचना, अचला सचदेव जैसी अभिनेत्रियों ने इस तरह की माँ के किरदार खूब निभाए। फिल्म शहीद में कामिनी कौशल ने निभाया था शहीद भगत सिंह की माँ का सशक्त किरदार।
4: तू न रोना के तू है

फिल्म मदर इंडिया महबूब खान ने बनाई थी। ये फिल्म सन 1957 में आई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री नरगिस ने माँ राधा का अमर किरदार निभाया था। एक ऐसी माँ जो अपने उसूलों के लिए अपने बेटे को गोली तक मार देती है। नरगिस मदर इंडिया में एक त्यागमयी माँ ही है। वो अपने बच्चों के लिए दुनिया का हर दुख सहती हैं।

पर उनका किरदार तब ज्यादा सशक्त बनता है जब वो नैतिकता और संस्कारों को अपने बेटे से ज्यादा महत्व देती हैं। वो गलत रास्तों का साथ नहीं देती। हिंदी सिनेमा में माँ हमेशा त्याग की मूर्ति रही है। वो अमूमन अपने बेटे के लिए गाना गाती है, जैसे फिल्म मुझे जीने दो में वहीदा रहमान का किरदार।

0: पर माँ के सशक्त किरदार भी बीच बीच में आते रहे हैं। फिल्म मुगले आजम में माँ यानी जोधाबाई का किरदार निभाया दुर्गा खोटे ने। ये किरदार अनमोल है। जोधाबाई अपने उसूलों पर अडिग हैं और वो अपने बेटे का विरोध करती हैं।
1: एक बेरहम शहंशाह के कैदखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस परवाने आजादी पे उनकी मोहर चाहिए।
2: अनारकली आजाद नहीं की जाएगी।
1: क्यों नहीं की जाएगी?
2: खामोश, एक शहजादे को अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए।
0: निरूपा राय ने फिल्म दीवार में माँ का एक ऐसा किरदार निभाया जिसने हिंदी सिनेमा का इतिहास ही बदल दिया। इस फिल्म का एक संवाद है, मेरे पास माँ है। जिंदगी की राहों पर गलत मोड़ पर मुड़ चुके एक बेटे के साथ रहना इस माँ को मंजूर नहीं है। वो अपने उसूलों के तहत उस बेटे के साथ रहती है जो पुलिस वाला है।
3: ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रहे हो।
2: विजय, बड़ा सौदागर बन गया है रे। मगर एक बात बोलो, अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके।
0: इसके साथ ही सख्त अनुशासन वाली माँ का किरदार भी कुछ फिल्मों में आया है, जैसे फिल्म खूबसूरत में दीना पाठक का किरदार। उनके नियम कायदे इतने कठोर हैं कि उनके खिलाफ बगावत हो जाती है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के जरिए ये परिदृश्य बदला। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में एक आजाद ख्याल माँ का किरदार निभाया था। वो अपनी बेटी की दोस्त ज्यादा है, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती है कि वो अपनी मर्जी से अपने जीवन साथी का चुनाव करे। आगे चलकर सन 2012 में हिंदी सिनेमा और भी बदल गया, जब श्रीदेवी ने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए अंग्रेजी सीखती है, नए सिरे से अपनी पहचान बनाती है। सन 2018 में आई बधाई हो, इस फिल्म में नीना गुप्ता ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया जो अधेड़ उम्र में माँ बनती है। हिंदी सिनेमा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक क्रांतिकारी किरदार था। हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत सारे गाने भी लिखे गए हैं, एक से बढ़कर एक गाने। फिल्म राजा और रंक

0: 90 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में माँ का रूप बदला है। अब वो दुखियारी नहीं रही, वो मॉडर्न हो गई है। वो अपने बच्चों के जज्बात को समझती है, वो उनका साथ भी निभाती है। फिल्म नील बटे सन्नाटा में स्वरा भास्कर ने एक ऐसी माँ का किरदार निभाया था जो अपनी बेटी का पढ़ाई में हौसला बढ़ाने के लिए उसके ही स्कूल में एडमिशन लेती है। नए जमाने की माँ ज्यादा फैशनेबल और कंटेम्प्ररी है। वो जमाने के साथ चलती है, वो नई पीढ़ी की उम्मीदों को समझती है और उनका साथ निभाने की पूरी कोशिश करती है। नए जमाने की फिल्मों में भी कुछ बेमिसाल गाने आए हैं जो माँ को समर्पित हैं। फिल्म तारे जमी पर।
1: मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं।
0: फिल्म ABCD 2।

0: जमाना बदल रहा है और इसी तरह बदल रहा है हिंदी सिनेमा में माँ का किरदार।
1: मेरे पास माँ है।
0: ये था लघु रूपक मेरे पास माँ है, रुपहला पर्दा रुपहली बातें। इस श्रृंखला में एक छोटी सी मुलाकात गीतकार योगेश के साथ। 29 मई को होता है उनकी याद का दिन।

0: संगीतकार योगेश का जन्म 19 मार्च 1943 को हुआ था। उन्होंने अपना करियर सन 1962 में फिल्म सखी रॉबिन के जरिए शुरू किया था।
1: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए।
0: सन 1971 में फिल्म आनंद में उन्होंने लिखा ये गाना।

0: योगेश ललित हिंदी वाले अपने गानों के लिए जाने जाते हैं। 29 मई 2020 को योगेश इस फानी दुनिया को छोड़कर चले गए। विविध भारती के संग्रहालय से हम आपके लिए लेकर आए हैं उनकी एक अनमोल रिकॉर्डिंग के अंश।
1: दरा आप लखनऊ चले गए, मतलब ये सोच लिया कि गीतकारी अब नहीं करनी है?
2: हाँ, कुछ होगा, अच्छा होगा तभी, नहीं तो नहीं। क्या क्या करेंगे, देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो बस उसके बाद अचानक जो है वो एक टेलीग्राम आया अपना सविता चौधरी जी का कि योगेश कहाँ हो तुम, फौरन आओ। तो फिर हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि वो दो गाने जो हैं वो LB लक्ष्मण जी ने खरीद लिया और वो अन्नदाता पिक्चर बना रहे हैं, और अन्नदाता में उनको वही राइटर चाहिए जिसने ये गाना लिखा है, नैन हमारे सांस सकारे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: ओहो,
2: और ऋषिदा ने भी वो गाने, ऋषिदा अमिताभ जी ऐसा सुना मैंने, दादा बता रहे थे, और राजेश खन्ना, ये तीनों, कहीं मीटिंग थी, आनंद का चल रहा था, जो कुछ भी, तो इन लोगों को दोनों गाने ऋषिदा को चाहिए थे, कहीं दूर जब दिन ढल जाए और नैन हमारे। तो लक्ष्मण जी ने बोला कि नैन हमारे तो हम एक गाना कोई भी ले लो। तो मैं सेट पे जब जाता था तो राजेश खन्ना हमेशा मुझे बोलता था, जो योगेश जी को दूसरा गाना भी दिलवाइए ना, ऐसा करके बोलता। मैंने मेरे हाथ में किधर है
1: जी।
2: तो फिर अन्नदाता पिक्चर मैंने पूरी लिखी।

0: मैं खुद भी बड़ा ताज्जुब है इस बात का कि मुझे दादा के साथ कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम पे, ना टेप रिकॉर्डर ना कुछ। और दादा ने बोला कि कल ही मुझे पूरा मुखड़ा योगेश तू लिख करके दे, और मैंने उन्होंने ट्यून मुझे दी, और मैं ट्यून लेकर के पेडर रोड से बस में बैठा और मैं भगवान से मना रहा था कि कहीं पे लाउड स्पीकर पे कोई हिट गाना ना बज जाए कि मैं ट्यून भूल जाऊं।
1: बहुत अच्छी बात है।
0: और मैं चला रहा हूं। और जैसे ही मैं गोरेगांव घर पे आया तो एक मुखड़ा बना, मैंने जल्दी से उसको जाकर के लिखा, मैंने दादा आप कल की बात कर रहे थे मुखड़ा आप देख लो दादा ये कैसा है क्या है, कितनी बड़ी ट्यून, कितना कॉम्प्लिकेटेड मुखड़ा लोग बोलते थे, मगर आप देखिए गुजर जाए दिन दिन दिन के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, कि ये सिलसिले जब से चले ख्वाब मेरे हो गए रंगीन, गुजर जाए दिन दिन, इतना बड़ा मुखड़ा मुझे पता नहीं कैसे क्यों या कैसे याद हो जाता था दादा के साथ मालूम नहीं।

0: रुपहला पर्दा रुपहली बातें, इस श्रृंखला में अभी आपने सुनी गीतकार योगेश की ये अनमोल रिकॉर्डिंग। स्मृति शेष। एक मई को गुजरे जमाने के अभिनेता सुदेश कुमार का निधन हो गया। 17 मार्च 1931 को पेशावर में सुदेश कुमार का जन्म हुआ था। जब वो बहुत छोटे थे तब परिवार मुंबई आ गया था। पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन सुदेश कुछ और चाहते थे। सुदेश कुमार का कपूर खानदान से पुराना नाता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद पृथ्वीराज कपूर के थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए सुदेश कुमार। उनकी शुरुआती फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म पैसा शामिल है, जो सन 1957 में आई। इसके बाद सुदेश कुमार ने कई फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं की, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली 1959 में आई फिल्म छोटी बहन के जरिए। सन 1961 में आई फिल्म सारंगा, इस फिल्म में सुदेश कुमार हीरो थे।
1: सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन।
0: आगे चलकर फिल्मों में कई सहायक भूमिकाएं निभाई सुदेश कुमार ने। 70 के दशक में वो बन गए प्रोड्यूसर। उन्होंने जो फिल्में बनाई उनके नाम हैं मन मंदिर, उलझन, बदलते रिश्ते और जान हथेली पे। 1 मई 2026 को 95 बरस की उम्र में सुदेश कुमार ने आखिरी सांस ली। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का मई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्टूडियोज में किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी

0: गया है कि ये सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन की औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंध, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले सभी निर्णय को भी सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित कर रखने का भारत का फैसला अभी भी लागू है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियों और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today said India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, the Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. The Prime Minister also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of the Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Modi was presented today with the historic 11th century Chola copper plates by

0: authorities of the Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow. The Prime Minister's visit to Sweden's industrial hub, Gothenburg, is expected to further strengthen bilateral ties between India and Sweden, particularly in emerging and high-technology sectors such as trade, artificial intelligence and space technology. Speaking exclusively to Akashvani, India's ambassador to Sweden, Anurag Bhushan, highlighted the significance of the visit and said it would open new avenues of cooperation and innovation between the two countries. Head of Engineering and Product Development at Artifacts in Sweden, Per Stenfeldt, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. Electronics manufacturing company Tata Electronics and Dutch semiconductor equipment major ASML have joined hands to enable chip manufacturing in India. The pact was announced during Prime Minister Narendra Modi's visit to the Netherlands. ASML is known for having a monopoly in a category of lithography equipment, which is critical for production of advanced small-size semiconductors. A Delhi court today sent the prime suspect in the NEET paper leak case, P.V. Kulkarni, and another accused, Manisha Waghmare, to CBI custody for 10 days. Special CBI Judge Ajay Gupta ordered the remand after the probe agency submitted that the duo needed to be taken outside the national capital for further investigation and that the larger conspiracy had to be investigated. India has rejected the latest award issued by the so-called Court of Arbitration on the Indus Waters Treaty dispute with Pakistan. The Ministry of External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said India does not recognize the court and considers it to be illegally constituted. He said any decision or award issued by the court is null and void. The spokesperson said the court had issued a supplementary award related to maximum pondage under the Indus Waters Treaty. At the Asian Weightlifting Championships in Gandhinagar, India's Sanjana has won 3 bronze medals in the women's 77-kilogram category. Sanjana lifted 96 kilograms in the snatch, 124 kilograms in clean and jerk, and total 220 kg to claim 3 bronze medals. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. Akashvani se Vishwa Darpan ke saath, main Prashant Kumar. मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी एएसएमएल के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को चीन से औपचारिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा के खिलाफ चेतावनी दी। इसराइल की सेना ने हमास की सैन्य शाखा के नेता इज अल-दीन अल-हद्दाद को मारने का दावा किया। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड्स वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी

0: फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
0: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों के सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल है। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मुहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। 5 प्लेटों पर संस्कृत में शिलालेख है जबकि 16 प्लेटों पर तमिल में शिलालेख है। कुलुतुंगा चोल प्रथम की मुहर लगी प्लेटों के एक अन्य समूह में भी तमिल शिलालेख है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। ASML के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफ फुके ने कहा कि भारत का तेजी से बढ़ता सेमीकंडक्टर क्षेत्र कई नए अवसर प्रदान करता है और कंपनी क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितम्बर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के लिए वर्ष 2018 में स्वीडन की यात्रा के बाद ये उनकी दूसरी नॉर्डिक यात्रा होगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से स्वीडन सहित भारत और यूरोपीय देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। स्वीडन में आर्टिफैक्ट्स के इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास प्रमुख पेर स्टेनफेल्ट ने कहा कि समझौते के बाद भारत और यूरोप के बीच मजबूत औद्योगिक सहयोग और अधिक व्यावसायिक अवसर सृजित हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को चीन से औपचारिक रूप से स्वतंत्र घोषित करने के खिलाफ चेतावनी दी है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने कहा था कि ताइवान को स्वतंत्र घोषित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे स्वयं को पहले से ही एक संप्रभु राष्ट्र मानते हैं। अमरीका लंबे समय से ताइवान का समर्थन करता रहा है जिसमें अमरीकी कानून के अंतर्गत उसे आत्मरक्षा के साधन उपलब्ध कराना भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने और सी चिनफिंग ने ताइवान मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। ट्रंप ने यह भी कहा कि चिनफिंग ताइवान के मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है और किसी भी प्रकार की आजादी की दिशा में उठाए गए कदम का विरोध करते हैं। इसराइल ने हमास के सैन्य विंग के प्रमुख और 2023 में हुए हमलों के सूत्रधारों में से एक इज अल दीन अल हद्दाद को मार गिराया है। इन हमलों के बाद गजा युद्ध हुआ था। इसराइली सेना ने बताया कि अल हद्दाद कल गजा में हुए हवाई हमले में मारा गया। सेना ने कहा कि वे हमास के सैन्य नेतृत्व में बचे हुए अंतिम वरिष्ठ कमांडरों में से एक था। अल हद्दाद ने अपने पूर्ववर्ती मोहम्मद सिनवार की मृत्यु के बाद ये पदभार संभाला था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति सी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रमुख बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता और बलूच यकजहती कमेटी के मुख्य आयोजक डॉक्टर महरंग बलूच ने बलूचिस्तान में असहमति से निपटने के पाकिस्तान के रवैये की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान बलूचिस्तान में शांतिपूर्ण कार्यकर्ताओं के खिलाफ जबरन गायब करने, गैर न्यायिक हत्याओं और डराने धमकाने की रणनीति में वृद्धि कर रहा है। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया की जोड़ी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारतीय जोड़ी ने 19-21, 22-20, 21-16 से जीत हासिल की। फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया की जोड़ी से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को चीन से औपचारिक रूप से स्वतंत्र होने की घोषणा के खिलाफ चेतावनी दी। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I am Purnima Samant Kadakoti with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India and Netherlands working together to build trusted future-ready supply chains, calls India a land of opportunities in the 21st century. Tata Electronics and Dutch firm ASML sign agreement to boost semiconductor manufacturing in India. New Delhi rejects Indus Waters Treaty award by the Court of Arbitration, calling it illegal. US President Donald Trump warns Taiwan against formal declaration of independence from China. Israel claims its army killed Hamas military wing leader Iz al-Din al-Haddad. And in badminton, Indian duo Satvik Sairaj and Chirag Shetty enter finals of Thailand Open. Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague today, PM Modi highlighted India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
0: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ा

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। और वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 12:31:16। तो आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और एक बार फिर से सदाबहार गीतों के कारवां को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी अपनी पसंदीदा महफिल में, जिसका नाम है हर सिंगार। हर सिंगार यानी वो महफिल जिसमें होते हैं वो सदाबहार नगमे जो अमर हो गए और वो सदाबहार कहानियां जो हमारे दिल में बस गईं। शायर कहते हैं कि पर्दे में रहकर भी तू दिल में उतर जाता है, पर्दे में रहकर भी तू दिल में उतर जाता है, ये हुनर सिर्फ मोहब्बत को ही तो आता है। और बात जब पर्दे की चली है तो आज की इस महफिल का आगाज भी एक ऐसे ही नगमे से करते हैं जो रुख से पर्दा हटाने की बात कर रहा है। और ये सदाबहार नगमा है 1969 में आई फिल्म एक फूल दो माली से, जो आज भी सुनते ही चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान ले आता है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे बलराज साहनी, संजय खान, साधना, दुर्गा कोटे वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है प्रेम धवन साहब ने और राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है रवि ने। तो आइए सुनते हैं इसे फिल्म का बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार नगमा रवि साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में, जिसे लिखा है प्रेम धवन साहब ने और संगीत है रवि साहब का। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 10:39:10। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार में। अब बात एक ऐसी फिल्म की जो हमारे दिल के बेहद करीब है, आप सबके दिल के बेहद करीब है। ऐसी ही फिल्म जो अपने दौर की बहुत ही कामयाब फिल्मों में से एक थी और एशिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई, और वो फिल्म है साल 1971 में रिलीज हुई कारवां। नासिर हुसैन साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था जितेंद्र और आशा पारेख जी ने, जिनकी जोड़ी ने ऑन स्क्रीन कमाल कर दिखाया था और दर्शकों ने भी इसे बहुत सराहा था। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का प्लॉट थोड़ा बहुत 1953 की एक अंग्रेजी फिल्म गर्ल ऑन द रन से प्रेरित था। उस फिल्म में जहां कहानी एक क्राइम ड्रामा और कार्निवल शो के इर्द गिर्द घूमती थी, वहीं कारवां में इसे बदलकर एक रंगीन बंजारा शो के बैकग्राउंड में पेश किया गया, जो दर्शकों को बहुत पसंद आया। और इसका सबसे सकारात्मक पहलू यह था कि ये फिल्म बेहद खूबसूरत फिल्म इसलिए थी क्योंकि संगीत, इस फिल्म के संगीत ने इसकी कामयाबी में सबसे बड़ा किरदार निभाया था। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था महान संगीतकार आर डी बर्मन साहब ने और गीत लिखे थे मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। वहीं अपनी जादुई आवाज से इन गानों को सजाया था लेजेंडरी सिंगर्स मोहम्मद रफी साहब, आशा जी, लता जी, किशोर कुमार साहब और खुद आर डी बर्मन साहब ने। यही वजह है कि इस फिल्म का हर गाना आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि कारवां भारत में तो सुपरहिट रही ही, लेकिन असली कमाल तब हुआ जब यह फिल्म 1979 में चीन में रिलीज हुई। वहां इसने विदेशी फिल्मों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। बताया यह भी जाता है कि इस फिल्म ने एशिया में 30 करोड़ से भी ज्यादा टिकट्स बेचे थे, जिनमें से ज्यादातर चीन में ही बिके थे। आज भी महंगाई के नजरिए से देखें तो कारवां भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में गिनी जाती है। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में, जिसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है आर डी बर्मन साहब ने। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हर सिंगार के इस दिलकश महफिल में

मोहम्मद रफी साहब और लता जी की आवाजों में नगमा था फिल्म कारवां का, बेहद खूबसूरत। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। और महफिल सजी है सदाबहार गीतों की महफिल हर सिंगार, और हर सिंगार की इस दिलकश महफिल में अब बात अपने दौर की एक बेहद खूबसूरत और जज्बाती फिल्म की, और वो फिल्म है साल 1974 में आई फिल्म रोटी। एक ऐसी फिल्म जो न सिर्फ आपको अंदर तक झकझोर देगी बल्कि हमारे समाज की इस कड़वी हकीकत से रूबरू करवाती है। जब गरीबी जो अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाती है, महलों में रहने वालों, अमीरों और जुल्म की दुनिया के बादशाहों के बीच फंसी ये गरीबी और उसकी जिंदगी और एक आम इंसान के पेट की भूख, रोटी जो अपने पेट को भरने के लिए इंसानियत को कत्ल कर देती है और हमेशा के लिए जुर्म के दलदल में फंस के रह जाती है। और यही वो हकीकत है जो हमारे समाज को आईना दिखाती है। मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था राजेश खन्ना, मुमताज, निरूपा रॉय, जगदीप, असरानी और कादर खान वगैरह ने। खास बात यह है कि इस फिल्म के दमदार डायलॉग्स लिखने के लिए कादर खान साहब को उस दौर में 1.21 लाख रुपए दिए गए थे, जो उस दौर में एक बड़ी रकम मानी जाती थी। ये फिल्म इतनी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले संवादों से सजी थी जिसको दर्शकों ने अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात से जोड़ा और खूब सराहा। यह फिल्म इतनी कामयाब हुई कि बाद में इसको अलग अलग भाषाओं में फिर से बनाया गया। पहले तेलुगु भाषा में और फिर बांग्लादेश में इसको बनाया गया, जो वहां भी कामयाब रही। तो आइए इसे फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत और सदाबहार नगमा हम आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में, जिसे लिखा है आनंद बख्शी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब की जोड़ी ने। इस नगमे में गोरे रंग, चेहरे और खूबसूरती को और उसके घमंड के बारे में बातें की गई है।

0: किशोर कुमार साहब और लता जी की बेहद खूबसूरत आवाजों में यह नगमा था फिल्म रोटी से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं इस वक्त आप, और महफिल सजी है सदाबहार गीतों की हर सिंगार, और हर सिंगार की महफिल में अब बात हिंदी फिल्मों की कव्वाली की। दोस्तों, बॉलीवुड की कव्वाली सिर्फ कव्वाली नहीं होती, बल्कि ये एक मुकाबला होता है दिलों का, अल्फाज का और जज्बात का। ताली की गूंज, हारमोनियम की धुन और जवाबी शेर सब मिलकर बना देते हैं एक ऐसा यादगार नजारा जो हमारे दिल में बस जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही खूबसूरत कव्वाली की। ये शानदार कव्वाली है फिल्म हंसते जख्म से, जो फिल्म आई थी 1973 में। इस कव्वाली को एक ऐसी ही खूबसूरत कव्वाली की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कव्वाली को अपनी जादुई आवाज दी मोहम्मद रफी साहब और इस बलबीर ने। इसके दिल को छू लेने वाले अल्फाज से लिखा है मशहूर शायर कैफी आजमी साहब ने, और इसे बहुत ही खूबसूरत संगीत से सजाया है संगीतकार मदन मोहन साहब ने। इस कव्वाली की खास बात यह है कि इसका अंदाज थोड़ा शरारत, थोड़ा इश्क और थोड़ी सी नोकझोंक। कव्वाली में सवाल जवाब का ऐसा सिलसिला चलता है कि सुनने वाला खुद को उस महफिल का हिस्सा महसूस करने लगता है, जहां मोहब्बत को हल्के फुल्के अंदाज में मजाक और तंज के साथ पेश किया गया है। तो आइए आप भी सुनिए और महसूस कीजिए इस जज्बात को। आवाजें हैं मोहम्मद रफी साहब और इस बलबीर की।
1: झुकाना ही पड़ा

ही पड़ा ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान, मोहब्बत

0: इसी कवाली के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद मैं रहूंगा एक बार फिर से आपके साथ ठीक 11:10 पर गीत मेरे मनमीत लेकर। तब तक के लिए आदाब,
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में

0: के क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय सीओए के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित सीओए ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhumi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he is attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was today presented with the historic 11th century Chola copper plates by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands last night on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden tomorrow.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 13 सेकेंड। उबैदुल्ला सिद्दीकी कहते हैं कि जिंदगी एक ख्वाब है, ये ख्वाब की ताबीर है। जिंदगी एक ख्वाब है, ये ख्वाब की ताबीर है। हल्का गेसुए दुनिया पांव की जंजीर है। कुछ नहीं इसके सिवा मेरे तसर्रुफ में यहाँ, कुछ नहीं इसके सिवा मेरे तसर्रुफ में यहाँ। दिल का बस जितना इलाका दर्द की जागीर है। जी हाँ, जिंदगी इसी का नाम है और जिंदगी यूं ही चलती रहती है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ जिंदगी की, क्योंकि अगला नगमा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलोस आदाब। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उन्हीं नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ऐसा ही एक नगमा है 1956 में आई एक फिल्म जागते रहो से। इस फिल्म के लेखक है ख्वाजा अहमद अब्बास साहब और इसका निर्देशन किया है सोमभू मित्र।

इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में राज कपूर साहब, नरगिस, प्रदीप कुमार, सुमित्रा देवी, स्मृति बिश्वास, सुलोचना चटर्जी, डेजी ईरानी वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है सलील चौधरी साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा जिंदगी एक ख्वाब है, जिसे अपनी आवाज दी है मुकेश साहब ने। तो आइए इसी नगमे के साथ आज के इस सफर का आगाज करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में।

0: सच है क्या सब सच।
1: जिंदगी एक ख्वाब है, बेहद खूबसूरत यह नगमा आवाज थी मुकेश साहब की और यह नगमा था फिल्म जागते रहो से। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में हम गोल्डन एरा के उन चुनिंदा नगमों के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं जो नगमे आपके दिल के बेहद करीब है। उन्हीं नगमों के साथ हम एक बार फिर से आपके बीच हैं। गोल्डन एरा का दौर यानी गोल्डन एरा या सुनहरा दौर, ये वो दौर था जब बेहद खूबसूरत फिल्में बना करती थी, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई फिल्में बना करती थी, आम जिंदगी से जुड़ी हुई फिल्में बना करती थी। उन्हीं फिल्मों में से एक और बेहद खूबसूरत फिल्म है मेरे सनम। यह फिल्म आई थी 1965 में। इस फिल्म के निर्देशक थे अमर कुमार और जिन लोगों ने इस फिल्म में बेहद खूबसूरत अभिनय किया था वो थे विश्वजीत, आशा पारेख, मुमताज, प्राण, राजेंद्रनाथ, नासिर हुसैन, अचला सचदेव, धूमल, असित सेन, लक्ष्मी छाया वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है ओपी नैयर साहब ने। इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर आपके लिए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मनमीत में। और गीत मेरे मनमीत में वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:26 और 28 सेकेंड। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में उन चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो नगमे आपके दिल के बेहद करीब हैं। कुछ नगमे ऐसे हैं जिन्हें आप बार बार सुनते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, और कुछ नगमे ऐसे भी हैं जो खास तौर से हम आपके लिए चुन कर लाए हैं, आपके लिए, जिन्हें शायद ही आपने सुना होगा, लेकिन है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा ये नगमा। और अगला नगमा कुछ ऐसा ही है और ये नगमा है फिल्म परवरिश से। ये फिल्म आई थी 1958 में। सागर उस्मानी द्वारा लिखित इस फिल्म के निर्देशक थे एस बैनर्जी। और इस फिल्म में जिन लोगों ने अहम किरदार निभाया था वो थे राज कपूर साहब, माला सिन्हा, महमूद, नासिर हुसैन और ललिता पवार वगैरह ने। इस फिल्म के सारे ही नगमे बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत हैं, जिसमें अपनी आवाजें बख्शी हैं मुकेश, लता जी, मन्ना डे साहब, मोहम्मद रफी साहब, आशा भोसले। उन्हीं नगमों में से एक ऐसा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं जो फिल्माया गया है महमूद साहब और शोमैन राज कपूर साहब। इस नगमे को आप देखेंगे अगर पर्दे पर तो उन दोनों का तालमेल गाने के साथ इतना खूबसूरत लगता है।

जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे और गुनगुनाना भी चाहेंगे। तो आइए वही नगमा हम आपको सुनते हैं, सुनवाते हैं, और आप भी उस नगमे में खो जाइए इस बहुत ही खूबसूरत रिदम के साथ।

0: जो असली है कभी उससे खताएं हो नहीं सकती, जो नकली है कभी उससे वफाएं हो नहीं सकती।
1: अरे नहीं भाई नहीं, हाँ बुरा हो वक्त तो साया भी अपना दूर रहता है। वफादारी का शिकवा क्या, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है, जमाना ये ही कहता है।
2: अरे क्या

0: ओ मामा मामा मामा घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा
1: परवरिश फिल्म का यह नगमा था और आवाजें थी मोहम्मद रफी साहब और मन्ना डे साहब की बेहद खूबसूरत यह नगमा। इस नगमे को जब भी आप पर्दे पर देखेंगे तो इन दोनों की जुगलबंदी यानी इस नगमे के साथ साथ राज कपूर साहब और महमूद की जुगलबंदी देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जिस तरीके की जुगलबंदी इस नगमे में है वह सचमुच बेहद खूबसूरत बहुत ही प्यारी है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं यानी गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। और ऐसे ही एक और नगमे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और यह नगमा है फिल्म 1959 में आई दिल देके देखो से। नासिर हुसैन साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था शमी कपूर, आशा पारेख, सुलोचना लटकर, राज मेहरा, राजेंद्रनाथ, सुरेंद्र, इंदिरा बिल्ली, मुमताज अली, मलिका वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है उषा खन्ना ने। तो आइए इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में।

मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में यह नगमा था फिल्म दिल देखे देखो। यह नगमा बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा था। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म सुनहरे दौर की फिल्म से, जो बनी थी आर के नैयर के निर्देशन में और जिसे लिखा था आगा जानी और आर के नायर ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था बेहद खूबसूरत जॉय मुखर्जी, साधना, किशोर साहू, शोभना सामर, दुर्गा खोटे,

हरी शिवदासानी, रवि टंडन वगैरह ने। ये बेहद खूबसूरत फिल्म थी अपने दौर की और बहुत ही खूबसूरत इसके नगमे भी थे। ये फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म के गीतों को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा था इकबाल कुरैशी साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याण की कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाजों में।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का मैं फेरोज शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मन मीत की। इस महफिल में बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं। ये वो दौर है, ये वो नगमे हैं जब हम सबके दिल में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पुरानी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो जाती हैं इन पुराने नगमों को जब सुनते हैं। तो ये वो दौर था, और वो दौर था 1947 के बाद से लेकर 1965 तक का, जिसे हम गोल्डन एरा या सुनहरा दौर हम कहते हैं। उसी दौर में एक फिल्म आई थी धूल का फूल, और यह फिल्म आई थी 1959 में। यश चोपड़ा साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार, नंदा, मनमोहन कृष्ण, अशोक कुमार वगैरह ने। यह फिल्म अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के गीतों को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है एन दत्ता ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में आपके

0: आशीष की आवाज में नगमा था फिल्म गहरा दाग से, और यह फिल्म आई थी 1963 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश में फिल्में, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। और दोस्तों, वक्त हो चुका है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले एक और बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। नगमा नहीं, ये कव्वाली है जो यकीनन आपको पसंद आएगी। शमशाद बेगम और आशा भोसले जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में यह कव्वाली है फिल्म चौधवीं का चांद से, और यह फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म के निर्देशक थे एम सादिक, और इस फिल्म में जिन लोगों ने मुख्य किरदार निभाया था वो थे गुरुदत्त साहब, वहीदा रहमान, फरीदा जलाल, जॉनी वॉकर, मीनू मुमताज, मुमताज बेगम और टुनटुन वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हम सब के प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, और इसमें बहुत ही खूबसूरत गीत हैं जिसमें म्यूजिक दिया है रवि साहब ने, और ये नगमा है फिल्म चौधरी का चांद से। आवाजें हैं शमशाद बेगम और आशा भोसले की।
1: शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, शर्मा

शमशाद बेगम और आशा भोसले जी की इन्हीं आवाजों के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। इस कव्वाली को लिखा था शकील बदायूनी साहब ने और बेहद खूबसूरत संगीत से संवारा था रवि ने। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद सुरभि रहेंगे आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। भारत ने अवैध रूप से

0: समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति ने अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। कोलकाता के लिए फिन एलन ने 93 रन की सर्वाधिक पारी खेली। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was presented with the historic 11th century Chola copper blades by authorities of Leiden University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands on Friday on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden today. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence, and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the Ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations.

0: AIRFM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुनना मत भूलिएगा।
1: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज मंजू। पानी पर लिखी कहानी में आज मैं सुनाने जा रही हूं अपनी ही लिखी कहानी अपनी ही आवाज में, जीत हौसलों की। शिवांगी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पद संभालने जा रही है। आखिर उप मुख्यमंत्री होना कोई साधारण बात तो नहीं, और वो भी सबसे युवा उप मुख्यमंत्री होना। ये बात उसको रोमांच से ज्यादा गौरव से भर रही है। पूर्ण बहुमत से बनी सरकार ने उसे और भी आत्मविश्वास से भर दिया है। शिवांगी की कार धीरे धीरे शपथ समारोह के मैदान की तरफ बढ़ रही है। अब से थोड़ी ही देर में उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी होगी। शिवांगी के दिल में गड़े हुए कांच आज उसे चुभ नहीं रहे थे, बल्कि वो मन ही मन उन लोगों का धन्यवाद कर रही थी जिन्होंने उसके भीतर उन कांच के टुकड़ों को बोया था। अब तक जिंदगी उसने फांकों में ही तो जी थी, लेकिन आज वक्त एक ऐसे फ्रेम में कैद है जो सिर्फ शिवांगी की वकालत में खड़ा है। शिवांगी बेखौफ और आजाद जिंदगी।

शिवांगी की आंखें खुशी के आंसुओं से छलक रही थी और मन यादों की गलियों में घूम रहा था। कितनी जिद्दी रही है शिवांगी बचपन से ही। टॉपर होने के बावजूद उसने अपने दोस्तों की तरह कॉमर्स और साइंस नहीं लिया बल्कि आर्ट्स लिया था, जिसे कई बार एवरेज स्टूडेंट का सब्जेक्ट कह दिया जाता है। अपनी साइंस की मैम के बहुत डांटने पर उसने जवाब देते हुए कहा था, मैम मुझे प्रैक्टिकल लैब में एक अजीब सी घुटन होती है, साइंस में मुझे इतनी ग्रेविटी नहीं लगी जो मुझे अपनी ओर खींच सके। चीजों की तो पीएच वैल्यू है पर जिंदगी की पीएच वैल्यू क्या हो? एक सिक्के के हेड टेल की प्रोबेबिलिटी से होते हुए ताश के 52 पत्तों की प्रायिकता की संभावना गणित के पास है, पर क्या कोई गणितज्ञ गिन पाएगा जिंदगी की प्रायिकता को? जो सब्जेक्ट जिंदगी के सवालों का जवाब ना दे उसे पढ़ने का क्या फायदा मैम? अच्छा बाबा अब तुम्हें कौन समझाए, जो मन करे सो करो, तुम तो हमें ही ज्ञान दे देती हो। समाज में मौजूद अव्यवस्था शिवांगी के मन में बेचैनी पैदा करती है। परिवार को लगता है कि शिवांगी अभी छोटी है इसलिए जिद्दी है, बड़ी होगी तो शायद सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका विरोधी स्वभाव उम्र के साथ लगातार बढ़ता चला जाता है।

ट्वेल्थ में शिवांगी के अच्छे मार्क्स आए थे और उसने इवनिंग कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन ले लिया था क्योंकि ये सब्जेक्ट उसे उसके कई सवालों का जवाब देता है। कॉलेज की लाइब्रेरी उसके सुकून का कोना है। एक दिन लाइब्रेरी में बुक इश्यू कराते हुए शिवांगी ने नोटिस किया कि वो अपना लाइब्रेरी कार्ड घर बुलाई है। वह अपनी लाइब्रेरियन से बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है, मैम मैंने इन किताबों को बहुत मुश्किल से ढूंढा है, आप प्लीज इन किताबों को साइड में रख दीजिए, मैं कल अपना लाइब्रेरी कार्ड लाकर इन्हें इश्यू करा लूंगी। पर लाइब्रेरियन नहीं मानती। लाइन में खड़े सभी स्टूडेंट्स परेशान होने लगते हैं। आदित्य जो कि शिवांगी का क्लासमेट है उसके पीछे खड़ा है, वो कहता है, एक्सक्यूज मी मैम मुझे एक ही बुक इश्यू करानी है, आप मेरे कार्ड पर इनकी बुक इश्यू करा दीजिए। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच, इट्स ओके शिवांगी। अच्छा शिवांगी प्लीज डोंट माइंड, मैं अपनी फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास नहीं ले पाया। तुम्हारी तैयारी कैसी है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने तो उसके कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मैं कल तुम्हारे लिए ले आऊं। ओह थैंक यू सो मच शिवांगी, थैंक यू सो मच। कॉफी ब्रेक में शिवांगी आदित्य से वीमेन इश्यूज पर बहुत सी बातें करती है और उसे बताती है कि रात को इवनिंग कॉलेज से घर लौटने में लड़कियों को कितनी दिक्कत होती है। धीरे धीरे शिवांगी और आदित्य की नजदीकियां बढ़ने लगती है और उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये उन्हें भी

कॉलेज फेस्ट पर पूरे कॉलेज को डेकोरेट किया जाता है। फाइन आर्ट सोसाइटी ने कॉलेज ग्राउंड में एक बड़ा सा दिल सेल्फी प्वाइंट को ध्यान में रखते हुए बना दिया था, जो स्टूडेंट की धड़कन बना हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स वहां पर सेल्फी ले रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स वहां खड़े होकर लव पोइट्री सुना रहे थे, कुछ कपल्स आपस में एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे। इस भीड़ में खड़ा आदित्य शिवांगी के साथ डांस करने के ख्यालों में डूबा हुआ है, पर शिवांगी है कहां? शिवांगी तो कहीं नजर नहीं आ रही। आदित्य शिवांगी को

फोन करता है। कहाँ हो तुम? कैंटीन में। वहां क्या कर रही हो? कैंटीन का वाटर कूलर खराब हो गया है। तो मैं कैंटीन वालों की प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन करूंगी। रुको रुको नारी शक्ति, रुको तो सही। अच्छा मैं आता हूं। ये कैसी लड़की पे दिल आया है मेरा? मैं यहां दिल का गुलदस्ता लिए घूम रहा हूं और मेरी प्रेमिका उलझी हुई है कैंटीन के वाटर कूलर में। हे प्रेम की देवी, मेरी प्रेमिका को कुछ बुद्धि दे। आदित्य ने कैंटीन में जाकर देखा, शिवांगी ने पूरे कैंटीन स्टाफ को सर पर उठा रखा है। शिवांगी, ये क्या बदतमीजी है? इसमें बदतमीजी की क्या बात है आदित्य? तुम नहीं जानते, ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। कॉलेज में जब भी कोई फंक्शन होता है, ये लोग वाटर कूलर खराब कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स वाटर बॉटल खरीदें और इनकी कमाई हो। पर आज मैं लोगों की प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन करके रहूंगी। और देखो, मैंने एप्लीकेशन भी लिख ली है। शिवांगी, तुम कॉलेज में नजरें घुमाकर तो देखो आज क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है। आदित्य, तुम नजरें घुमाकर देखो ना, आज ही के दिन कितने स्टूडेंट्स खराब पानी पीने के लिए बेबस हैं। तो तुमने क्या सारे स्टूडेंट्स का ठेका ले रखा है? ठेका नहीं, मुझे ये समस्याएं बहुत अंदर तक प्रभावित करती हैं आदित्य। अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो मुझे नहीं लगता कि हमारा रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा पाएगा। और ये मैं क्या सुन रहा हूं, तुम स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ रही हो? हाँ लड़ रही हूं। तुमने मुझसे कोई परमिशन क्यों नहीं ली? इसमें तुमसे परमिशन की क्या जरूरत है आदित्य? तुम फुटबॉल मैच के लिए बेंगलुरु गए, तुमने मुझसे पूछा था? शिवांगी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और इस रिलेशनशिप को बचाना चाहती हो तो तुम्हें स्टूडेंट यूनियन के चुनाव से अपना नाम वापस लेना होगा। आदित्य, ये कैसी शर्त रखी है तुमने मेरे सामने? तुम मुझसे मेरी जिंदगी छीन रहे हो? तुम प्यार को समझौते में बदलना चाहते हो? वो मैं नहीं जानता शिवांगी, पर मेरी शर्त यही रहेगी। तो फिर आदित्य, मेरा फैसला भी अड़िग रहेगा और मैं चुनाव लड़ूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत शिवांगी? कहते हुए आदित्य ने शिवांगी को जोर से धक्का दिया, जिससे शिवांगी गिर जाती है और उसके शरीर में कई चोटें भी आती हैं। पर ये चोटें उसकी एपिथीलियम की खुरच भर नहीं है, बल्कि उसके दिल में बहुत गहराई तक धसे हुए कांच हैं।

आदित्य शिवांगी से बदला लेना चाहता है और इसके लिए वो शिवांगी की सभी चुनावी रणनीतियों को उसके विरोध में खड़े उम्मीदवारों को बता देता है। आदित्य का ऐसा रूप देखकर शिवांगी को आदित्य से नफरत हो जाती है। शिवांगी को लेकर साजिशें रची जाती है। पूरे कैंपस में शिवांगी की खराब इमेज का प्रचार प्रसार किया जाता है, पर शिवांगी हार नहीं मानती। शिवांगी अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करती है और उसे उम्मीद होती है कि उसके काम को जरूर नोटिस किया जाएगा। आदित्य का भाई स्पोर्ट्स यूनियन का प्रेसिडेंट होता है और इसी का फायदा उठाकर आदित्य अपने भाई के साथ मिलकर शिवांगी के खिलाफ कैंपेनिंग करता है और इसका नतीजा ये होता है कि स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स का एक भी वोट शिवांगी के फेवर में नहीं जाता और शिवांगी चुनाव हार जाती है। चुनाव परिणाम से ज्यादा शिवांगी आदित्य के घिनौने रूप से आहत होती है। आदित्य की व्यंग्यात्मक मुस्कान के जवाब में शिवांगी ने कहा, आदित्य मैंने चुनाव हारा है, हौसला नहीं।

एक दिन यूनियन रूम में बैठी शिवांगी घर जाने के लिए काम समेट ही रही थी कि तभी हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट लतिका अपनी प्रॉब्लम लेकर आती है। मैं कमिन दी? यस प्लीज। लतिका कैसी हो? बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ? दी, वो मेडिवल हिस्ट्री वाले सर है ना? कौन, वो कैब ड्राइवर? दी, आप भी जानते हैं उसके बारे में? पूरा कैंपस जानता है उसके बारे में। तुम्हें क्या कहा है ये बताओ। दी, वो सर लड़कियों को कॉफी पे ले जाते हैं। उन्होंने मुझे भी कॉफी के लिए ऑफर दिया था पर मैंने मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए एग्जाम में मेरे डेस्क के नीचे जानबूझकर किसी से चीटिंग चिट रखवा दी थी और नकल करने का आरोप मुझ पर लगा दिया गया। मैं इस घटना से बहुत डर गई हूं दी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। ओके लतिका, तुम ऐसा करो, उन सर को कहो कि मैं कॉफी पर जाने के लिए तैयार हूं। तुम अपनी लाइव लोकेशन हमें भेजती रहना, मैं पुलिस से बात करती हूं। उसे रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे और यही उसकी सजा होगी। दोनों ऐसा ही करती हैं और अंततः उस सर को रेस्टिकेट कर दिया जाता है।

शिवांगी महिला सुरक्षा को लेकर बहुत से आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में लिखती है। वो अपने आर्टिकल्स के माध्यम से बताती है कि वीमेन सिक्योरिटी को लेकर कॉलेज कैंपस में किस तरह से और बेहतर काम किया जा सकता है, क्योंकि लड़कियों की ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। सुनसान सड़कें और अंधेरा लड़कियों के लिए ही डर का पर्याय क्यों हूं? शिवांगी के आर्टिकल्स इतने ज्यादा लोकप्रिय होते हैं कि उसे अपने एक आर्टिकल के लिए मुख्यमंत्री से पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है और युवा प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री से महिला सुरक्षा पर बात करने का मौका भी मिलता है। मुख्यमंत्री रेणुका सिंघानिया एक बहुत ही अनुभवी, सक्षम और ईमानदार महिला हैं, जो कि जन जन में लोकप्रिय हैं। एक संवेदनशील महिला होने के नाते महिलाओं का दर्द न केवल समझती हैं, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति भी रखती हैं। मुख्यमंत्री रेणुका सिंघानिया की नई युवा शक्ति को पार्टी में सम्मिलित करने की इच्छा सदैव से रही है। वो शिवांगी को भी प्रेरित करती हैं कि वो और भी बेहतर काम करे, जिसमें उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से शिवांगी को पूरा सहयोग दिया जाएगा। शिवांगी यूनिवर्सिटीज और कई जगहों पर महिला सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर काम करती है। धीरे धीरे शिवांगी टीवी चैनलों की एक लोकप्रिय प्रवक्ता बन जाती है। समय बीतता जाता है और शिवांगी का कार्य और भी फैलता जाता है। जनता जानती है कि चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, छात्रों की समस्याओं की बात हो, चाहे युवा शक्ति की बात हो, अगर पार्टी में कोई पूरे अधिकार के साथ बोल सकता है तो वो नाम है शिवांगी। एक ईमानदार कार्यकर्ता और विद्वान प्रवक्ता के रूप में शिवांगी की छवि जनता के सामने उभर कर आती है। मुख्यमंत्री रेणुका सिंघानिया स्त्री मामलों में हमेशा ही शिवांगी से परामर्श लेती रही हैं। धीरे धीरे समय करवट बदलता है, अगले चुनाव

में रेणुका जी जब फिर से बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनती हैं तो उप मुख्यमंत्री के रूप में शिवांगी को चुनती हैं। शिवांगी यादों के गलियारों से लौट आती है। आज उसकी जीत का दिन है, उसके काम की जीत का दिन है। ये पद, ये गौरव उसने अपनी मेहनत और परिश्रम के बलबूते जीता है। शिवांगी ने कार का शीशा नीचे किया, उसके नाम की, मुख्यमंत्री के नाम की, पार्टी के नाम की नारेबाजी हो रही थी। सफेद बनारसी साड़ी में लिपटी शिवांगी ने आत्मविश्वास को अपने आभूषण के रूप में पहना हुआ है। मुख्यमंत्री रेणुका सिंघानिया जनता को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मैं शिवांगी को उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि अपनी बेटी के रूप में आप सभी के बीच भेज रही हूं, और मुझे उम्मीद है कि शिवांगी को बेटी की तरह ही जनता का प्यार मिलेगा। शिवांगी एक नजर रेणुका जी की तरफ और एक नजर मंच से नीचे फर्स्ट रो में बैठी अपनी माँ की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि ये उसकी जीत नहीं बल्कि सच्चाई की जीत है जिस पर उसकी दोनों माओं के हस्ताक्षर हैं।

0: दोस्तों, पानी पी लिखी कहानी में आज मैं सुना रही थी अपनी ही लिखी कहानी, अपनी ही जुबानी, जीत हौसलों की। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपकी प्रतिक्रिया हमें अगली कहानी को और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इसके अलावा आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति, परिकल्पना और निर्देशन है रश्मि कुकरेती का। पानी पी लिखी कहानी में आज के लिए इतना ही। मुझे यानी मंजू बत्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: पानी पर लिखी कहानी। जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएं। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से, सारे वादे भर गए। पानी पर लिखी कहानी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष PP चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही हैं। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं सुरभि आपके साथ। नमस्कार। महकी हुई फिजाएं दे

को हौसला दे कि वो देखें कोई ख्वाब, ख्वाबों के हौसलों को मुसलसल उड़ान दे। तो चलिए गीत संगीत की बहुत ही खूबसूरत महफिल में आपको ले आए हैं, तैयार हो जाइए बहुत ही सुरीले नगमों, कुछ बातों और यादों के सफर पर चलने के लिए अगले कुछ पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके नाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म का नाम है अनुरोध। किशोरदा की बहुत ही खूबसूरत आवाज में सुनते हैं ये गीत आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। जी हाँ दोस्तों, दिल के कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल के कोने में कहीं चुपचाप बस जाते हैं, ना वो पूरी तरह से भुलाए जाते हैं और ना कभी वो दूर होते हैं। यकीनन वो याद बनकर हर धड़कन के साथ चलते रहते हैं। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं सुरभि। दोस्तों, कुछ गीतों का जादू ही ऐसा होता है जिसे सुनकर मन तन सब खिल उठते हैं, जहां प्यार में नजाकत भी होती है, शरारत भी, और दिल को छू लेने वाली मिठास भी उन गीतों में पाई जाती है। और जब सुरों में मोहब्बत खुल जाए तो हर लम्हा बेहद हसीन लगने लगता है। तो इसी खूबसूरत अंदाज के साथ चलिए हम आप सुनते हैं मिलकर फिल्म आरजू का ये गीत रफी साहब की आवाज में। किसी ने बहुत खूब कहा है कि किसी की प्यास का तुमको जवाब होना था, किसी की प्यास का तुमको जवाब होना था, मुझे जवाब में बस लाजवाब होना था। किसी की प्यास का तुमको जवाब होना था, मुझे जवाब में बस लाजवाब होना था। वो मेरे रूबरू ताबीर बन के आया है, तमाम उम्र जिसे सिर्फ ख्वाब होना था।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

जी हाँ, कुछ गीतों में नटखटपन होता है, शरारतें होती हैं और हल्का फुल्का अंदाज दिल को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए और खूबसूरत गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, माहौल को हल्का फुल्का रंगीन बनाते हैं इस बहुत ही चुलबुले गीत के साथ। तो फिल्म है इंसान जाग उठा, चलिए सुनते हैं ये गीत।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। धीरे धीरे हम अपने वक्त के अंजाम तक पहुंच चुके हैं, तो बहुत खूब कहा है किसी ने कि वक्त के साथ चला जाए यही बेहतर है, वक्त के साथ ढला जाए यही बेहतर है। उम्र के अपने तकाजे हैं जरा गौर करें, उम्र के अपने तकाजे हैं जरा गौर करें, इसको बिल्कुल भी ना चला जाए यही बेहतर है, वक्त के साथ चला जाए यही बेहतर है, वक्त के साथ ढला जाए यही बेहतर है। अश्क का झरना लगातार बहे और तेरी याद की चिट्ठी जला जाए यही बेहतर है, बेसबब अपनी ही फितरत को बदलने की बजाय चंद आंखों में खला जाए यही बेहतर है, वक्त के साथ ढला जाए यही बेहतर है, वक्त के साथ चला जाए यही बेहतर है।

अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे। मैं जिसकी आंख का आंसू था उसने कद्र न की, बिखर गया हूं तो अब रेत से उठाए मुझे। इसी के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, आप सुनेंगे कुछ ही देर में हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी एएसएमएल ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। इस संबंध की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 में स्वीडन यात्रा की शताब्दी से जुड़ी है। अब यह साझेदारी सांस्कृतिक आधार से आगे बढ़कर मजबूत औद्योगिक और आर्थिक सहयोग में बदल रही है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कल डोमिनिका की विदेश मंत्री के साथ फार्माकोपिया और त्वरित प्रभाव परियोजना क्यूआईपी पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। श्री मार्गेरिटा ने डोमिनिका के विदेश, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार तथा ऊर्जा मंत्री विन्स एंडरसन से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टर्बाइन फ्यूल एफटीए पर लगने वाले वैट को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के विजन के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र को राहत देना, पर्यटन को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक गतिविधियों को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि रियायती वैट दर फिलहाल 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और दिल्ली के हित में लिया गया यह फैसला सरकार के लिए लगभग 985 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का कारण बन सकता है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं सुरभि हाजिर हूं आपके बीच। नमस्कार। बहुत खूब कहा है किसी ने कि कभी यूं भी आ मेरी आंख में, कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे, मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर न हो। मेरे बाजुओं में थकी थकी अभी महवे ख्वाब खोई है चांदनी, न उठे सितारों की पालकी अभी आहटों का गुजर न हो। ये गजल है जैसे हिरन की आंख में पिछले रात की चांदनी, न बुझे खराबे की रोशनी कभी बेचराग ये घर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे कि उसके बाद सहर न हो।

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। दिल बस इतना जानता है कि जब कोई खास करीब हो तो सब कुछ अपना लगने लगता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। दोस्तों, जब दिल किसी की यादों में खो जाए तो ये रातें लंबी लगने लगती हैं और नींद भी जैसे रूट सी जाती है। मोहब्बत का यही मीठा सा असर दिल को बेचैन भी करता है और मुस्कुराने की वजह भी बन जाता है।

ख्वाब इन आंखों से अब चुरा कर ले जाए, कब्र के सूखे हुए फूल उठा कर ले जाए। ये भी पानी है मगर आंखों का ऐसा पानी, जो हथेली पे रची मेहंदी उड़ा कर ले जाए। मैं मोहब्बत में महकता हुआ खत हूँ मुझको, मैं मोहब्बत में महकता हुआ खत हूँ मुझको, जिंदगी अपनी किताबों में दबा कर ले जाए, ख्वाब इस आंखों से अब कोई चुरा कर ले जाए।

मुझसे बिछड़कर खुश रहते हो, मुझसे बिछड़कर खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। एक टहनी पर चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। मुझसे बिछड़कर खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। और चलिए चलते चलते मोहरा फिल्म से सुनते हैं पंकज उदास साहब की आवाज में ये गीत।

इसी गीत के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, और अब सुरभि को दीजिए इजाजत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। यह संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और हरित परिवर्तन, AI प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जन संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाटलोडिया, गोटा, चांदलोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में जिलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर दिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और CRPF ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं।

जब दो सुर मिलते हैं तब सिर्फ संगीत नहीं बनता बल्कि भावनाओं की एक नई कहानी जन्म लेती है। कभी प्यार, कभी तकरार, कभी दोस्ती तो कभी शरारत। हर एहसास को युगल गीतों ने बेहद खूबसूरती से सजाया है, संवारा है। तो चलिए आज हमराही के जरिए चलते हैं, सुनते हैं कुछ ऐसे ही उम्दा युगल गीतों को। माध्यम आपका पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही का सफर है ये। समय हुआ है 3:11 और 46 सेकंड सुबह के, और इस खूबसूरत से प्यारे से समय के साथ आपके साथ रहूंगी इस सफर पर, आप ही की दोस्त रूपा धवन। नमस्कार।

साथियों, जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो कई तरह के एहसास होने लगते हैं। हाँ, बेशक हर व्यक्ति का एहसास अलग होता है। उसकी छोटी छोटी बातें भी खास लगने लगती हैं। उसकी खुशी अपनी खुशी लगती है, उसका कुछ दिनों का नहीं सदियों पुराना साथ लगता है। फिलहाल आपका और हमारा साथ बरकरार है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही के कार्यक्रम में आप हैं रूपा के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर

आपका और हमारा सफर बरकरार है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही का सफर और इस सफर पर आज आपके साथ हूं मैं रूपा धवन। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला खूबसूरत सा ये गीत आप सभी के लिए।

तेरे साथ रहने के बहाने ढूंढते हैं, तेरे साथ रहने के बहाने ढूंढते हैं, दिल की बातें मुस्कुराकर छुपाते हैं। तुझे क्या पता तेरी एक झलक के लिए हम रोज नए रास्ते बनाते हैं।

साथ जब मनचाहा होता है तो हम जिंदगी की सीमाओं से आगे बढ़ने का हौसला भी जुटा लेते हैं, और जब साथी प्यारा हो तो उसके लिए तो हम जान की कसम भी खा लेते हैं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 3:46 और 47 सेकंड। आप हैं हमराही के सफर पर रूपा के साथ। और दोस्तों, रेडियो का वो सुनहरा दौर और उस पर ये गीत लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। जी हाँ, आज भी ये गीत और रेडियो हम सबके दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं। सुबह की शुरुआत, शाम की चाय या रात की तन्हाई, हर पल में ये गीत हमारा साथ निभाते हैं। और जब दो दिल मिलते हैं तो अपने दिल की बातों को कुछ इस तरह से बयां करते हैं, क्योंकि जब मुलाकात होती है तो दोनों के दिल में उथल पुथल होती है कि कुछ मैं अपने दिल की बात कहूँ, कुछ मैं अपने दिल की बात कहूँ। दोनों तरफ से तैयारी हो रही होती है कि क्या बात कहें, क्या बात करें। सुनते हैं एक ऐसा ही खूबसूरत सा ये नगमा आप सभी के लिए।

दो दिल मिले तो जैसे दुआ रंग लाई, दो दिल मिले तो जैसे दुआ रंग लाई, खामोश सी जिंदगी में भी उमंग सी आई। सारे नाम भूल गए बस एक ही नाम याद रहा, सारे नाम भूल गए बस एक ही नाम याद रहा, तू मेरे साथ था तू मेरे साथ रहा।

फिलहाल हमराही को हम यही विराम देते हैं और मिलेंगे आपसे कुछ ही देर में। फिलहाल आप सुनेंगे कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज से स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जा रही है। यह दौरा प्रधानमंत्री की व्यापक यूरोप यात्रा का तीसरा चरण है और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष जनवरी में लागू होने के बाद यूरोप की उनकी ये पहली यात्रा भी है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान कल पहले दिन विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाट लोडिया, गोटा, चांद लोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में झीलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। गृहमंत्री ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के 70 नवनिर्वाचित पार्षदों से भी मुलाकात की। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। कार्रवाई के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय खंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। कोलंबिया में एक पूर्व मेयर रोजर्स देविया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके साथ उनके एक सहयोगी एडर कॉर्डोना की भी मौत हो गई। देविया पहले क्यूबराल शहर के मेयर रह चुके थे और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार अबेलार्डो डी ला एस्प्रेला के समर्थक थे। इस घटना को राजनीतिक हिंसा माना जा रहा है। IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। वहीं कल हुए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अरुणिमा है उम्मीद की पहली किरण जो हर रात के बाद नया सवेरा लाती है। हौसलों से जो दिल रोशन रखते हैं, जिंदगी भी उनके गीत गुनगुनाती है। धीरे धीरे सुबह हो रही है, रात की चादर धीरे धीरे अपने आप में सिमट रही है। चलिए नाम लेते हैं उस प्रभु का जिसने एक और नई सुबह हमें दी। अरुणिमा का सफर है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं रूपा के साथ। नमस्कार।

अरुणिमा सी रोशनी हो तेरे हर ख्वाब में, अरुणिमा सी रोशनी हो तेरे हर ख्वाब में, नई सुबह की चमक हो तेरे हर जवाब में, अंधेरों से लड़कर जो मुस्कुरा सके वही असली उजाला है इंसान के स्वभाव में। वैसे दोस्तों, जीवन जीने की उत्साह में, या यूं कहें कि जीवन जीने की जद्दोजहद में, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम पहले अपने आप को तराश सकें, इतना तराशें कि दूसरों की जय से पहले हम पहले खुद की जय करें।

हमारी जिंदगी में यादों का एक अहम हिस्सा है। ये यादें हमें खुशी के तो कभी गम के आंसू दे जाती हैं। खुशी के आंसू हंसी के साथ साथ निकलते हैं और दुख के आंसू तो वैसे ही अश्रुधारा निकल जाते हैं। इन यादों को सोचते हुए चलिए चलते हैं उस यादों के गलियारे की ओर जहाँ ये गीत हमें पुकार रहा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म देव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: समय हुआ है 4:29, आप हैं अरुणिमा कार्यक्रम में अपनी दोस्त रूपा के साथ।
1: गोपी, मिस्टर गोपी जी।

समय हुआ है 4:35 अरुणिमा का सफर है और ये वक्त भी गुनगुनाने की सदाएं दे रहा है एक नई ऊर्जा के साथ। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप रूपा के साथ। अरुणिमा में आपके साथ है रूपा। साथियों, किसी ने कहा है कि बुरे कर्म का अंजाम भी बुरा ही होता है। हर गलत रास्ता कहीं ना कहीं रोता है। आज चाहे सुकून लगे गलतियों का साथ, आज चाहे सुकून लगे गलतियों का साथ, कल वही इंसान कर्मों से हारता है। एक गीत ऐसा ही आया सावन झूम के फिल्म से आप सभी के लिए, इस बात को, इन पंक्तियों को सार्थक करता हुआ।

हार से डरकर बैठ जाना आसान होता है, मगर कोशिश करने वाला ही महान होता है। वैसे जीत भी उन्हीं के कदम चूमती है अक्सर, जिनके इरादों में सच्चा तूफान होता है।

हमारी जिंदगी में रिश्तों की भी एक खास अहमियत है। रिश्तों के तानों बानों में गुजरती ये जिंदगी कभी प्यार के अनमोल रत्नों को जोड़ती है तो कभी और किसी सपनों के धागों को बुनती है। इसी कश्मकश में ये जिंदगी की राहें कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उतार कभी चढ़ाव, इसके साथ साथ चलती जाती है, जिसमें अनेक भावों को समेटे हुए हमारा ये दिल कुछ गुनगुनाता भी है, कुछ गाता भी है। फिलहाल आप गुनगुना रहे हैं हमारे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रिश्ते चाहे बदलते रहे, अरुणिमा का सफर है इस वक्त आपके साथ और रिश्तों से जुड़ी बातें हम कर रहे हैं। आज के इस सफर में आपके साथ हूं मैं, रूपा। तो जनाब, रिश्ते चाहे कैसे भी हों, कैसे भी रहें, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास रखना है ताकि हमारे जीवन के सुंदर मूल्यों को हम दूसरों के सामने और अपने आगे दर्शा सकें।

तो जनाब, समय भी रेत जैसे मुट्ठी से फिसलता है ना, ऐसे ही हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। और अभी फिलहाल वक्त है 4:55 और 6 सेकंड। आप हैं अरुणिमा में रूपा के साथ। भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, कश्ती का हौसला डूबने नहीं देता। जो दिल उम्मीद से रोशन हो, कोई अंधेरा रोक नहीं सकता। जी हाँ, दुनिया की जो दुनियादारी है वो हमें यही सिखाती है कि दुनिया में कितने भी उतार चढ़ाव आए चाहे हमारी जिंदगी में, हमें अपनी राह

0: अरुणिमा से रूपा विदा लेती है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद आपके साथ फिर से मुलाकात होगी भोर सुहानी कार्यक्रम में। तब तक के लिए रूपा को विदा दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष

0: ऑफ फॉन्डे लाइन भी यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। ये यूरोप के उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी की इस वर्ष जनवरी में ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद यूरोप की पहली यात्रा है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के अंतर्गत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इस दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण के लिए साझेदारी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा बाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र तैयार करने की टीम में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा बाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और समाज के अन्य वर्गों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार से संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले की एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के सभी निर्णयों को भी अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि स्थगित करने का भारत का निर्णय अभी लागू है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। यानिक सिनर इटली ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में कल सिनर ने दानिल मेदवेदेव को हराया। फाइनल में आज सिनर का मुकाबला कैस्पर रूड से होगा। रूड ने दूसरे सेमीफाइनल में इटली के लुसियानो डार्डेरी को हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with the Swedish counterpart, Ulf Kristersson, to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration.

बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से स्वागत के साथ प्यारा सा नमस्कार रूपा धवन का। तो जनाब, आज की भोर सुहानी क्या कुछ खास लाई है, क्या कुछ हमने देना है जिंदगी को और क्या कुछ हमें देगी जिंदगी, इसी सोच विचार को रखते हुए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे भोर सुहानी के साथ और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो हम सबको प्रेरणा देता है उस प्रभु की आराधना की।

इस भोर सुहानी में, और ये भोर सुहानी नई उमंग नई आशा लेकर हर दिल में उजियारा लाई है। भोर सुहानी कहती हमसे कि हर दिन नया सितारा है। आपके मन की शक्ति, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा, दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम भाव रखकर मन पर विजय पाना जीवन के सुंदर मूल्यों को दर्शाती है। देखते हैं आज कौन सी दिशा में हमें ये जिंदगी ले जाती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 5:25 और 33 सेकंड। आप हैं रूपा के साथ, भोर सुहानी कार्यक्रम लेकर आई है आपके लिए रूपा। तो जनाब, सुबह की ताजगी मन में एक नया उत्साह तो भरती ही है ना? साथ ही हमें ये हमारे लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा भी देती है। और जो सुबह का नजारा होता है ना दोस्तों, सुबह ये सरसर चलती हवा और इसके साथ साथ खुशी से झूमते पेड़ों के पत्ते लगातार यही संदेश देते हैं कि आओ देखो और इस नई सुबह का अपने दिल से स्वागत करो। ऐसे भरपूर नजारों का